0: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक आपका अपना बैंक सचमुच आपका। जरूरत जब हो पैसों की, फैसला हो भरोसे का।
1: व्यक्तिगत ऋण कम ब्याज दर के साथ।
0: और अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में है
1: तो पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर,
0: शून्य प्रोसेसिंग फीस,
1: बस एक कदम
0: और सपनों को नई रफ्तार।
1: आज ही अपनी नजदीकी शाखा में आइए
0: या विजिट करें बैंक वेबसाइट।
1: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक,
0: सचमुच आपका।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: किसान भाइयों और बहनों, आपके लिए खुशखबरी।
1: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक
0: 120 से अधिक वर्षों का विश्वास, विकास की नई पहचान।
1: EKCC पोर्टल के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पाना हुआ और भी आसान। खेती की हर जरूरत का भरोसेमंद समाधान।
0: बीज, खाद, सिंचाई और फसल की तैयारी, हर कदम पर आपका अपना बैंक।
1: आसान प्रक्रिया, समय पर ऋण, किसान की उन्नति हमारा संकल्प।
0: आज ही अपनी नजदीकी शाखा में संपर्क करें
1: या बैंक वेबसाइट muradabaddcb.bank.in पर विजिट करें।
0: वर्षों का विश्वास, किसानों के विकास का विश्वास।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पार्क प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।

0: देना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने वीडियो पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
1: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। सरकार परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों से जुड़ी मांगों को लेकर कांग्रेस जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ आज एक और दौर की बातचीत करेगी। इससे पहले कल भी नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने सीजेपी प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की थी, जिसके बाद श्री नड्डा ने बताया कि बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार को लेकर सीजेपी की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना गया है। उन्होंने बताया कि सीजेपी ने 3 प्रमुख मांगे रखी हैं और पेपर लीक रोकने के लिए कुछ सुझाव भी दिए हैं।
3: बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड थी और 5 सुझाव हुए।
1: दिल्ली पुलिस ने पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अन्य अपराधों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल एसटीएफ का गठन किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये कार्यबल लोक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम अधिनियम 2024 के अंतर्गत आता है।
4: दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अलग अलग प्राधिकारियों की ओर से आयोजित होने वाली पब्लिक परीक्षाओं से जुड़े अपराधों की जांच तेजी से और पेशेवर तरीके से विशेष कार्यबल द्वारा की जाएगी। इनमें संघ लोक सेवा आयोग, कर्मचारी चयन आयोग, रेलवे भर्ती बोर्ड, बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के साथ साथ केंद्रीय सरकार के मंत्रालय या विभाग और स्टाफ के भर्ती के लिए उनसे जुड़े हुए और अधीनस्थ कार्यालय शामिल है। जांच के अलावा विशेष कार्यबल मुकदमा चलाने वाली एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल भी बनाए रखे ताकि तेजी से मुकदमा चलाया जा सके और ये पक्का किया जा सके कि ऐसे मामलों में सुनवाई रोजाना हो। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के 47 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक इनमें से कुछ अधिकारियों के खिलाफ कानूनी और आपराधिक कार्रवाई भी की जाएगी। एनटीए ने महाप्रबंधक स्तर के वरिष्ठ पेशेवर पदों पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित किए हैं। संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिभा सेतु पोर्टल द्वारा 16 युवा पेशेवरों की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही, नीट परीक्षा पेपर लीक और विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने बताया है कि सुरक्षा कारणों से आज सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक 18 स्टेशन बंद हैं। हालांकि राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय में इंटरचेंज सुविधा उपलब्ध रहेगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
5: भारतीय वायु सेना में अग्निवीर वायु और एयरमैन मेडिकल असिस्टेंट बनने के लिए जल्दी रजिस्टर करें। रजिस्ट्रेशन 26 जुलाई 2026 को बंद हो जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए www.iefrecruitment.edcil.co.in पर जाएं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रोमानिया के बुखार

0: कांग्रेस यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक स्टडीज ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को उनकी विशिष्ट सार्वजनिक सेवा, शिक्षा और सामाजिक समावेश के प्रति प्रतिबद्धता तथा भारत रोमानिया संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। राष्ट्रपति ने सम्मान स्वीकार करते हुए इसे भारत की जनता को समर्पित किया और कहा कि ये दोनों देशों के लोगों के बीच अटूट मित्रता को दर्शाता है। राष्ट्रपति ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीकी परिवर्तन के इस युग में विश्वविद्यालयों की जिम्मेदारी है कि वे ये सुनिश्चित करें कि ज्ञान का मार्गदर्शन विवेक, नैतिकता और करुणा द्वारा किया जाए।
1: टुडे एज द वर्ल्ड इज बीइंग रिसेप्ट बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल टेक्नोलॉजीज एंड अदर रैपिड साइंटिफिक एडवांसेस, यूनिवर्सिटीज लाइक दिस हैज इवन ग्रेटर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट नॉलेज इज गाइडेड बाय विजडम, ethics and compassion. India's national education policy reflects this vision by promoting innovation, research, creativity and international academic collaboration.
0: भारत सरकार ने कहा है कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने पाकिस्तान के उन मीडिया दावों को खारिज किया जिनमें भारत पर जानबूझकर बाढ़ लाने का आरोप लगाया गया था।
2: रिसेंट इंक्रीज इन फ्लोज,
3: चिनाब नदी में जल प्रवाह में हालिया वृद्धि, 20 से 23 जुलाई के दौरान जम्मू और आसपास के जलग्रहण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का परिणाम है। नदी के जल प्रवाह में वृद्धि एक प्राकृतिक जल वैज्ञानिक प्रतिक्रिया है और ये भारत द्वारा जानबूझकर किए गए किसी भी प्रयास का परिणाम नहीं है।
2: नॉट द रिजल्ट ऑफ एनी डेलिबरेट एक्शन बाय इंडिया।
0: भारत ने काला सागर में वाणिज्यिक पोत एमवी ओमोफ्री पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। हमले को अस्वीकार्य बताते हुए भारत ने सभी संबंधित पक्षों से समुद्री नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 18 जुलाई को काला सागर से गुजरते समय पोत पर हमला हुआ। हमले में एक भारतीय नाविक की मृत्यु हो गई। पोत पर 3 भारतीय नागरिकों सहित चालक दल के 10 सदस्य सवार थे। अन्य 2 भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने आज पुष्टि की कि मोजाम्बिक ध्वज वाले एलपीजी टैंकर दिशा पर ईरानी जल क्षेत्र में हुए हमले के बाद जहाज पर सवार भारतीय चालक दल के सभी 28 सदस्य सुरक्षित हैं। दूतावास ने आधिकारिक बयान में एलपीजी टैंकर से जुड़ी घटना की पुष्टि की और कहा कि चालक दल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वो स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में हैं। लद्दाख के द्रास में स्थित करगिल युद्ध स्मारक ऑपरेशन विजय में भारत की जीत की स्मृति में मनाए जाने वाले 27वें करगिल विजय दिवस के भव्य समारोहों की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: द्रास का कारगिल वॉर मेमोरियल 27वें करगिल विजय दिवस समारोह के लिए पूरी तरह से तैयार है। शहीदों की याद में बनाए गए इस स्मारक को विशेष रूप से सजाया गया है। 2 दिवसीय समारोह का आगाज आज युद्ध संस्मरण, गौरवमय संस्कृति और शौर्य संध्या जैसे कार्यक्रमों के साथ हो रहा है। कल 26 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के रूप में श्रद्धांजलि समारोह में शामिल होंगे। द्रास कारगिल से आकाशवाणी समाचार के लिए मैं इनायत अली।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, कोंकण और गोवा, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में आज बहुत तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर भारत, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, दक्षिण आंध्रीय कर्नाटक और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में भी आज मध्यम से तेज बारिश की संभावना है। असम में बाढ़ की स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। राज्य में 115,000 से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की कुल संख्या 61 हो गई है। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा T20 मैच आज शाम 4:30 बजे से हरारे में खेला जाएगा। भारत के स्क्वाश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने कनाडा के ओंटारियो में विश्व जूनियर स्क्वाश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में पहुंचकर इतिहास रच दिया है। सेमीफाइनल में अनाहत ने मिस्र के बाब सामे को 3-1 से हराया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
5: धन्यवाद कनक। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए के 47 अधिकारियों को बर्खास्त किए जाने की खबर आज के अखबारों की पहली सुर्खी है। हिंदुस्तान ने इसे नीट को लेकर सरकार की बड़ी कार्रवाई बताया है। अमर उजाला लिखता है, आक्रोश का असर, एनटीए से 47 अफसर बर्खास्त। नवभारत टाइम्स की हेडलाइन है, पेपर लीक पर होगा 10 करोड़ रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा। संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी, कड़ी सजा का प्रस्ताव। दैनिक जागरण कहता है, कानून बदला कार्रवाई हुई, फिर भी सीजेपी टस से मस नहीं, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर अटकी बात। दैनिक भास्कर ने लिखा है, कानून में संशोधन को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी, एनटीए में बदलाव की तैयारी। राजस्थान पत्रिका ने इसे बवाल थामने का प्रयास बताया है। नवभारत टाइम्स ने एनटी पेपर लीक बिल में संशोधन पर अपने संपादकीय में लिखा है, सरकार तेजी से निर्णय लेकर छात्रों को यकीन दिलाने का प्रयास कर रही है कि उनकी आवाज अनसुनी नहीं रह गई है। पत्र लिखता है, केंद्र द्वारा नीट में किए जा रहे सुधारों की सर्वोच्च न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। छात्र अब मूलभूत बदलाव चाहते हैं और शीर्ष अदालत की निगरानी से इसमें मदद मिलेगी। सोशल मीडिया प्रसारण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला जनसत्ता में सबसे ऊपर है। अनुमति के बिना कार्यवाही को पोस्ट करने पर रोक। लोकसत्य लिखता है, सोशल मीडिया पर नहीं डाल पाएंगे कोर्ट की वीडियो। कक्षा 6 से 8 में कौशल शिक्षा अनिवार्य करने के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के निर्देश को भी पत्र ने स्थान दिया है। अमेरिका द्वारा भारत से आयातित वस्तुओं पर 10% शुल्क लगाए जाने को राजस्थान पत्रिका ने ट्रंप का नया दांव बताया है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार ने पेपर लीक रोकने और कड़ी सजा के प्रावधान वाले मसौदा विधेयक को मंजूरी दी। संसद में अगले सप्ताह विधेयक पेश किए जाने की संभावना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक रोकने के लिए प्रस्तावित सुधारों पर अपने वीडियो पर युवाओं से मिले सुझावों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सरकार और सीजेपी के प्रतिनिधियों के बीच आज नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता होगी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला पदक मिला। झंडू कुमार ने पुरुषों के हेवीवेट पैरा भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस। गवर्नमेंट अप्रूव्स एंटी पेपर लीक्स ड्राफ्ट बिल फॉर स्ट्रिक्टर पनिशमेंट। लेजिस्लेशन लाइकली टू बी इंट्रोड्यूस इन पार्लियामेंट नेक्स्ट वीक। Prime Minister Narendra Modi thanks youngsters for the suggestions to his video on proposed reforms against paper leaks issue, says relations will continue with more bonding. Government and CJP to hold third round of talks today. President Draupadi Murmu conferred Dr. Honoris Causa in Romania for a distinguished public service. New Delhi strongly condemns attack on commercial vessel in the Black Sea, claiming life of an Indian seafarer. Heavy rainfall expected in parts of Gujarat, Konkan, Goa and Odisha. And in Commonwealth Games, Jhandu Kumar clinches bronze medal for India in the men's heavyweight para powerlifting. President Draupadi Murmu was conferred the honorary title of Doctor Honoris Causa by the Bucharest University of Economic Studies in Romania in recognition of a distinguished public service, commitment to education and social inclusion, and contribution to strengthening India-Romania relations. The Union Cabinet has approved a draft bill to set up fast-track courts and to ensure stricter punishment in cases of paper leaks and exam malpractices. The Cabinet meeting chaired by Prime Minister Narendra Modi at the Parliament House complex approved the draft bill. Sources told Akashvani News that the proposed legislation is expected to be introduced in the Parliament next week. The National Testing Agency NTA has issued advertisements for a set of senior professional appointments at the level of general manager. It has also opened the engagement of 16 young professionals through the Pratibha Setu portal of the Union Public Service Commission. The NTA in a statement said that these measures represent the first concrete step in the institutional rebuild of the agency that has been implemented in line with the recommendations of the higher-level committee of experts chaired by Professor K. Radhakrishnan. NTA has notified 4 positions for general manager on contract, each for an initial term of 3 years. It said that the engagement of young professionals has been undertaken for the first time. Prime Minister Narendra Modi thanked everyone for the responses and positive suggestions received to his video, where he announced the government's decision to bring a strict law to punish those involved in paper leaks. In the video message, Modi said that the new bill incorporating provisions for strong action against paper leaks will be introduced in the ongoing session of Parliament next week. The draft bill, as announced by the Prime Minister in the Instagram video shared by him, was approved by the Union Cabinet yesterday. In a fresh video message released through his Instagram handle yesterday, Mr. Modi said the relations will continue with more bonding.
7: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
6: मिस्टर मोदी क्रिएटेड अ न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड विद द मोस्ट व्यूज ऑन अ

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय।
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए, बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
4: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
5: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
4: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग।
3: बिंदास मॉर्निंग।
6: श्रोताओं आप सभी का स्वागत अभिनंदन है। एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं आरजे आनंद के साथ, जहां पर बातें होती हैं दिल से दिल तक। और दोस्तों एक बहुत ही प्यारा सा दिन है, एक बहुत ही प्यारी सी सुबह है, और इस सुबह में हम सभी आपका इस्तकबाल करते हैं। आप सभी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद स्टूडियो में मौजूद हो गया हूँ, लेकर ढेर सारी बातों का पिटारा और बहुत सारी तमाम वो जानकारियां जो आज की सुबह आपको बहुत सारी जो है इन्फॉर्मेशन देने वाली और आपकी मॉर्निंग रिचार्ज होने वाली है। तो आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ।

दोस्तों कहते हैं कि इंसान की जिंदगी में कोई चीज वापस आए ना आए, लेकिन उसके कर्माज हमेशा वापस लौट कर आते हैं। आप जैसे कर्म करते हो उसका परिणाम आपको वैसे ही मिलता है। अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो आपको उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है ना। अगर आप उसके अपोजिट करते हो तो उसके अपोजिट ही आपको उसका रिजल्ट मिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपके साथ अच्छी चीजें हों तो उसके लिए आप अच्छा करना शुरू कीजिए। आज की सुबह हमें यही सिखाता है। सैटरडे का दिन है, शनिवार का दिन यानी कर्मों की देवता का दिन। आज कुछ अच्छा करने का दिन, आपने कुछ अच्छा किया तो ऑल द वे बेस्ट, सब कुछ बढ़िया होगा आपकी लाइफ में। और अगर आप नहीं करने का प्लान करो तो कुछ तो ऐसा करो यार जैसे आज की सुबह और भी चमकदार हो जाए। जो लोग अभी अभी उठ चुके हैं और रेडियो जिन्होंने ट्यून इन किया है उन सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही खूबसूरत सी सुबह है, 8:22 हो रहे हैं। हमारे स्टेशन की घड़ी में कुछ लोग ऐसे हैं जो सुबह से काम पे लग चुके हैं और उनके लिए आधा दिन हो चुका है कंप्लीट, है ना। जो लोग सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं और जो लोग अभी उठ रहे हैं उनकी तो मॉर्निंग ही अभी गुड हुई है यार। चलिए फिलहाल अब से लेकर 10 तक मैं रहूंगा आपके साथ इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे। 8:25 हो रहे हैं। श्रोताओं आप सुन रहे हैं मुरादाबाद शहर का अपना इकलौता रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6। हां जी, और देखिए मजे की बात, आज 25 जुलाई है, बहुत ही खूबसूरत शनिवार का दिन है और आज के दिन की आपको ठीरो मंगल शुभकामनाएं हम देते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं आज की सुबह तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जुड़ सकते हैं 9837896896 पर। यह हमारे स्टेशन का नंबर है, नंबर के माध्यम से आप जो है आज की सुबह हमसे मुखातिब हो सकते हैं इस स्टेशन ऑफ द नेशन पे, जहां ढेर सारी बातचीत हो रही है आपकी और हमारी। हां जी, और देखिए बहुत सारे संदेश हमारे पास पहुंच भी चुके हैं, लेकिन उससे पहले एक सुंदर सा विचार मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों कहते हैं मन के हारे हार है मन के जीते जीत। आप अगर अपने मन में ये बात मान लोगे कि अगर आपने हार मान ली तो आपकी हार पक्की है, और अगर आपने ठान लिया कि नहीं मेरे को जीत के दिखाना है, मेरे को कुछ करके दिखाना है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप डेफिनेटली जीत जाएंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो बस इन छोटी छोटी बातों को अगर हम अपने जहन में और अपने दिमाग में रखकर चलेंगे तो यकीन मानिए हमारा दिन और हमारी जो जिंदगी है दोनों ही खूबसूरत हो जाएंगी और हमारी सुबह भी अच्छी हो जाएगी। लेडीज एंड जेंटलमैन, आप आनंद के साथ हैं जहां बातें होती हैं ढेर सारी दिल से दिल तक। चलिए एक बेहतरीन ट्रैक के साथ करेंगे आज के सफर की शुरुआत। हां जी, ये है सैटरडे की सुबह, ढेर सारी बातें और बहुत सारा ज्ञान हो गया यार। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और एक गीत जो आपका बेसब्री से वेट कर रहा है। आज के सफर की बेहतरीन शुरुआत इस बहुत ही बेहतरीन से गाने के साथ, लता दी की आवाज, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक दिलवाले दुल्हनिया से है ये गाना। DDLJ का ट्रैक निकाल रहा हूँ आपके रेडियो सेट पे, एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग।

0: सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। अरे पापा, सीट बेल्ट तो लगा लो।
2: अरे बेटा, बस थोड़ी दूर ही तो जाना है।
1: पर पापा।
2: अरे बेटा, बस में यू गया और यू आया।
1: दुर्घटनाएं बताकर नहीं होती, सीट बेल्ट और हेलमेट लगाना मजबूरी नहीं जिम्मेदारी है। ये आपको सिर्फ चालान से नहीं बल्कि जिंदगी से भी बचाती है। गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल पर बात ना करें, अति स्पीड और ओवरटेक से बचें और कभी भी नशे की हालत में गाड़ी ना चलाएं। सड़क पर किसी भी दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करें क्योंकि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो वक्त पर इंसानियत दिखाए। सेफ रहिए, सुरक्षित चलिए, अपनों के लिए। ये संदेश एफएम मुरादाबाद 89.6 की ओर से आप सभी की सुरक्षा के नाम। सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद।
3: अरे भैया, इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आज आनंद के साथ, ओनली ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम।

क्या बात है यार, गाना जितना खूबसूरत था उतनी खूबसूरत इस गाने की वाइब थी, म्यूजिक बहुत अच्छा था। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं आनंद के साथ। श्रोतों, स्टेशन की घड़ी में वक्त हुआ है, स्टेशन क्लॉक में 8:35। आगे बढ़ते हैं, ढेर सारे हमारे पास संदेश आ रहे हैं प्यारे प्यारे। एक मैसेज मेरे पास पहुंचा है रिंकू यादव का, इन्होंने लिखा है, आनंद जी एक बात कहना चाहते हैं, हर मुश्किल का समाधान है धैर्य, सब्र। अगर आपके पास सब्र नाम की चीज है तो यकीन मानिए आप जीवन में सब कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आपको पेशेंस रखना आता है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं। क्या बात है। इसी बीच एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है, नमस्कार मेरा नाम पूजा है। नमस्कार पूजा जी, ये एमडी मुरादाबाद से मैसेज कर रही हैं एंड लिखती हैं, आनंद जी आज मौसम बहुत ही औसम है और साथ में आपके गाने बहुत ही खूबसूरत आप प्ले करते हैं, सुबह हमारी बड़ी स्पेशल हो जाती है, आपको थैंक यू। अरे आपको भी थैंक यू कि आपने इतना कीमती वक्त निकाल कर हमारे साथ जो है अपना ये इंपॉर्टेंट समय साझा किया। एक और संदेश हमारे पास पहुंचा है, नमस्कार कैसे हाल चाल है, ये बुद्धि बिहार से मेरे पास मैसेज पहुंच रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग, मेरा नाम शकुंतला देवी है, आपको सुनते हुए अपना ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग गाने प्ले कर रहे हैं आनंद जी, क्या बात है। अरे थैंक यू सो मच शकुंतला देवी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में जुड़ी, आपका दिल से थैंक यू। इसी बीच एक और संदेश मेरे पास पहुंचा है भरतपुर से, हाय नमस्ते गुड मॉर्निंग आनंद कैसे हो आप। वेरी गुड मॉर्निंग, मैं बहुत बढ़िया हूँ। अब देखिए आप अपना नाम लिखना भूल गए हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अपना नाम भी आप जरूर मुझ तक पहुंचाएं। और चलिए श्रोताओं, इसी बीच अब जो है हम थोड़ा सा आज के इतिहास की तरफ बढ़ जाते हैं। हाँ जी, तो आपको बताते चले, सन 2007 में आज के दिन प्रतिभा पाटिल ने भारत की 12वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया एंड वो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनी थी। श्रोताओं आज ही के दिन, और आपको बताते चले आज ही के दिन गोविंद नारायण सिंह जी का जो है वो जन्म हुआ था सन 1920 में और सोमनाथ चटर्जी का भी जन्म हुआ था श्रोताओं आज ही के दिन 1929 में। और आपको बताते चले आज ही के दिन जो है एक और नाम जो इस दिन को और भी स्पेशल बना देता है, परशुराम चतुर्वेदी जी, इनका भी आज ही के दिन जन्म हुआ था सन 1894 को। एंड हरसिमरत कौर जी का जन्म हुआ था सन 1966 को, भारत के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ, वर्तमान में भारत सरकार के अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण और उद्योग मंत्री जो है ये रही, इनका आज के दिन जन्म हुआ था। ये कुछ जानकारियां आज के दिन से जुड़ी हुई जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। श्रोताओं अगर आप भी हमारे साथ कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप जुड़ सकते हैं हमारे इसी स्टेशन पर, आपका नाम भी लिया जाएगा और आपके संदेश को भी शामिल किया जाएगा, अपनी आवाज़ भी आप हम तक पहुँचा सकते हैं 9837896896 के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। श्रोताओं और चलिए श्रोताओं अब आगे बढ़ेंगे और अभी लौट कर आएंगे तो बात करेंगे कुछ और ख़ास आज के दिन के बारे में ही, क्यों और चीज़ें आज के दिन और भी तमाम सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं आज के दिन को लेकर, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। आप ऐसे ही हमारे साथ सुनते रहिए आपका मॉर्निंग मैगजीन शो एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। एक और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पे निकाल दिया है मैंने आज की सुबह, इसको सुनते हुए हम और आप आगे बढ़ेंगे और जो समय के साथ चलते हैं उनकी ज़िंदगी में हमेशा जीत होती है। दोस्तों आप मुझे बताएंगे आज की सुबह की कौन सी चीज़ है जो इंसान की वापस लौट कर आती है, सबसे पहले समय या फिर नंबर 2 उसका कर्मा या नंबर 3 उसका जो है मेहनत का फल, क्या चीज़ है जो उसे रिटर्न में डेफिनेटली मिलता ही मिलता है, अगर वो आज के समय में कुछ अच्छा करेगा तो उसका कई गुना उसको वापस मिलता है, कौन सी चीज़ है जो वापस मिलती है, क्या लगता है आपको, आप मुझे संदेश करके बता सकते हैं। खूबसूरत ट्रैक आपके रेडियो सेट पर निकल गया है अलका याग्निक एंड अभिजीत भट्टाचार्य की आवाज़ में, खिलाड़ी फिल्म का ये ट्रैक, इसी को सुनते हुए आगे बढ़ेंगे, बहुत ही बेहतरीन गाना, आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदा।

0: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में।
1: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
0: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा। 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट FM रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
1: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
2: Hey, you're tuned into FM Muradabad 89.6 FM.

0: बेहतरीन ट्रैक, बेहतरीन बातें यहाँ पर चल रही हैं, और ढेर सारे बेहतरीन हमारे जो श्रोता हैं वो भी लगातार हमारे साथ इस महफिल को और भी खूबसूरत बनाने पे अड़े हुए हैं। ढेर सारे संदेश और बहुत सारी पॉजिटिविटी हम तक आप लोग पहुँचा रहे हैं, उसके लिए आप सभी का हम दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जी। इतने खूबसूरत मैसेजेस के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सच में बहुत ही खूबसूरत संदेश आपके पहुँच रहे हैं। इसी बीच में वक्त बता देता हूँ, 8:52 का समय हो रहा है। श्रोताओं, आप आनंद के साथ सुन रहे हैं FM मुरादाबाद।
1: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
2: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।

0: श्रोताओ, शनिवार की सुबह आप आनंद के साथ हैं और अगर बात करें अपने आसपास की तो बिल्कुल बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ हमें साझा करनी है आज की सुबह। लेकिन उससे पहले आपको आज के मौसम के हालचाल थोड़ा सा बता देते हैं, क्या कहता है आज का मौसम। तो फिलहाल आज का जो वेदर है वो भैया लुका छुपी खेल रहे हैं, सूरज चाचू कभी निकल रहे हैं भाई कभी छुप रहे हैं, तो आज का तो मौसम ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन ये मौसम जो है ढेर सारी बीमारियां भी उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे में आपको खास ख्याल रखना है मेरे दोस्त। फिलहाल जो अभी करंट टेम्परेचर है वो 30 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है मुझे, यानी कि मोस्टली सनी, यानी कि जो है बादल बहुत कम रहेंगे और धूप थोड़ी ज्यादा रहेगी और हो सकता है धूप और बादल दोनों ही छाए रहें आज। और हवाएं चलेंगी 6 किलो प्रति घंटा की रफ्तार से, एयर क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, बाकी ह्यूमिडिटी जो है 70% है, यानी कि गर्मी जो है आपको लगने वाली है। ऑफकोर्स यार आज ये देख के तो मुझे लग रहा है। फिलहाल ये जो टेम्परेचर है वो आगे चलते चलते थोड़ा सा और बढ़ेगा, 34 तक पहुंचेगा एंड हो सकता है दोपहर होने के बाद बादल और ज्यादा हो जाए। ठीक है जी, तो मतलब ये जो मौसम है कुल मिला के आपको ऐसे झोंके देता रहेगा, कभी गर्म कभी ठंडे, तो आप जो है मौसम का आनंद लेते रहिए। जैसे कल झमाझम बारिश भी हुई थी दोपहर के समय थोड़ी सी देर के लिए, वैसे ही आज का मौसम भी कुल मिलाकर रहने वाला है। लेकिन आप इस मौसम में जो है थोड़ी सी एहतियात जरूर बरतें। मैं तो कहता हूं पाजी पूरी एहतियात बरतिए, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास बड़े सारे श्रोताओं के संदेश पहुंच रहे हैं, ढेर सारे मैसेज लगातार मुझे मिलते जा रहे हैं, तो बिना किसी देरी के आपके वॉइस नोट सुनते हैं। जी सर।
1: ईदगाह गेट मुरादाबाद से शफी अहमद अंसारी बोल रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू? वेरी नाइस शो, मंडे टू सैटरडे आर जे आनंद के साथ बिंदास मॉर्निंग सुनते रहो, FM मुरादाबाद 89.6 के गुन गाते रहो। आर जे आनंद के साथ नई नई अपडेटें, नई नई जानकारी सुनते रहो बिंदास मॉर्निंग के साथ। कुछ लाइनें पढ़ रहा हूँ। वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, वक्त ने खामोश रहना सिखा दिया, हालात ने दर्द सहना सिखा दिया। अब किसी की आस नहीं रही जिंदगी में, अब किसी की आस नहीं रही जिंदगी में, तन्हाइयों ने अकेला रहना सिखा दिया। थैंक यू।

0: चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी मेरे पास है, मैं सोच रहा था उसको मैं कैसे पढूं। मतलब मेरे को कभी कभी बड़ी हंसती है यार, मतलब। चलो कोई बात नहीं। वेल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आपने मैसेज किया। ये मैसेज हमारे पास कहाँ से पहुंचा था आपको ही पता है भाई, शफी अहमद अंसारी जी का मैसेज आया हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और ऐसे मैसेज आप करते रहिए। चलो एक काम करते हैं, एक और मैसेज मेरे पास पहुंच रहा है। मतलब एक इतनी अच्छी बात आ गई है ना मेरे सामने कि मेरे को बहुत हंसी आ रही है, लेकिन मैं उसके बारे में डेफिनेटली बात करूंगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन जरा इनको सुनते हैं।
1: गुड मॉर्निंग।
0: गुड मॉर्निंग सर।
1: आनंद,
0: हाँ जी बताइए।
1: एफएम मुरादाबाद
0: जी,
1: मैं सुन रहा हूँ।
0: जी जी जी,
1: बहुत अच्छे गाने चल रहे हैं और आनंद भाई प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। इनका बोलने का अंदाज बहुत ही अच्छा, प्रोग्राम करने का अंदाज बहुत ही अच्छा। आनंद भाई, आपका जुखाम भी लग रहा है, इंशाल्लाह सही हो गया।
0: बिल्कुल भाई,
1: तो आप सेहतमंद रहें।
0: जी शुक्रिया मेरे भाई
1: का, एंटरटेनमेंट करते रहे।
0: जी जी,
1: हम लोग एफएम मुरादाबाद में ऐसे ही जुड़े रहेंगे।
0: क्या बात है,
1: एफएम मुरादाबाद दिल से दिल तक।
0: जी
1: धन्यवाद,
0: धन्यवाद, धन्यवाद।
1: मोती मंसारी
0: जी,
1: बनारस से जुड़ा हुआ हूँ।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। बनारस से लोग जुड़ गए हैं। देखिए ईदगाह से शफी अहमद साहब जुड़ गए हैं, और ये अगला वॉइस नोट कहाँ से किनका पहुंचा है, अब जरा इनको भी सुनते हैं।
2: मैं यादों की किताब खोलूं तो कुछ हंसते गाते चेहरे नजर आते हैं।
0: वाह जी वाह।
2: गौर से देखा तो कुछ दोस्त पुराने याद आते हैं।
0: वाह।
2: कुछ शहरों के गुलाम हो गए तो कुछ सपनों के गुलाम हो गए।
0: अजी क्या क्या
2: यादें और गहरी हुई तो गुलाल में रंगे कुछ चेहरे याद आते हैं।
0: वाह जी वाह।
2: गौर से देखा तो कुछ पुराने चेहरे दोस्त याद आते हैं। धूल को उड़ते और बारिश की बूंदों को टपकते देखा तो कुछ दोस्त पुराने याद आते हैं। यादों की किताब के कुछ पन्ने पलटे तो खट्टे मीठे बेर और स्कूल के दिन याद आते हैं। वही कुछ पुराने दोस्त याद आते हैं।
0: क्या बात।
2: सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, सलाम। मैं आपका दोस्त कुलदीप गुप्ता, उदौली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश से, और आप सुन रहे हैं मुरादाबाद 89.6 रेडियो। बजाते रहो, गुनगुनाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। ओके, धन्यवाद।
0: धन्यवाद, मजा आ गया आपकी बातों ने, तो हमारी यादों को जो है और भी ताजा कर दिया है। कुलदीप साहब उधौली बाराबंकी लखनऊ से जुड़े हैं। देखिए कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं महराजुद्दीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे पास बरेली से मैसेज आ रहा है पिंकी जी का। सो और एक और मैसेज मुजफ्फरनगर से भी हमारे पास पहुंच गया है, ये हरिओम जी का। तो देखिए दूर दूर से लोग जुड़ रहे हैं। आप मुरादाबादी कब जुड़ेंगे, हमें आपका भी तो इंतजार है यार। आप भी तो जुड़िए ना हमारे साथ 9837896896 पर। मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके मैसेजेस का। एक ऐसी छोटी सी पहेली लेकर आऊंगा जिसमें आप जरूर मुझे पता है आंसर करेंगे, आपको भी बहुत मजा आएगा। आने वाला गाना एंजॉय करते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, गुड मॉर्निंग।

0: बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: कहा मेरी कसम?
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय
3: बिंदास मॉर्निंग
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग्स आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे।

0: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2, निकट विवेकानंद अस्पताल, मुरादाबाद, 7983153386।
1: कोई मिल गया, कोई मिल गया।
2: और आपको मिल गया है आपके शहर का देसी रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। ये है आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, जो बजाता है आपके फेवरेट गाने। बातें होती हैं दिल से दिल तक, यादों का सितारा, गीतों का सहारा। मुरादाबाद को मिल गया है आपका अपना रेडियो प्यारा। सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
3: वेरी नाइस यार, देखो तीसरे घंटे की शुरुआत, एंड दिस इज माय लास्ट आवर। वेरी गुड मॉर्निंग है जी 90 भाई साहब। देखो मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये जो टाइम है ना, बहुत तेजी से भागता है। ये जो 9 बजे वाला आ रहा है ना, ये बहुत तेजी से निकलता है यार। एनीवेज आगे बढ़ते हुए मैं आपसे एक चीज कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप भी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 9837896896। और भाई साहब अगर अब बात हो ही गई है इस वाले आर की, तो यहाँ पर एक और चटपटा सा सवाल मैं डेफिनेटली आपसे पूछना चाहूंगा, एंड आप मुझे डेफिनेटली व्हाट्सएप करके बताइएगा। फ्रिज बड़े कमाल की चीज है और हम आपसे जानना चाहते हैं उसमें जो भी चीज आप रखते हो वो ठंडी रहती है, राइट? लेकिन ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी गर्म रहती है, आपको क्या लगता है? आप मुझे जरा मैसेज करिएगा, लेकिन सोच समझ के बताइएगा आंसर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है आज की सुबह आपके लिए। फ्रिज में ऐसी कौन सी चीज है जो रखने के बाद भी गर्म ही रहती है, वो ठंडी होती ही नहीं है, कौन सी चीज है जरा बताइएगा दिमाग लगा के। आज सैटरडे की सुबह है, आप सुन रहे हैं आरजी आनंद को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हाँ जी, 9:06 का समय हो गया है लेडीज एंड जेंटलमैन। ढेर सारे श्रोता हमारे साथ जुड़े हैं, जुल्फी भाई जुड़ चुके हैं, लिखते हैं आनंद भाई गुड मॉर्निंग, आज की सुबह आपकी आवाज सुनकर मजा आ रहा है भाई, फिलहाल मैं अपनी गाड़ी में हूँ और आपको सुन रहा हूँ, क्या बात है यार, थैंक यू सो मच। तारीख जी जुड़ चुके हैं आज की सुबह, अरे तारीख भाई आपके आते हमारी तारीख याद आ गई, आज 25 जुलाई हो गई है। ये भी लिखते हैं सुप्रभात आनंद जी, आप पूछ रहे थे ऐसी कौन सी चीजें जो इंसान की जिंदगी में वापस लौट कर आती है, तो मुझे लगता है मेहनत का फल तो जरूर आता है लेकिन कर्मों का फल भी है जो लौट कर वापस आता है, क्या बात है। इसके अलावा श्रुति मेरे साथ जुड़ी है इस वक्त, ये मुझे लिखती है TTI सिटी से जुड़ रही है, लिखती है गुड मॉर्निंग और आज एकादशी की ढेर शुभकामनाएं आपको जी, आपको थैंक यू इतने प्यारे प्यारे मैसेज करने के लिए यार, मैं मतलब आप सभी का फैन हो गया हूँ, इतने अच्छे मैसेज आप लोग पहुंचाते हैं ना, बड़ा मजा आता है यार मुझे, इतने अच्छे अच्छे मैसेज आप करते हैं, मतलब दिन एकदम जकास बना देते हो आप हमारा, इतनी प्यारी प्यारी बातें पता नहीं कहाँ से लेकर आते हैं यार हमारे इतने प्यारे प्यारे श्रोता, क्या कह रहे हो आनंद जी, जैसे आप प्यारी प्यारी चीजें पढ़ते हो वैसे हम भी पढ़ते रहते हैं और लेकर आते रहते हैं प्यारी प्यारी बातें, चलो ये तो बहुत ही बढ़िया है यार, ये एक अच्छी चीज है। एंड ऑफकोर्स आप मुझे व्हाट्सएप करके ये बता सकते हो अगर आज की सुबह आपके पास टाइम है तो, ठीक है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप मुझे मैसेज करके बताओ जरा फटाफट से, ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद ठंडी नहीं रहती गर्म ही रहती है यार, क्या लगता है आपको। आने वाला एक गाना जो थोड़ी सी अच्छी बना देगा मॉर्निंग, सैटरडे है, शनिवार है, मौसम अच्छा है, आपको थोड़ा सा बूस्टर दे देता हूँ इसी गाने के साथ। ओए होए, मैं क्या जी, क्या दो बाजी, होए होए, दिल लगे ये अभी नहीं आएगा मेरे भाई, ये बीच में आएगा, आप टेंशन मत लो, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करो, फिलहाल अभी जो अगला गाना आ रहा है उसे एंजॉय करो। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ आप मुझे मैसेज कर सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है, और अगर वॉइस नोट पहुंचा सकते हो तो उससे भी अच्छी बात है। चलो अभी इस गाने को एंजॉय करते हैं और आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग।

अरे भैया इसकी बातें हैं चटपटी, गाने सुनाता है मस्त, और जब ये बोलता है ना तो भाई साहब मॉर्निंग और भी हो जाती है जबरदस्त। सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ ओनली ऑन FM मुरादाबाद 89.6 FM।

0: बहुत ही खूबसूरत ट्रैक सिंघम से भी आपने एंजॉय किया इस गाने को। आप सुन रहे हैं आरजे आनंद को, ये है आपके शहर का अपना स्टेशन ऑफ द नेशन। बहुत ही खूबसूरत आवाज थी श्रेया घोषाल की। इस गीत को सुनते हुए जो है हम आगे बढ़े और अभी फिलहाल और आगे बढ़ने का टाइम हो गया है, बिकॉज 9:16 हो रहे हैं। वेलकम बैक एक बार फिर से, ये शनिवार की सुबह है, तमाम सारे श्रोता साथी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए बात करते हैं अभी देश विदेश में क्या चल रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ी सी जो है चर्चा कर लेते हैं। श्रोताओं आपको बताते चले, अभी रिसेंटली आज की सुबह एक सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आई है वो है फेसबुक से जुड़ी। हाँ जी, तो आपको बता दें कि आज की सुबह आपका फेसबुक भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आप अकेले नहीं है। आपको बता दें दुनिया भर के हजारों यूजर्स ने जो है इसकी शिकायत की है। फेसबुक में लॉग इन करने के बाद, वेबसाइट खोलने के बाद, ऐप खोलने के बाद जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, और इसका सिंपल सा मतलब है कि फेसबुक का सर्वर थोड़ा सा डाउन हुआ है। हाँ जी, और आपको बताते चले फेसबुक लॉगिन से लेकर वेबसाइट तक जो है थोड़ी सी उसकी सर्विस ठप हो गई है। कभी कभी हो जाता है, नेटवर्क इशू भी हो जाते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से ठीक से कनेक्टिविटी नहीं बन पाती है। तो आज की सुबह भी फेसबुक, तमाम फेसबुक यूजर्स के साथ ये चीज़ तो डेफिनेटली हुई है। आगे बढ़ते हैं, आपको एक और चीज़ बताते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी जो प्रोटेस्ट चल रहा है जंतर मंतर पे, जो ये चल रहा था अभी स्टूडेंट वाला, इसको लेकर जब उन्होंने रात को 12 बजे एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने मित्रों की जगह फ्रेंड्स बोला, उसके बाद जो है जेंजी को काफी कनेक्ट किया, एंड यही वीडियो 24 घंटे में 303 मिलियन व्यूज जो है पहुंच चुके हैं, 1 मिलियन फॉलोअर्स उनके और बढ़ चुके हैं। एंड मतलब सबसे ज्यादा ये वीडियो देखा गया, स्प्रेड किया गया, और ये रिकॉर्ड तोड़ जो है वीडियो बना इंस्टाग्राम का। दिस इज द वर्ल्ड रिकॉर्ड वीडियो फ्रॉम इंस्टाग्राम, एंड ये वीडियो जो साझा किया गया था वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। बेसिकली उन्होंने एक रील फॉर्मेट में नहीं डाला था इसको, इसे सामने फ्रंट कैमरे से बनाकर उन्होंने एक छोटा सा रील एंगल ही था ये, इसको पोस्ट किया सोशल मीडिया हैंडल पे प्रधानमंत्री जी ने अपने इंस्टाग्राम पे, एंड उसमें उन्होंने थैंक यू फ्रेंड्स संदेश जारी कर युवाओं को जो है उनका आभार व्यक्त भी किया है। एंड उनका जो अभी ये प्रोटेस्ट चल रहा था इसको लेकर उन्होंने कुछ चीज़ें बताई, एंड उसके बाद उनका वो रील इतना ज़्यादा वायरल हुआ 24 आवर में, इतने अच्छे खासे व्यूज और इतना ज्यादा जो है ये वीडियो चला कि भाई साहब ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बना गया उनका वीडियो। कैन यू इमेजिन, भी बड़ी और 1 मिलियन फॉलोवर भी बढ़ गए हैं, सोचिए आप। तो मतलब कुछ भी कभी भी हो सकता है। एंड आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप भी देखिए सोशल मीडिया बड़ी कमाल की चीज है यार, है ना, तो यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, एक और चीज आपको बताते चले, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अब ये कहा है कि कोई भी जो मंत्री है वो सिर्फ एक्स पर नहीं, यानी कि ट्विटर पर नहीं, अब इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहना पड़ेगा सभी मंत्रियों को। तो ये एक अच्छी चीज है कि भाई साहब जितने भी लोग हैं अब वो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हो जाएंगे, क्या बातें हैं। और उन्होंने कहा कि भैया सिर्फ सरकारी कामों की जानकारी ही नहीं बल्कि रील्स और जो कंटेंट है उसके जरिए युवाओं को सीधे ये जो है कनेक्ट कर पाएगा। जितने भी मंत्रीज हैं, जो भी अथॉरिटीज हैं, वो भी अब सोशल मीडिया हैंडल पर जो है कनेक्ट होने वाले हैं। दैट इज़ वेरी वेरी अमेजिंग, एक अच्छी गुड न्यूज़ है। आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें अगस्त के 15 दिनों के भीतर जो है 2 बड़े ग्रहण लगने वाले हैं, जिसकी सोशल मीडिया पर तमाम जम के उसके बारे में बातचीत हो रही है। इसके बारे में डेफिनेटली मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड इसके अलावा और क्या चल रहा है सोशल मीडिया पे, यूएई में एक बहुत ही कमाल की इंटरेस्टिंग रिसर्च हुई है जिसमें बहुत ही कमाल की चीज़ पता लगी, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा। एंड हमारे बिग बी यानी बच्चन साहब का एक शो बहुत ही पॉपुलर है जो 10 अगस्त से जो है इसका कमबैक होने वाला है, एक बार फिर से जो है ये वापस टीवी पर आने वाला है, जिसको लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड है। इसके बारे में डेफिनेटली अभी मैं बताने वाला हूँ। और एक और चीज़ है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चल रही है सोशल मीडिया पर, उसके बारे में बात करेंगे। मुरादाबाद में क्या चल रहा है ये आपको जानना है, मैं डेफिनेटली बताऊंगा। आप कहीं बचाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए। ये तालियां आप सभी के लिए, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप लोग पहुंचा रहे हैं उसके लिए मैं आपका दिल से थैंक यू करना चाहता हूं यार, सच में बहुत ही प्यारे प्यारे मैसेजेस आप पहुंचा रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे मैसेज पहुंचाते रहिए, हमें बहुत खुशी होगी जब आप इतने प्यारे प्यारे मैसेज करते हैं तो हमारा मन और दिल दोनों ही खुश हो जाते हैं यार, थैंक यू सो मच। गाना आपके रेडियो पर पहुंचने वाला है जरा सी देर में आधा, आप सुनेंगे इस गाने को गरम मसाला से। मैंने कहा है पाजी, एक मैंने आपसे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था जिसका जवाब मुझे ढेर सारे लोगों ने दे दिया है यार, लेकिन मजे की बात पता है क्या है, मजे की बात यह है कि कुछ लोगों ने जो है ना ऐसे जवाब दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं, मुझे बस सीधी हंसी आ रही है यार। एक बंदे ने लिखा है मेरे को, मैं इनका नाम नहीं लूंगा, लिखा हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, मैं बताना चाहता हूं कि ऐसी वो चीज है जो फ्रिज में रखने के बाद भी ठंडी नहीं होती है, वो है बर्फी, वो हमेशा गर्म ही रहती है। भाई ये कौन सा जवाब था यार, ये तो मतलब अलग ही दिशा में पहुंच गया है। एनीवेज आपको क्या लगता है, फ्रिज में ऐसी कौन सी चीजें रखने के बाद ठंडी नहीं होती है, वो गर्म ही रहती है? आपको इसका अगर जवाब पता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं आज की सुबह। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डेफिनेटली आप मुझे व्हाट्सएप पहुंचा सकते हैं 9837896896 पे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ वॉइस नोट मेरे पास पहुंचे हैं, जरा ये सुनते हैं इनके बारे में, मतलब इनके विचार जरा जान लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये क्या पहुंचा रही हैं आज की सुबह?
1: गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्ते, आई होप मस्त होंगे आप।
0: जी बिल्कुल।
1: अभी आपने एक सवाल किया था कि इंसान की कौन सी चीजें जो वापस लौट कर आती है, समय, कर्म या फिर मेहनत?
0: हाँ जी,
1: तो मुझे लगता है कि समय वापस नहीं आता, पर सीख बनकर जरूर आता है।
0: क्या बात है।
1: एग्जाम्पल, तुमने एक साल किसी रिश्ते में दिया, वो एक साल तो गया पर वापस नहीं आया, पर उस साल में तुम्हें क्या दिया, किस पर भरोसा करना है किस पर नहीं, ये तुम्हारी सीख थी। खुद से प्यार करना, ये तुम्हारी ताकत थी, और अगली बार धोखा ना हो ये समझ थी।
0: वेरी गुड।
1: तो समय गया पर लेकिन सीख वापस आ गई। और दूसरा कर्म
0: जी,
1: कर्म 100% वापस आता है।
0: बिल्कुल।
1: तुमने आज तुमने किसी का दिल दुखाया है तो एक ना एक दिन तुम्हारा दिल भी जरूर दुखेगा।
0: ओके।
1: और आज तुमने किसी की मदद की है, एक ना एक दिन बिना मांगे तुम्हारी मदद भी अवश्य होगी।
0: जरूर।
1: और तुमने एक सच बोला, एक दिन सच तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा। और रही तीसरी बात, मेहनत, मेहनत वापस जरूर आती है। जैसे तुम आज अपने
0: अब ये यहाँ पर थोड़ा अटकी है।
1: मेहनत कैसे वापस आती है ये आप बताएंगे हमें।
0: अच्छा, ओ वाओ, दैट्स वेरी नाइस। उल्टा मेरे को इन्होंने जो है इसमें शामिल कर दिया है। जरूर जरूर मैं बताऊंगा थोड़ी देर में। भूपेश शर्मा जी का भी एक वॉइस नोट है, लेकिन थोड़ी सी देर में सुनेंगे। फिलहाल गाना
2: आए हाय अदा, पुशुराए अदा, कर दे दीवाना।
0: सोनू निगम साहब की आवाज। कल हम एक रेडियो लिसनर के घर गए थे, अपने एक बड़े हमारे प्यारे रेडियो श्रोता है, उनके गांव में हम गए, उनके घर पर हम गए। बड़ा मजा आया उनसे बातचीत करके, तमाम सारे रेडियोज जो है उन्होंने मेरे को दिखाए, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हुई उनके साथ। मैं एक छोटी सी यहां पर मेमोरी डेफिनेटली शेयर करूंगा। आई विल बी राइट बैक, आने के बाद ठीक है। आप कहीं मैं जाओ, सुंदर हो एफएम मुरादाबाद।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग।
1: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
2: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
3: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
2: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
4: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
5: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
6: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
7: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
8: अब क्या तोड़ दिया नालायक, सॉरी
9: मम्मा का नलायक बेटा।
10: हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड

0: जश्न मना के ओ यारा ढोल बजा के ओ यारा जश्न मना के
1: क्या बात है
0: ओ यारा ढोल बजा के
1: ओए होए

0: बढ़िया सा गाना सुन लिया आपने। मुझे पता है बहुत सारे लोग ना एकदम फ्लैश बैक में चले जाते हैं इसे गाने से। 9:33 हो रहे हैं, आनंद के साथ जुड़े हुए हैं आप, आपकी फेवरेट रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर।
1: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन।
2: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए एफएम मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए।
3: वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे आईटीएम यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
4: नैक द्वारा ए ग्रेड एनआईआरएफ में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
3: डिप्लोमा से पीएचडी तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
4: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
3: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
4: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।

0: चलिए भैया अब जरा काम पे लग जाते हैं। सबसे पहले तो हम आपको कल की बात बता रहे हैं। कल एक्चुअली ना अभी हमारा एक थोड़ा सा प्रोग्राम का सेगमेंट चल रहा है, तो हमें उसके सिलसिले में बहुत सारे गांव में हम जाते हैं वहां पर अवेयरनेस करने के लिए, ताकि लोग रेडियो के बारे में भी थोड़ा जाने और थोड़ी सी जो कुछ स्कीम्स गवर्नमेंट की होती हैं उसके बारे में हम बताने के लिए जाते हैं बहुत सारे गांव में। आजकल हम विजिट कर रहे हैं, संडे भी हमें 2-3 गांव में जाना है विजिट करने। तो कल हम लोग हमारे एक बड़ी प्यारे श्रोता है रिजवान खान साहब, उनके गांव में पहुंचे और उनके भाई से भी मुलाकात हुई उस्मान टेलर साहब से, और उनके घर पे गए। भाई साहब सबसे पहले यार जब आप लोग घरों पे जाते हैं ना, इतनी खातिरदारी तो ऐसे करते हो यार, मतलब मैं बता ही नहीं सकता हूँ यार, लेकिन इतना अच्छा लगता है। इतने रेडियो लिसनर्स जो हमारे होते हैं, एक्चुअल में दिस इज वेरी वेरी जेन्युइन, जब आप लोगों से मिलते हैं इतना प्यार, इतनी शिद्दत के साथ जो है आप इस्तकबाल करते हैं अपने आरजेस का, इतना प्यार आप देते हैं उनको, मतलब मेरे पास तो खैर शब्द ही नहीं आ रहे। मेरे को बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं हमेशा कहीं ना कहीं गाँव में विजिटिंग के लिए जाता हूँ, बहुत सारे रेडियो लिसनर्स से मेरा मिलना होता है। लास्ट टाइम मैं पीतल नगरी गया, वहाँ मुझे मैं जी मिले, कल हम बीजना गांव में गए, वहां पे हमें रिजवान खान साहब से मिलने का मौका मिला। इसके आसपास और भी बहुत सारे गांव थे जहां हमारे रेडियो श्रोता रहते हैं, शायद हम वहां पर भी जाएंगे। तो संडे को भी हमें 2-3 गांव विजिट करने हैं, क्योंकि हम डेली जितने भी हमारे आसपास के ग्रामीण क्षेत्र हैं हम वहां जाकर के थोड़ी इन्फॉर्मेशन बताते हैं, थोड़ी सी जो इन्फॉर्मेशन है, जो काम की चीजें हैं वो लोगों तक पहुंचाते हैं। सिर्फ रेडियो पे बातें करने ही हमारा काम नहीं होता है भाई, इसके बाहर भी बहुत सारे काम होते हैं जो एक्चुअली हमें पूरा दिन करने होते हैं ना। सो वेल बाय द वे बहुत ही अच्छा लगा रिजवान जी, उस्मान जी आपसे मिलकर, और आपके आसपास में और भी 2-3 और थे श्रोता लोग जिनसे मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा। और कल का जो ये मेमोरेबल मोमेंट है वो डेफिनेटली आप मेरे इंस्टाग्राम पे चेक आउट कर सकते हैं। यू हैव टू गो एंड चेक आउट माय रेडियो वाला आनंद 95 के नाम से इंस्टाग्राम है, और या ऑफिशियल आईडी देखो एफएम मुरादाबाद 89.6, वहां पर भी आपको मिल जाएगा। जो एक फैन मोमेंट होता है ना जब हम उनसे मिलते हैं, जो हमें रेडियो पे सुन रहे हैं, जब उनके सामने हम होते हैं तो बात ही अलग होती है। और एक इनकी यहां पर एक दीपक भैया रहते हैं, उनसे भी मिलके बहुत ही मजा आया। और सच बताऊं तो जब हम कहीं पर जाते हैं और इतनी यू नो प्यार मोहब्बत से लोग पेश आते हैं तो मजा ही आ जाता है। जी बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन आपका, थैंक यू करना चाहेंगे। उनके पास रेडियो बड़े कमाल के थे यार, मतलब इनके मैंने रेडियो देखे, इतने प्यारे प्यारे रेडियो रखे हुए यार। रेडियो लिसनर्स के पास अगर कोई चीज़ है तो वो रेडियो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। वेल इसी को ध्यान में रखते हुए हमने अपने लिसनर्स के लिए एक और नया प्रोग्राम का जो है अब आगाज हम लोग करने वाले हैं। एक नया प्रोग्राम आप सभी के लिए वेरी वेरी सून आएगा, जिसमें हमारे श्रोता जो है अपने दिल की बात रख पाएंगे हमारे प्रोग्राम के जरिए। कौन सा प्रोग्राम है, कब आएगा, क्या होगा, सब कुछ आपको पता लगेगा, बट अभी नहीं, थोड़े थोड़े करके सारी चीजें आपको बताएंगे, है ना। फिलहाल आगे बढ़ते हैं, और ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंच चुके हैं। मैंने आज की सुबह आपसे पूछा था ऐसी कौन सी चीज है जिसको फ्रिज में रखने के बाद भी जो है वो ठंडी नहीं रहती, गर्म ही रहती, एंड मतलब ऐसे ऐसे जवाब मेरे पास आए ना जिनको सुनने के बाद कभी कभी ना आप खुद की हंसी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है ये फन क्रिएट करने के लिए किया जा रहा हो, लेकिन सच में यार आंसर बहुत अच्छे आए हैं, थैंक यू वेरी मच। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। चलो मैं अभी जवाब तो नहीं बताऊंगा आपको, बट डेफिनेटली मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ, वो पता है क्या है। हाँ, बस मैं नाम के साथ जो है ये बताऊंगा कि किसने सही जवाब दिया, लेकिन सही आंसर क्या है ये मैं तुरंत नहीं बताऊंगा बॉस। अगर ये मैंने एकदम से बता दिया तो मजा नहीं आएगा ना, थोड़ा सा और जो है क्रिएट करते हैं इसको, थोड़ा सा और टिपिकल बनाते हैं। लेकिन जिन्होंने सही जवाब दिए हैं उनके नाम फटाफट जरा मैं शामिल कर लूँ यहाँ पर। ढेर सारे मैसेज मेरे पास पहुंचे हैं। हाय, गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? माय नेम इज सुनीता। गुड मॉर्निंग सुनीता जी, ने सही जवाब दिया है। प्रेरणा जुड़ी है मेरे साथ राइट आंसर के साथ, एंड ये मेरे पास डेली रोड से मैसेज आ रहे हैं प्रतीक का, इन्होंने मेरे को राइट आंसर दिया है। एंड एक और व्हाट्सएप मेरे पास पहुंचा है, ये बहुत ही प्यारे श्रोता है हमारे, हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं, पल्लवी जी थैंक यू वेरी मच। एंड सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीस, मेरे प्यारे लिसनर जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग जी, आप कैसे हैं? नमस्ते आनंद जी, आपको सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, आपके प्रोग्राम्स में गाने बहुत अच्छे होते हैं, थैंक यू सो मच। एक और मैसेज आ रहा है हमारे पास। हेलो जी, सहारनपुर से जोन रोजी पलविलीस मेरे साथ जुड़ते हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत बात लिखते हैं कि इंसान ही इंसान की दवा है, कोई दुख देता है तो कोई सुकून बन जाता है। वाह जी वाह। हाँ, वैसे कल हम जब इस गांव में गए थे तो हमें एक यूनुस खान साहब थे, उनसे भी हमारी मुलाकात हुई। वो भी बड़े पुराने रेडियो श्रोता हैं और इतने पुराने पुराने रेडियो लिसनर पड़े हैं यार, मतलब जिनसे जब वो मिलते हैं तो मतलब बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है यार। दिस इज वेरी वेरी एक्सीलेंट मोमेंट यार, थैंक यू जी कल की मुलाकात के लिए। और देखिए अभी एक मैसेज आया है, नमस्कार आनंद जी, मैं अमित हूँ। वैसे तो मैं अभी फिलहाल मुरादाबाद लाखड़ी फाजिलपुर का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी करंटली मैं मेरठ में हूँ। एंड आज की सुबह मैंने आपका प्रोग्राम सुना, आपकी आवाज़ और आपका अंदाज बहुत ही अमेजिंग था, आप श्रोताओं को बहुत अमेजिंग तरीके से जोड़ते हैं, एंड बहुत ही अच्छा लगता है आपका शो, थैंक यू। उस्मान टेलर साहब जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की सुबह, देखिए अभी इन्हीं की बात चल रही थी। एंड एक और व्हाट्सएप पहुंचा है मेरे पास दौलत बाग से, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हालचाल है आपके? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ अंसार हुसैन जी, अंसार हुसैन साहब थैंक यू सो मच। ये राजा कश्यप जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर, आप कैसे हैं? क्या आपने सुबह का ब्रेकफास्ट किया? नहीं नहीं किया, भिजवाओ जल्दी। हाय गुड मॉर्निंग, कश्मीर से मैसेज आ रहा है मेरे पास। कैसे हाल चाल है आनंद जी? मैं बहुत ही बढ़िया हूँ यार। अच्छा, भूपी शर्मा जी का वॉइस नोट रह रहा था यार, पहले वो जल्दी से सुन लेते, नहीं तो नाराज हो जाएंगे यार, फिर मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। जी सर
1: नमस्कार।
0: नमस्कार
1: राधे राधे। कहिए। वो तारीख आज भी याद है मुझे, ना हम भूल सके ना वक्त ने हमें भूलने दिया। उस पल को याद करके दिल खामोशी से चीख उठता है, जैसे कोई था जो था तो अपना, पर अब यादों का साया है। दुनिया के लिए वो सिर्फ एक तारीख है कैलेंडर में, पर मेरे लिए वो दर्द का निशान है, जहाँ से जिंदगी ने मुस्कुराना ख़त्म कर दिया। कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो सिर्फ हादसे नहीं होते, वो पूरी ज़िंदगी की कहानी बदल देते हैं। आज हमारे पिताजी की प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें सत्सत नमन। आज मेरे पास ना तो कोई मैसेज है ना कोई विचार है, आज यही दुख आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। नमस्कार राधे।
0: भूपी जी थैंक यू सो मच। देखिए, अपनी खुशियों में तो हर कोई हमें शामिल करता ही है, लेकिन आपने इस मोमेंट पे हमें शामिल किया है। हम तमाम रेडियो लिसनर्स और तमाम रेडियो की टीम, जितने भी लोग सुन रहे हैं, वो सब आपके इस दुख में बिल्कुल शामिल हैं, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, वो जहाँ भी रहें खुश रहें, और आप भी देखिए खुश रहिए, है ना। हमारे जो पूर्वज होते हैं वो हमें देख के खुश होते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हुए एक मैसेज पढ़ेंगे यहाँ पर। और गुड मॉर्निंग आनंद जी, आप कैसे हैं? नमस्ते, गुड मॉर्निंग। इन्होंने लिखा है, सर हल्का सा जो है ना ट्रैफिक लग रहा है, स्टेशन रोड की तरफ मैं हूँ एंड यहाँ पे ट्रैफिक जाम है, तो मैं रिक्वेस्ट कहना चाहूंगा थोड़ी सी भसड़ मची हुई है, इधर की तरफ अगर आप अवॉइड करेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। मेरे भाई नाम लिख देते तो मजा आ जाता। फिलहाल 9:41 हो गए स्टेशन क्लॉक में सैटरडे मॉर्निंग। अभी ये गाना सुन के जल्दी से वापस आता हूँ।

0: आज बिंदास मॉर्निंग सुना क्या?
1: क्या मेरी कसम,
0: मिस कर दिया तो रीलोड।
2: चाय चाय चाय,
0: सुनिए बिंदास मॉर्निंग आरजे आनंद के साथ मंडे टू सैटरडे 7 से 10।
3: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
5: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
5: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
5: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
3: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
6: बसंती, इनके सामने मत नाचना।
7: अरे भैया, नाचना है तो FM मुरादाबाद 89.6 की धुन पर नाचना।
8: आपको बताते चले भाई साहब, आप सभी को बताया श्रवण मास की तैयारी पूरे मुरादाबाद में जोरों शोरों से चल रही है और ऐसे में जो कांवड़ यात्री हैं उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा रहा है ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी चीज का जो है मतलब सामना ना करना पड़े, उनके लिए सारी चीजों को पूरी व्यवस्थित तरीके से तैयार किया जा रहा है। और आपको बता दें इसी बीच भोजपुर क्षेत्र के चकबेगमपुर रोड का जो निरीक्षण है वो किया गया है, वहां पर जो सड़क के किनारे खतरनाक गड्ढे हैं उन्हें तत्काल भरवाया जाएगा, जो लंबे समय तक जो है दुर्घटनाओं का कारण बने रहते थे अब उन गड्ढों को वापस से भरा जाएगा ताकि वो सड़कें थोड़ी सही हो सके। तो ये एक अच्छी चीज है, देखिए बढ़िया चीज मैंने फटाफट आपको बता दिए। लगे हाथ आगे बढ़ते हैं एंड अभी मैसेज का जो टाइम है वो डेफिनेटली होता जा रहा है। आप लोगों ने बहुत प्यारे मैसेज किए हैं, थैंक यू सो मच। श्रोताओं, आपको फटाफट से एक चीज तो है जो मुझे डेफिनेटली बतानी है और वो बहुत ही इमीडिएटली बता देते हूँ मैं आपको। देखिए छोटी छोटी चीजें ना कभी कभी हम बहुत अवॉइड कर देते हैं और वो चीजें हमें अवॉइड नहीं करनी चाहिए। आज भी बहुत सारे स्पेशल जो दिवस हैं वो मनाए जाते हैं, आज के दिन बहुत ही कुछ खास दिवस हैं जो आज के दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं और उनका जो मकसद होता है वही होता है कि भैया ताकि आपको समय समय पर एक रिमाइंडर मिल सके, एक आपको रिकॉल मिल सके बेसिकली। इसीलिए आज भी कुछ दिवस जो हैं वो मनाए जाते हैं। आपको बता दें आज का दिन बहुत खास है एंड आज देवशनि एकादशी भी सेलिब्रेट की जाती है, यानी कि आज जो है 4 महीने के लिए कहते हैं जो विष्णु भगवान है वो निंद्रा में चले जाते हैं सोने के लिए। तो आज का ये दिन जो है बहुत ही स्पेशल है, बहुत सारे लोगों के आज फास्ट भी होंगे यानी कि उपवास भी होंगे आई एम श्योर। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते चले अभी 11 बजे आरजे रीना के साथ एक बहुत ही कमाल का इंटरव्यू सेशन होने वाला है और एक बहुत ही अच्छा टॉक शो होगा, हेल्थ से रिलेटेड होगा, तो मैं चाहूंगा आप जरूर उसमें भी पार्टिसिपेट करें, जरूर आप लोग जुड़े थे 11 बजे से। एंड आज का जो दिन है उसी से जुड़ा हुआ आज का इंटरव्यू सेशन है तो मैं चाहूंगा कि आप उसे बिल्कुल भी मिस ना करें, बहुत ही महत्वपूर्ण है आज का टॉपिक भी और आज का विषय भी और आज की जो एक्सपर्ट होंगी रीना के साथ वो भी बहुत कमाल की होंगी। तो बस आप ऐसे ही जुड़े रहिएगा, विश्व IBF दिवस का आज मौका है, इसी खास मौके पर आज बहुत ही कमाल की एक्सपर्ट मौजूद रहेंगी आज रीना के साथ 11 बजे, तो आप जरूर जुड़िएगा। एंड श्रोताओं, आप ऐसे ही प्यारे प्यारे संदेश जो हम तक पहुंचा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ढेर सारे श्रोता साथी जुड़े हैं, ढेर सारे मतलब ऑल ओवर, तो मैं बताऊं तो पता नहीं कहां कहां से हमारे साथ लिसनर जुड़ चुके हैं आज की सुबह। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब काम की बातें ये रहेंगी। एक और छोटा सा सवाल, इसका जवाब मैं डेफिनेटली आपसे ही लेना चाहूंगा। देखिए भूपी शर्मा जी मेरे साथ पागवाड़ा से सही जवाब पहुंचा रहे हैं, मयंक भाई जुड़ चुके हैं आज की सुबह पीतल नगरी से, सुभाष जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं आज की मॉर्निंग मुजफ्फरनगर से, बहुत बहुत शुक्रिया। रिजवान खान साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं ग्राम बिजना से, लिखते हैं हाय गुड मॉर्निंग, सुबह 8 बजे से ही मैं रेडियो

रहा था, लेकिन मैसेज मैंने अभी किया है और इन्होंने भी एकदम सही जवाब दिया है। क्या बात है। हाय सर, गुड मॉर्निंग। उमेश कुमार जी लोधीपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। जी हम जल्दी लोधीपुर भी आने वाले हैं, तो हो सकता है आपसे मुलाकात हो जाए। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है। विकी सागर मुझे लिखते हैं, हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हालचाल है। विकी भाई वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच। लिखते हैं रेडियो वाले आनंद को, गुड मॉर्निंग। लिखते हैं रेडियो वाले आनंद हमेशा मेहनत करते हैं। बिल्कुल भाई, और बिना मेहनत के कोई भी चीज़ नहीं मिलती है, एंड थैंक यू वेरी मच। और ये लिखते हैं कि भाई फ्रिज में जो एक चीज़ है ना, जो रखने पे कभी भी जो है ठंडी नहीं होती है, वो हमेशा गर्म रहती है, वो है हरी मिर्ची। अरे भाई विक्की भाई, मतलब क्या भेज रहे हो आप यार हरी मिर्ची, मतलब इसका कोई समझ में नहीं आ रहा है यार विक्की भाई, ये मतलब क्या भेजना क्या चाहते हैं आप। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है। रहमत नगर करूला मुरादाबाद से नासिर हुसैन साहब जुड़े हैं, लिखते हैं दिल को सुकून आपके गानों से है, रूह को राहत आपकी आवाज से है, यूं ही महफिलों को सजाते रहिए, क्योंकि इंतजार हर दिन आपके नए गीतों से है। अरे वाह क्या बात है, वेरी वेरी अमेजिंग लाइन। हाय गुड मॉर्निंग, दुर्गेश सैनी बात कर रहा हूँ मैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। जी दुर्गेश जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप जुड़े। ईदगाह से शफी अहमद अंसारी, रईस दुल्ला अंसारी मेरे को सही जवाब पहुँचा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। एंड ये ललिता कश्यप जी नवीन नगर से जुड़ रही है, मेरी तबीयत के हालचाल पूछ रही, तो पहले से आई एम वेरी बेटर, आई एम वेरी वेल, मैं ठीक हूँ, पहले से थोड़ी सी तबीयत बेटर है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन ठीक ठीक है। हाय गुड मॉर्निंग आनंद जी, कैसे हालचाल है। एंड ये मेरे पास मैसेज आ रहा है, आपके एनर्जेटिक वॉइस प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है। गिरीश जो है चंद्र शर्मा जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं आकाश मेघदूतम से। हेलो गिरीश जी, हाउ आर यू, कैसे हाल चाल है आफ्टर लॉन्ग टाइम। बनारस से मोहसिन अंसारी साहब जुड़ गए हैं, लिखते हैं सुबह हुई तो फूल खिल गए, क्या तुम अपनी मीठी मीठी नींद से उठ गए, अगर नहीं तो मैं अगर आपके कान में चिल्लाऊं ना भाई ना रहने दो, मेरी आवाज़ काफ़ी है। मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी, डॉक्टर शैयद शारिक अली जी जुड़े हैं, लिखते हैं आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लग रहा है और इन्होंने मेरे को सही जवाब भी दिया है। आगे और भी ढेर सारे मैसेज हैं, एक और सवाल आ रहा है उसके बाद फिर हम आपके मैसेज को शामिल करेंगे। फिलहाल एक छोटा सा खूबसूरत सा ट्रैक, इसको सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। अगर आप अभी भी कुछ कहना चाहते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन डिलीवर कराना चाहते हैं रेडियो के थ्रू, तो आप डेफिनेटली हमारे साथ जुड़ सकते हैं आज की सुबह 9837896896 पर। आप इस नंबर पर मैसेज करके अपने जो भी आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जानी चाहिए बाहर, तो वो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं, एक अच्छा सा गाना निकाल रहा हूँ आपके लिए, इस गाने को सुनेंगे और उसके बाद वापस लौट कर आते हैं एक छोटे से सवाल के साथ। आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, ऐसे ही सुनते रहिए एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए गुनगुनाते रहिए। अभी फिलहाल मुझे जोरदार खांसी आ रही है, बहुत जोरदार। गाना सुनो, मैं आ रहा हूँ।

0: श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आप एंजॉय कर रहे थे आई हेट लव स्टोरी का बहुत ही प्यारा गाना। फटाफट से मुझे बताओ जरा अभी जो ये डायलॉग चल रहा है ये कौन सी फिल्म का है बिना किसी देरी के?
1: सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
1: मैंने तो ना देखी आज तक चोरियों को पहलवानी।
0: ये जो डायलॉग अभी आप सुन रहे हैं ये कौन सी फिल्म का है ये आपने मेरे को व्हाट्सएप करके बताना है, अपना उठाना है फोन, टाइप करना है अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सही जवाब सेंड करना है मेरे व्हाट्सएप पर 9837896896 पर। ठीक है, अगेन रिपीट कर रहा हूँ डायलॉग ध्यान से सुन के बताइएगा कौन सी मूवी का है।
1: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
2: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
1: मैंने तो ना देखी आज तक चोरियों को पहलवानी।
0: चलो अभी मैसेज करो हमारी छोरी छोरों से कम है के ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है भाई, मन ने बता दो यार जरा मैसेज करके, मैं इंतजार कर रहा भाई थारे मैसेज का। अरे 9837896896 ये बड़ा प्यारा सा नंबर है, छोटा सा नंबर है, इसी नंबर पे जो है आपने मेरे को मैसेज करना है। ठीक है, जितनी जल्दी मैसेज करोगे उतने चांसेस आपके बढ़िया होंगे जल्दी से हमारे शो के सुपरस्टार बनने के। ठीक है, तो अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके प्यारे प्यारे मैसेज का एंड आप एंजॉय करिए बहुत ही प्यारा ट्रैक जो निकल गया है आपके रेडियो सेट पर। एंजॉय करते रहिए आनंद को।

0: आप सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
2: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
3: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
2: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: आवश्यक सूचना, 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारी वादा।
6: मेरा इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है,
7: लेकिन सोनिया
6: डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं।
7: नामुमकिन नामुमकिन नामुमकिन,
8: लेकिन बॉलीवुड के गाने पकड़ना बहुत ही मुमकिन है। सुनिए FM मुरादाबाद 89.6 पे 90s बॉलीवुड के अमेजिंग गाने। ट्यून इन कीजिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
9: चलो भैया, 10:03 हो गए हैं स्टेशन की घड़ी में, और आज की सुबह मैंने आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा है कि भैया जो डायलॉग चल रहा है आमिर खान साहब का, ये कौन सी फिल्म का है?
10: पहलवानी तो सिर्फ छोरे करें।
11: हमारी चोरियां चोरों से कम है के?
10: मैंने तो ना देखा आज तक।
9: यही आपने मेरे को मैसेज करके बताना था, और मैं आपको सच बता रहा हूँ, इतने प्यारे प्यारे मैसेज आप लोगों ने किए हैं ना, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम लौट कर आते हैं, जल्दी से बताता हूँ कौन है आज की सुबह हमारे शो का सुपरस्टार, किसने दिया है मेरे को सबसे पहले सही जवाब। देखो यार, आप में से ही कोई एक है जो हमारे शो का विनर होगा, है ना? तो बस आप लोग हमारे साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहिए और ऐसे ही

0: ना बना लो भाई, बना लो अपना। हाय हाय हाय हाय, अरिजीत सिंह की आवाज, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक। भीड़िया मूवी से अभी आपने एंजॉय किया अपना बना ले, और बिल्कुल जी हम तो आपको अपना बना चुके हैं, आपने भी बना लिया है ना, वेरी गुड, हमें पूरा यकीन है जी। 10:08 हो गए, फिलहाल जाने का समय हो रहा है। बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सच में बहुत ही अच्छे अच्छे संदेश किए हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे सही जवाब दिए हैं। बहुत ही मजा आया आपके साथ आज बातचीत करके। फिलहाल अब मैं आपको मिलूंगा मंडे की सुबह, बिकॉज कल तो संडे है, तो कल मैं और आप तो मिल नहीं पाएंगे, ऑफकोर्स सीधी सी बात है ना। तो अभी चलिए बात कर लेते हैं, यहाँ पर मैंने जो आपसे सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है। मैंने आपको कहा था कि जरा मेरे को बताओ ये डायलॉग कौन सी फिल्म का है।
1: तुम्हारी चोरियां चोरों से कम है के?
2: मैंने तो ना देखा आज तक चोरी।
0: यही मैं आपसे पूछ रहा था, और भाई बहुत ही अच्छे अच्छे मैसेज आप लोगों ने किए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सच में सब लोगों ने बहुत प्यारे प्यारे जवाब दिए हैं, और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए अगर मैं आज ये बोलूँ कि सभी सुपरस्टार बन गए हैं, तो ये बोलना तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन हाँ सब गोल्डन स्टार जरूर बन गए। देखिए लेकिन कोई एक होता है ना जो सबसे पहले से जवाब पहुंचाता है है ना, तो उसी में से एक लकी विनर को मैंने शॉर्टलिस्ट किया है। देखिए हमारे पास दो लकी जो है ना यहाँ पर नाम आ रहे हैं जो ब्लिंक हो रहे हैं। देखो सबसे पहले तो टीना ने मेरे को सही जवाब दिया था, हाय कुंदनपुर से लाइन पार से, इन्होंने मेरे को लिखा था दंगल मूवी का डायलॉग था ये, और

के अलावा ये हमारे साथ सालिम अंसारी जी जुड़े थे आज की सुबह, इन्होंने भी एकदम सही जवाब दिया था। तो इन दोनों ने जो है एकदम सही समय पे सही वाला जवाब बिल्कुल पकड़ा दिया है। बाकी लोगों ने भी जवाब दिए थे लेकिन थोड़ा सा टाइम जो है आगे पीछे हो जाता है टाइपिंग करने में। कुछ लोग ऐप में सुनते हैं, कुछ रेडियो पे सुनते हैं, तो थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है। कोई बात नहीं, वेल आप सभी के लिए जोरदार तालियां। चलो आप लोग खुश हो जाओगे, मैं मेरे को बताया, मैं आपका फटाफट नाम पढ़ता हूँ। डन, चलो चलो डन डन डन। रिजवान खान साहब जुड़े थे एकदम सही जवाब के साथ। देखिए सड़न इनका भी मैसेज आ गया था, एंड ये नासिर हुसैन साहब भी जुड़े थे सही जवाब के साथ। हेलो नमस्ते जी, कैसे हाल चाल है आनंद भाई? नमस्ते, मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। ये नौनेश कुमार जी जुड़े थे राइट आंसर के साथ, और मेरे पास मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन साहब जुड़े थे। ये क्या नाम था इनका जो बनारस से जुड़ते हैं, मोहसिन खान, इन्होंने भी सही जवाब दिया था। डीके अरोड़ा चंदन नगर से सही जवाब दे रहे थे। ये विकी सागर जी सही जवाब दे रहे थे, एंड इसके अलावा डॉली जी का मैसेज आ रहा था गागन से, सही जवाब के साथ जुड़ी थी। सही जवाब पहुंचा रहे थे भूपी शर्मा नगर पंचायत पागवाला से। ललिता कश्यप नवीन नगर से जुड़ रही थी मेरे साथ, और ये हमारे पास सही मैसेज पहुंचा रहे थे। शफी अहमद साहब भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ आज की सुबह। ये अलका वर्मा बुद्धि बिहार से जुड़ चुकी हैं आज की सुबह, ये भी मेरे साथ जुड़ी हैं सही जवाब के साथ। गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? फ्रिज में रखने पर जो चीज कभी ठंडी नहीं होती वो है गरम मसाला। ये मेरे पास महेश सैनी का मैसेज आ रहा है पागवाड़ा से। गुड मॉर्निंग, गर्म मसाले इज द राइट आंसर। ये सोनू मोनू रीना वंशिका रुचि इशिका ये सब मेरे साथ जुड़ रहे हैं मंझोला से, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हुए सही जवाब दे रहे हैं। रिहाना सही जवाब दे रही थी। हाय गुड मॉर्निंग जी, कैसे हाल चाल है? मुझे ऐसा लगता है कि बर्फी हो सकता है जो कभी भी ठंडी नहीं होती वो गर्म ही रहती है, भाई मुझे मारो। निखत भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, हाय गुड मॉर्निंग। ये प्रियंका शर्मा इंदौर से जुड़ रही है आज की मॉर्निंग। यूपी मुरादाबाद से जुड़ रहे हैं रणवीर सिंह जेठालाल, ये लिखते हैं सर जी हरी मिर्च है भाई मुझे मारो, क्या ही हो रहा है ये। आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और मैसेज आ रहा है सपना शर्मा जी का, नगर पंचायत पागवाड़ा से सही जवाब दे रही है। ये भावना जी नैनीताल से जुड़ी है, गुड मॉर्निंग नमस्ते, कैसे हाल चाल है? दीपक डोई फोड़े हमारे साथ जुड़ गए, आलोकला ये ओकला महाराष्ट्र से जुड़े हैं आज की सुबह। एंड इसके अलावा मेरे पास मैसेज पहुंच रहा है, हाय गुड मॉर्निंग, बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से जुड़े हैं। गाइस चलो थैंक यू वेरी मच, अभी इतना पैसा में इतना ही मिलेगा, ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, फिर मिलते हैं आपसे जल्दी से स्टेशन पे मंडे की सुबह। हाय गुड मॉर्निंग, कैसे हाल चाल है? मेरा नाम रूबी है, इन्होंने मुझे टेक्स्ट मैसेज किया है, और ये कुंदरकी से मैसेज कर रही है, इन्होंने सही जवाब दिया है दंगल मूवी का नाम है। गागन से मेरे पास मैसेज पहुंच रहा था, हाय गुड मॉर्निंग कैसे हाल चाल है, सही जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो सर गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? नमस्ते गुड मॉर्निंग आपको भी, सना जी का मैसेज आ रहा था। हेलो सर, इसका सही जवाब लाइन पार से खुशी पहुंचा रही है। अच्छा जी चलो गाइस थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आप अगली कंपनी अगले आरजे के साथ एंजॉय कीजिए। मैंने आपको बताया था ना 11 बजे एक बहुत अच्छा इंटरव्यू भी आने वाला है आपके लिए, तो आप जरूर उसको सुनिएगा, तो डेफिनेटली आप कनेक्टेड रहिएगा। अभी फिलहाल मैं ये गाना छोड़ के जा रहा हूँ, आप ऐसे ही मस्त रहिए, झकास रहिए, खूब सारा अपना ख्याल रखिए और अच्छी अच्छी चीजें करते रहिए यार। जितना अच्छा अच्छा आप करोगे ना उतनी पॉजिटिविटी आपके आसपास होगी, और जितने आप पॉजिटिव रहेंगे उतना आपकी लाइफ अच्छी होगी, है ना। जिंदगी को अगर बेहतर बनाना है तो थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे ना, तो बस पॉजिटिव रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: सुन रहे हैं बिंदास मॉर्निंग, बिंदास मॉर्निंग, बिंदास
1: मॉर्निंग। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। मिला
1: अरे तो भाई गुस्सा क्यों होते हो, यहाँ इंसाफ भी मिलेगा और एंटरटेनमेंट भी। एंटरटेनमेंट भी, क्योंकि आप सुन रहे हैं आपके शहर का फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन FM मुरादाबाद 89.6, जो कहता है रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए और दिल से कहिए जियो बिंदास।

0: जानी है।
1: हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट हो गए हैं श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 10:24 हो चुके हैं, और आज की तारीख यानी कि 25 जुलाई बेहद खास है, क्योंकि आज का बेहद पावन दिन है, क्योंकि आज है देवशनी एकादशी। मान्यता है कि आज के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, और यहीं से चतुर्मास का शुभारंभ होता है। इस दौरान पूजा पाठ भक्ति दान सत्कर्म का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन कहते हैं भगवान भले ही योग निद्रा में हो, लेकिन अपने भक्तों की पुकार हमेशा सुनते हैं, और उनकी कृपा और उनका कृपा हमेशा अपने भक्तों ऊपर बना रहता है। तो आप सभी को देवशनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आज का दिन हमारे लिए बेहद पावन है, और आज का जो वेदर है ना वो भी बहुत प्यारा है, बहुत प्रीटी है, और ठंडी ठंडी हवाएं, जो कि मैंने आप सभी को बताया भी कि ये जो मौसम है वो 15 यानी कि अगस्त तक ऐसे ही रहने वाला है। सुहाना मौसम, कभी धूप कभी छाव, और हवाएं की जो रफ्तार है वो ऐसे ही बरकरार रहेगी। सो आरजे रीना आप सभी के साथ कनेक्ट हो गई। श्रोताओं, आपने क्या करना है, हमें मैसेज करना है, नंबर है 9823789686 पर, और आज 11 बजे हमारे साथ एक गेस्ट भी कनेक्ट होने वाले हैं, जो कि बहुत सी चीज़ों के बारे में हमें बताएंगे जो कि हमें नहीं भी पता होता है, और हमें कैसे अपनी रक्षा करनी चाहिए, किस तरीके से अपना ध्यान रखना चाहिए, हर टॉपिक पे बात करेंगे। सो फिलहाल आज देवशनी एकादशी के मौके पर एक खाटू श्याम जी का बहुत ही प्यारा भजन सुनते हैं, उसके बाद आप सभी के मैसेज मैं शामिल करूंगी। ठीक है जी, आप इतने मैसेज करते रहिए।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
3: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
4: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
3: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आरजू रीना के साथ अब कनेक्ट है श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 10:34 हो चुके हैं और आज की तारीख बेहद खास है। आज मनाया जाता है यानी कि 25 जुलाई को वर्ल्ड IVF डे यानी कि इन इंट्रो फर्टिलाइजेशन डे। यह एक आधुनिक इलाज है जिसमें महिलाओं के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु का निषेचन लेम में कराया जाता है। इसके बाद बने हुए भ्रमों को महिलाओं को गर्भावस्था में स्थापित किया जाता है ताकि गर्भधारण की संभावना बढ़ सके। और ये डे बहुत ही खास है और आज इसी टॉपिक पर हमारे साथ यानी कि आज डॉक्टर भी कनेक्ट होने वाले हैं तो उनसे भी बात करेंगे इस टॉपिक के बारे में कि आखिरकार हमें कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए, महिलाओं को और पुरुषों को किस तरीके से अपनी केयर करनी चाहिए। इसीलिए ये डे यानी कि 1958 में पहली बार मनाया गया था ताकि हर किसी को इसके बारे में पता चले। इस दिन बेबी लुईस ब्राउनन का इस दिन जन्म भी हुआ था और लाखों दंपतियों के लिए माता पिता बनने की नई उम्मीद जगी। सो इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं और चलिए आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किनका क्या मैसेज आता है। हेलो, गुड मॉर्निंग रीना जी, जिला मुरादाबाद ग्राम बीजना से रिजवान खान जी, उमेश खान जी कनेक्ट होते हैं, दीपक जी, और ये गाना सुनना चाहते हैं, बाविला हूँ मैं बाविला, बाविला हूँ मैं बाविला। क्या बात है जी। अगले मैसेज की बात करूँ तो गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं विक्की सागर जी मुरादाबाद से और इनका कहना है कि हरियाणा वालों, हरियाणा का मौसम कैसा है? हरियाणा का मौसम सर बहुत अच्छा है, जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ है, लेकिन वहाँ गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। और ये गाना सुनना चाहते हैं दिलजीत सिंह की आवाज़ में। बिल्कुल जी, उनकी खूबसूरत आवाज़ में मैं आपको गाना ज़रूर सुनवाऊंगी। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूँ तो मुरादाबाद यूपी से रणवीर सिंह जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और इनका कहना है, पहले अपना ध्यान दो, बाद में दूसरों को ज्ञान दो, यही तो जीवन का सिद्धांत है। कोई ईश्वर के लिए सब कुछ छोड़ देता है और कोई ईश्वर पर सब कुछ छोड़ देता है। क्या बात है जी, बहुत अच्छी आपने लाइनें लिखी है रणवीर सिंह जी। और गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी। फिलहाल अगले मैसेज की बात करूं तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, जय श्री राम जी, गुड मॉर्निंग। ओहो, दुर्गेश शनी जी कनेक्ट होते हैं कल्याणपुर मुरादाबाद से। 1920 का ये गाना सुनना चाहते हैं, तुझे मैं प्यार करूं और इतना करूं। क्या बात है जी, चलिए जी डेफिनेटली हम गाना सुन रहे हैं। रिजवान खान जी के रिक्वेस्ट पर गाना सुनते हैं, बावला हूँ मैं बावला। चलिए जी, लौट बने रहिए आज रीना के साथ और मैसेज करते रहिए, नंबर है 9837896896।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर निकट सर्किट हाउस दिल्ली रोड मुरादाबाद
4: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी हाई शुगर पी या हार्ट प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज बांझपन का आधुनिक इलाज पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा अत्याधुनिक लेबर रूम OT SICU MICU हमारी पहचान है एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा

हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 10:47 हो चुका है, और यानी कि काफी, यानी कि 6 दिन के बाद फिर से यात्रा पटरी पर आ चुकी है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कौन सी यात्रा है जो फिर से शुरू हो गई है, यानी कि जो 19 जुलाई से बंद था, जिसमें बारिश के कारण यात्राएं हैं वो बंद कर दी गई थी, ताकि पहाड़ों से जो पत्थर गिरने लगे थे और भूख, वहाँ पे जो पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ तो गिरेंगे जब बारिश आएगी। लगातार बारिश इतनी ज़्यादा थी, इसीलिए श्रद्धालुओं को जो यात्रा है उनकी बंद कर दी गई थी। और अब अमरनाथ यात्रा है जो शुरू हो गई है। भक्तों ने बम भोले भोले के जयकारा लगाकर यात्रा शुरू कर दी है, यानी कि रात 2:40 से यात्रा ये शुरू हो गई है। और श्रद्धालुओं का भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, जिसमें यानी कि आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई को फिर से यात्रा शुरू हो गई है। बारिश बंद होने के बाद मौसम थोड़ा अच्छा हुआ और फिर से जो श्रद्धालु है वो भोले बम यानी कि भोले बाबा का नाम लिया उन्होंने और अपनी यात्रा को सफल बना रहे हैं, जिसमें यानी कि श्रद्धालु पहुंचे हैं 6,259 और जिसमें यानी कि महिलाएँ हैं 1,470, बच्चे हैं यानी कि भाई 25, और जो साधु संत है वो यानी कि 54, यानी कि आज की इस यात्रा में पहुंचे हैं। और जो वाहन यानी कि जो वाहन है उसकी सुविधाएं 233 वाहनों की कड़ी सुरक्षा में रखी गई है, और सभी श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा के लिए जगह जगह पर यानी कि हर चीज अवेलेबल है, ताकि किसी भी प्रकार की उन्हें प्रॉब्लम ना आए। और बारिश आती है उसके लिए भी, और थोड़ा सा जो पहाड़ इधर उधर गिरते हैं उसके लिए भी हर सुविधा उनके लिए तैनात है। और बाकी कहते हैं ना, मन में अगर श्रद्धा है, विश्वास है, तो हर काम आपका सफल हो जाता है श्रोताओं। सो आज यानी कि अमरनाथ की यात्रा फिर से 6 दिन बाद शुरू हो गई है। चलिए फिलहाल आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं कि किन का क्या मैसेज आता है। जय श्री राम रीना जी, क्या हाल है आपके? बहुत अच्छे हैं जी। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं बबलू सैनी मुंबई महाराष्ट्र से, और ये गाना सुनना चाहते हैं, कागज कलम दवा दे दा, लिख दो दिल तेरे ना। क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत ये गाना है। और अमरोहा से नेहा कनेक्ट होती हैं, क्या हाल है मैम? नमस्ते। नमस्ते जी, आपका ब्रेकफास्ट हो गया? नहीं नहीं जी, आज तो मैं सीधा व्रत खोलूंगी रात को। और ये गाना सुनना चाहती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत गाना है, जरा देख मेरा दीवानापन। हाय रीना मैम, कैसी हो आप? आपकी वॉइस बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच जी। और ये गाना सुनना चाहती है, साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, अब तो आजा। और इन्होंने अपना नाम

इन्होंने अपना नाम तो नहीं बताया है, लेकिन इनके नंबर के 4 डिजिट है 2481। तो आप सभी से विनम्र विनती है कि कृपया आप अपना नाम भी जरूर शामिल करें। देखिए, अगर आपका नाम आप नहीं बताएंगे तो कैसे पता लगेगा कि आपका मैसेज है वो शामिल हो गया है। इसीलिए आपको अपनी जो आपका नाम है वो शामिल करना बहुत जरूरी है श्रोताओं। और आप मैसेज करते रहिए। फिलहाल एक और गाना आप सभी के बीच बहुत ही खूबसूरत, इस गाने को सुनते हैं और फिर लौट कर आते हैं आप सभी के साथ और ढेर सारी बातें करते हैं।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए। यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
1: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है बिंदास मॉर्निंग शो, मॉर्निंग मसाला शो में श्रोताओ। और आप सभी को पता है कि आज हमारे साथ एक मैम कनेक्ट होने वाली है जो कि भव्य हॉस्पिटल से हैं। सो आज मैम से ढेर सारी बातें करने वाले हैं और आज का डे हमारे लिए बहुत ज़्यादा खास है। और आज है वर्ल्ड यानी कि IVF डे, यानी कि इसके बारे में हम बात करने वाले हैं मैम से, ढेर सारी बात करने वाले हैं। और समय की बात करूँ तो देखिए दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि 11:01 हो चुका है। तो आइए मैम से ही उनके बारे में हम जान लेते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: गुड मॉर्निंग मैम।
1: गुड मॉर्निंग
0: मैम, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जरा।
1: मैं डॉक्टर ज्योत्ना श्रीवास्तव, भव्य हॉस्पिटल मुरादाबाद सिविल लाइन में प्रैक्टिस करती हूँ। okay. और तकरीबन 25 सालों से मैं प्रैक्टिस में हूँ।
0: ओके मैम, तो मैम हमारा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो यही है कि यानी कि IVF होता क्या है।
1: IVF एक, इसका फुल फॉर्म है IVF का, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट। तो इसमें क्या करते हैं कि लैब में ग्रो करते हैं एम्ब्रियो को, स्त्री के अंडे लेकर के और पुरुष के स्पर्म लेकर के, वो लैब में प्रोसेस करके एक एम्ब्रियो तैयार करते हैं और उसको वापस स्त्री के गर्भाशय में प्लांट किया जाता है। और इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, क्योंकि ये जो सारा काम महिला के शरीर में होता है वो हम लोग कंट्रोल्ड विधि से एक लैब के अंदर उसको करते हैं और उसके बाद उस एम्ब्रियो को लैब में तैयार करके अंदर ट्रांसफर किया जाता है गर्भाशय में। Okay. उसके बाद एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह वो प्रेगनेंसी आगे बढ़ती है।
0: ओके मैम, सो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, किन परिस्थितियों में डॉक्टर IVF की सलाह देते हैं?
1: अगर किसी भी कारणवश पति पत्नी को नॉर्मल तरीके से अगर प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, या फिर महिला की उम्र कुछ ज्यादा हो रही है, या फिर पुरुष में कुछ समस्याएं हैं, उसके स्पर्म के काउंट अच्छे नहीं है या मोटिलिटी अच्छी नहीं है, या फिर ऐसा है कि ट्यूब जो है फैलोपियन ट्यूब वो अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और किसी किसी परिस्थिति में कारणों का पता चलाने के बावजूद दोनों स्त्री और पुरुष नॉर्मल होते हैं लेकिन फिर भी एक आम तरह से प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे केसेस में फिर हम लोग कहते हैं कि फिर आप तकनीक का इस्तेमाल करिए और उसके जरिए से आप प्रेगनेंसी और बच्चे को हासिल करिए।
0: मैम, इसका जो उपचार है वो कितने समय तक चलता है?
1: देखिए तकरीबन ये कपल की अपनी परिस्थितियों पे बहुत ही डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पर, समस्या है कहाँ पर। तो इसमें करीब 3-1 महीने तक लग जाते हैं।
0: ओके मैम, तो क्या मैम हर निसंतान दंपति को IVF की आवश्यकता होती है?
1: नहीं जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो देखिए चरणबद्ध तरीके से उनके सारी जांचें और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही निर्णय लिया जाता है कि उनको IVF के लिए जाना है या उससे पहले की तकनीक इस्तेमाल करनी है। जो उससे पहले तकनीक हम लोग इस्तेमाल करते हैं, अगर मान लीजिए ओव्यूलेशन यानी कि अंडोत्सर्ग में कोई प्रॉब्लम है स्त्री के साथ में, जैसे कि आजकल हम लोग पॉलीसिस्टिक ओवरीज वगैरह देख रहे हैं,

0: फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन का पूरा काम लैब में किया जाता है निगरानी में. और आईयूआई में क्या होता है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, यानी कि स्त्री के शरीर के अंडे उसके शरीर में ही रहते हैं, पुरुष के अंडे हम लोग अलग करके यानी कि स्पर्म हम लोग अलग करके उसको उसको एक विधि से उसको सेपरेट करके जो बेस्ट स्पर्म्स हैं उनको अलग करके फिर स्त्री के शरीर में डाला जाता है. इसमें सारा जो बाकी का काम होता है स्त्री के शरीर के अंदर ही होता है, लैब में नहीं होता.
1: ओके मैम,
0: तो ये दोनों में अंतर है.
1: ओके मैम. सो मैम, हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि आईवीएफ की सफलता किन किन बातों पर निर्भर करता है.
0: बहुत सी चीजें हैं जिस पर निर्भर कर सकता है. तो सबसे प्रथम तो ये है कि स्त्री की आयु कितनी है.
1: हाँ, आयु कितनी है.
0: हाँ बिल्कुल. और उसके एग का स्टेटस कितना है, और एक हार्मोन होता है जिसको हम लोग एएमएच कहते हैं, उसका लेवल कितना है, मतलब कि खुद के अंडे बन पाने की कितनी संभावनाएं हैं अच्छे एग बन पाने की. दूसरे स्पर्म के ऊपर मतलब बात आती है जब कि स्पर्म कितने प्रभावशाली हैं, कितने स्ट्रांग हैं, कि उसमें फर्टिलाइजेशन की क्या कैपेबिलिटी है. तो ये सब चीजें हैं, इस पर डिपेंड करता है. दूसरे डॉक्टर पे भी निर्भर करता है, लैब पे निर्भर करता है, एम्ब्रियोलॉजिस्ट पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि सफलता कितनी रह सकती है. और बाकी जो है लैब बहुत महत्वपूर्ण होती है इसमें.
1: ओके मैम.
0: इतनी अच्छी तरह से उसको मैनेज किया जा रहा है तो उस पे उसकी सफलता बहुत निर्भर करती है.
1: मतलब ये मैम, ये जो एज की अगर आपने बात करी है तो यानी कि 25-26 के बाद.
0: देखिए 35 तक तो स्त्री के शरीर में बहुत अच्छे अंडे आमतौर पे बनते हैं.
1: ओके मैम.
0: जो की परिस्थितियां हम अपने देश में देखते हैं. लेकिन 35 के बाद, वो 35 वर्ष की आयु के बाद थोड़ा सा अंडे बनने की जो समस्या है वो आ जाती है. और आजकल ये भी थोड़ी सी दिक्कत की बात है कि लड़कियां अपने करियर वगैरह में ज्यादा ध्यान देती हैं तो शादियां भी लेट ही हो रही हैं.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: तो बहुत सी स्त्रियां जो हैं वो 35 के आसपास पहुंच जाती हैं जब तक उनका पहला बच्चा या पहला गर्भधारण होता है.
1: हाँ जी.
0: तो इस वजह से भी आईवीएफ की तकनीक जो है अब ज्यादा से ज्यादा कपल्स अप्रोच करने लगे हैं, ज्यादा से ज्यादा उसको वो करने लगे हैं.
1: मतलब
0: जागरूकता भी बढ़ी है.
1: सो मैम, हमारा अगला क्वेश्चन है यानी कि पुरुषों की बांझपन की समस्या में आईवीएफ कितना प्रभावित है.
0: बहुत ज्यादा प्रभावी है. पुरुषों के बांझपन में अगर आप एक आध स्पर्म भी अगर आपको अच्छा मिल जाता है तो भी आप इक्सी टेक्निक से आईवीएफ कर सकते हैं. इक्सी टेक्निक में हम बेस्ट स्पर्म को सीधे अंडे के अंदर उसको निषेचित करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं बेस्ट स्पर्म को चूज करके. तो बहुत कम भी स्पर्म काउंट होता है तभी भी आप प्रेगनेंसी हासिल कर सकते हैं.
1: ओके मैम. सो हमारा अगला क्वेश्चन है मैम, क्या आईवीएफ से जन्मे बच्चे की पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ होते हैं.
0: बिल्कुल बिल्कुल. बहुत सुंदर, बहुत प्यारे बच्चे पैदा होते हैं और पूरी तरह से सामान्य होते हैं. और अगर किसी को ना बताया जाए कि आईवीएफ टेक्निक से पैदा हुआ बच्चा है तो कोई नहीं पता चला सकता.
1: ओके तो मैम, हम यहाँ पे एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, उसके बाद आपसे फिर कनेक्ट होते हैं.
0: जी जी बिल्कुल.
1: ओके तो श्रोताओं, बने रहिए आप हमारे साथ. अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप बिल्कुल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं. नंबर है 9823789689 पर आप मैसेज करिए. जो भी आपके डाउट है, जो भी क्वेश्चन है, मैम हमारे साथ हैं अभी कनेक्ट वो सारे डाउट क्लियर करने के लिए. फिलहाल एक म्यूजिकल हम ब्रेक लेते हैं.

0: चलिए भाई, श्रोताओं के मैसेज आने लगे हैं कि आखिरकार ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में भी जानने के लिए। तो बिल्कुल मैम है हमारे साथ, यानी कि हमारे सारे डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए मैम से कनेक्ट होते हैं। हेलो मैम, आपको कैसा लग रहा है हमारे साथ कनेक्ट होकर हमारे रेडियो पर? आपको लाखों श्रोता सुन रहे हैं इस टाइम।
1: मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये एक ऐसा माध्यम है जिससे एक मेरी आवाज जो है और मेरी जो भी मेरी जानकारी है उसके IVF या सब चीजों के बारे में, वो जन जन तक पहुंच रही है। शायद उनके कोई सवाल हो या कुछ हो जो उनके मन में कोई भ्रम हो इसको लेकर, कि अगर वो टूट सकता है तो इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कोई और नहीं।
0: बिल्कुल मैम, तो हमारे पास एक मैसेज भी आ गया है। अच्छा। और इनका कहना है कि इसमें कितना समय लगता है, खर्चा क्या है और क्या इसका प्रोसेस रहेगा, उसके बारे में ये जानना चाहते हैं।
1: देखिए, खर्चा बहुत कुछ इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें जो दवाइयां हैं, जो इंजेक्शन वगैरह हैं IVF टेक्निक के लिए, वो हमें कितने इस्तेमाल करने पड़ते हैं। तो खर्चा एक समझ लीजिए कि 50-60 हजार से लेकर के 1 लाख तक जा सकता है।
0: ओके।
1: तो ये बहुत कुछ इस पे डिपेंड करता है कि मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है और कितने हमें दवाइयों की आवश्यकता पड़ेगी और हम किस प्रकार की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। जैसे ICSI हम कर रहे हैं तो उसमें खर्चा थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, या अगर हम डोनर एग ले रहे हैं, किसी से डोनेट करवा रहे हैं एग को, तो उसमें खर्चा और थोड़ा सा ज्यादा बढ़ सकता है।
0: अच्छा।
1: और अगर हम सरोगेसी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बच्चा कोई और कैरी कर रहा है, तो फिर उसमें खर्चे से उस हिसाब से होते हैं। यही चीजें निर्धारित करती है कि आपके खर्चे कितने आ सकते हैं।
0: ओके मैम, तो मैम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या IVF से जुड़ी कोई गंभीर जटिलताएं भी हो सकता है?
1: बिल्कुल हो सकती है। ये भी है कि IVF अगर किया जाता है तो उसको हम ऑलरेडी एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी मान के चलते हैं, इसमें एक से ज्यादा बच्चे होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, यानी कि ट्विन्स या ट्रिपलेट्स, और ये एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होती है। आमतौर पर भी ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी जो होती है, यानी कि 2 या 3 बच्चे एक साथ होते हैं, तो उनमें जटिलताएं आ सकती हैं, कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं, जैसे कि अर्ली प्रेगनेंसी लॉस हो सकता है, या फिर मतलब बच्चों का वजन अच्छा ना बढ़ पाए, या अगर एज ज्यादा है महिला की तो डायबिटिक होने की संभावनाएं रहती है, या फिर ब्लड प्रेशर हाई होने की संभावना रहती है, जिसको प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन कहते हैं। तो इन प्रेगनेंसीज को, IVF प्रेगनेंसीज को हम लोग काफी क्लोजली मॉनिटर करते हैं और बहुत अच्छे से उनका एंटीनेटल चेकअप वगैरह होना चाहिए। आप अपने विजिट्स को मिस नहीं कर सकते डॉक्टर के साथ में, जो आपकी विजिट्स होंगी, और पूरा ब्लड वर्क, पूरा हेमाटोलॉजिकल चेकअप, अल्ट्रासाउंड, और ये सब समय समय पे आपको जैसे जैसे बताया जाए करवाते रहना है, तो इसके सक्सेस रेट काफी अच्छे हो जाते हैं। Okay, लेकिन आप उसे जरा भी अगर नेग्लेक्ट करते हैं तो फिर कॉम्प्लिकेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है।
0: मतलब इसका जो पूरा प्रोसेस है उस पर हमें पूरा फोकस करना होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल, और आप मिस नहीं करेंगे अपने डॉक्टर के विजिट को, जो भी बताया जाए आपको उसको फॉलो करेंगे, बिल्कुल बेहतर नतीजे आपको मिलेंगे।
0: ओके, तो मैम हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है। इनका कहना है कि जो फर्स्ट बेबी है ऑपरेशन से हुआ है, लेकिन ये दूसरे बेबी की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इनका कहना है कि क्या हम यानी कि IVF करवा सकते हैं?
1: बिल्कुल करवा सकते हैं, बिल्कुल। प्रीवियस सिजेरियन का IVF की टेक्निक से कोई इनहिबिशन नहीं है, आप आराम से IVF करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
0: ओके, सो हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मैम। क्या पहली बार में IVF सफलता होने पर दोबारा जो प्रक्रिया है वो फिर से शुरू तो नहीं करना पड़ेगा हमें?
1: नहीं, अगर आपका IVF सक्सेसफुल हो गया है और आप प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश हो गई है और कार्डियक एक्टिविटी जो पहला साइन होता है एक हेल्दी प्रेगनेंसी का, अगर वो आ गई है भ्रूण में, वो एम्ब्रियो में आ गई है, तो आपको दोबारा क्यों कराना है? वही प्रेगनेंसी आप आगे अच्छी तरह से चलती रहेगी।
0: ओके मैम, इसमें खाने पीने का ध्यान हमें कितना रखना होता है, किस तरीके से हमें अपने दिनचर्या को जो शुरुआत करनी होनी होती है?
1: देखिए, एक आम प्रेग्नेंट महिला के जैसे ही आपको अपने खाने पीने का ध्यान रखना है। थोड़ा प्रोटीन इंटेक का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि प्रोटीन शरीर में अच्छी तरह से रहे। दूसरे, अगर आपको ब्लड शुगर या ब्लड प्रेशर वाली संभावनाएं हैं या थायराइड की समस्या है, तो आपको उन सभी चीजों के मेडिकेशंस के ऊपर पूरा ध्यान रखना होगा. बीपी अगर हाई है नमक थोड़ा कम रखना होगा, और जो भी डॉक्टर आपको आपकी परिस्थितियों को देख करके आपको सलाह देते हैं उनको आप मान के चलिए, बिल्कुल ठीक रहेंगे.
0: मैम इसमें पीओसी जो पीसीओडी होता है
1: जी,
0: जिन महिलाओं में यानी कि एएचएम वाली महिलाओं के लिए यानी कि आईवीएफ कितना सफल हो सकता है?
1: देखिए लो एएमएच जो हार्मोन होता है अब उसके लिए दूसरी टेक्निक भी आने लगी है जिसमें कि हम लोग ओवीज को रिजुविनेट करते हैं और इस प्रक्रिया को कहते हैं पीआरपी यानी कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा. इसे हम लोग क्या करते हैं उस महिला के ही ब्लड से उसकी प्लेटलेट को सेपरेट करके और ओवरीज में इंजेक्ट करते हैं जिससे कि एएमएच बढ़ जाने की संभावना होती है. ओवेरियन रिजुविनेशन टेक्निक है ये अभी थोड़ा कुछ समय पहले से ही शुरू हुई है और इसके रिजल्ट काफी माफिक देखे जा रहे हैं, बहुत अच्छे देखे जा रहे हैं. तो इसको लो एएमएच वाली महिलाओं में इसको सफलतापूर्वक किया गया है और उनके खुद के ही एग्स तैयार किए गए हैं.
0: ओके सो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या कैंसर के मरीज भविष्य के लिए अपनी प्रजनन क्षमता सुरक्षित रख सकते हैं?
1: हाँ बिल्कुल रख सकते हैं. ऐसे में हम लोग एग्स को फ्रीज कर देते हैं और कई वर्षों तक वो फ्रोजन रह सकते हैं एग्स, और उसके बाद में उसको जब उनका कैंसर का ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है, कीमोथेरेपी वगैरह पूरी हो जाती है, तो वापस उन एग्स को जो है आप आईवीएफ टेक्निक से अपने बच्चे को हासिल कर सकते हैं एग्स.
0: और मैम इससे जो मिथकें जुड़ी हुई है, जो बहुत से धारणाएं होती है कि ये नहीं कराना चाहिए, और अभी एक मेरे पास क्वेश्चन भी आ गया है कि इनका ये क्वेश्चन है कि चलिए हम ये करवा लेते हैं और कभी कुछ इन फ्यूचर कोई दिक्कत होता है, तो मतलब इससे ये जो मिथक है वो कितना सही और कितना गलत है?
1: किस तरह का मिथक?
0: इन्होंने बोला है कि हम आईवीएफ लेते हैं
1: जी जी,
0: अगर इसमें कोई दिक्कतें आती है परेशानी आती है तो उसके लिए क्या करना है?
1: देखिए सबसे पहली चीज तो अपने डॉक्टर से डिस्कस करना है. जो भी परेशानी आ रही है या जो भी आपके मन में भ्रम है या बात आप कहना चाहते हैं खुल के अपने डॉक्टर के सामने रखें, और डॉक्टर्स को भी थोड़ा सा ये लाजमी है कि वो एक काउंसलर का भी फर्ज निभाएं, काउंसलिंग करें. जो भ्रम है अविश्वास है जो उनके दिमाग में जो मिथक जुड़े हुए हैं उनको सावधानी से उनको क्लियर करें और उनको भरोसा दिलाएं कि ऐसा कुछ है नहीं,
0: मतलब ये सुरक्षित होता है.
1: बिल्कुल सुरक्षित है, हर तरह से सुरक्षित है, कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं.
0: सो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, समाज में बांझपन को लेकर जो मानसिक दबाव होता है उससे कैसे निपट सकते हैं ये?
1: इसमें ही मैं कह रही हूँ काउंसलिंग की बहुत जरूरत है. और जैसे कि हमारा समाज है कि शादी का साल होते होते तक लोग एक्सपेक्ट करने लगते हैं
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम
1: कि बहू को बच्चा होगा.
0: हाँ.
1: तो सबसे पहले तो पति पत्नी का आपसी संवाद इसमें जरूरी है. फिर स्पेशलिस्ट से सलाह कि है दिक्कत कहाँ पर है, गलती कहाँ पर है, क्या मुश्किल आ रही है. दूसरी परिवार जनों का साथ, परिवार जन अधिकतर जो है मिलने जुलने वाले या रिश्तेदार बार बार थोड़ा सा टोका टाकी करने लगते हैं कि कब हो रही है, गुड न्यूज कब आ रही है, खुशखबरी कब आ रही है. फिर आपने देखा होगा कि कई सारी मूवीज भी बनी है पारिवारिक दबाव के चलते
0: बिल्कुल बिल्कुल मैम
1: लोग प्रेग्नेंट नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि वो तनाव में आ जाते हैं.
0: तो मैम इसके लिए जो मतलब माइंड को रिलैक्स करना बहुत जरूरी है मुझे लगता है.
1: बिल्कुल मुझे लगता है कि अच्छी नींद, अच्छी एक्सरसाइज, अच्छी डाइट और हो सके तो थोड़ा मेडिटेशन.
0: आजकल ये वाला तो हर कोई इंसान भूल जाता है मैम, अपने लिए टाइम ही नहीं निकाल पाता है कोई.
1: देखिए अपने लिए सबको टाइम थोड़ा बहुत तो निकालना ही पड़ेगा. अगर आप मानसिक दबाव मानसिक तनाव से आपकी आपकी सेहत हर तरह से खराब होती है, ना सिर्फ फर्टिलिटी बल्कि और भी चीजें हैं जो मानसिक तनाव से आपको दिक्कत कर सकती है. तो अच्छी डाइट लें, एक्सरसाइज जरूर करें. मेरा तो सभी महिलाओं से ये है निवेदन कि भाई थोड़ा समय अपने शरीर के स्वास्थ्य को दें, मानसिक स्वास्थ्य को दें, और उसी समय आपके पास जो 24 घंटे हैं उसको कैसे आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कितना आपको काम करना है, कैसे आपको ब्रेक लेना है, इसका निर्धारण आप स्वयं ही कर सकते हैं, बाहरी कोई व्यक्ति नहीं कर सकता. अगर आप जॉब पे जाती हैं, अगर आप बस में ट्रेन में सफर करती हैं, तो वो थोड़ा सा मेडिटेशन म्यूजिक लगा के उस समय आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। तो भागा दौड़ी की जिंदगी है सभी की, ये समय थोड़ा बहुत अपने लिए जरूर निकालें, अपने मानसिक स्वास्थ्य को तनाव में बिल्कुल ना आने दें, और अगर वाकई में प्रेशर बहुत ज्यादा फील कर रहे हैं तो साइकियाट्रिस्ट से मिलने में और काउंसलर से मिलने में बिल्कुल हिचकिचाए मत, देर मत करें।
0: ओके मैम, सो मैम हमारा अगला क्वेश्चन है, यानी कि IVF में FET में ये क्या होता है?
1: ये FET जो होता है, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है। तो अभी कुछ सालों पहले तक फ्रेश साइकिल ट्रांसफर किया जाता था, यानी कि जिस साइकिल में अंडे लिए जाते थे उसी साइकिल में उसको 2-3 दिन बाद उसको इम्प्लांट कर दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था। लेकिन अब ये देखा गया कुछ समय सालों के रिसर्च के बाद ये देखा गया कि अगर हम उन एम्ब्रियोस को फ्रीज कर देते हैं और अगले 1-2 साइकिल बाद उसको अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उसके रिजल्ट बेहतर आते हैं, यानी कि सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होने के चांसेस उसमें बेहतर हो जाते हैं। तो अब आजकल इसी टेक्निक का उपयोग किया जाता है, फ्रेश साइकिल ट्रांसफर नहीं करते, फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर किया जाता है, सेम साइकिल ट्रांसफर नहीं किया जाता।
0: मैम एक लास्ट क्वेश्चन, जो कि जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को एक क्या संदेश देना चाहेंगे आप?
1: देखिए, तकनीक से घबराइए नहीं, तकनीक आपकी सहायता के लिए है, और अगर आप किसी भी सूरत से अगर आप जूझ रहे हैं, इनफर्टिलिटी से आप जूझ रहे हैं, तो प्लीज IVF के लिए जाइए और एक संतान हासिल करिए। इसमें कोई बुराई नहीं है, तकनीक का आप अगर आपकी प्रॉब्लम का समाधान कर सकती है अगर तकनीक, तो उसका फायदा उठाएं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो जरूर उसका आप सहारा लीजिए, और इससे एक संतान पाने से कम आपका जो सोशल प्रेशर्स होते हैं या जो दबाव होते हैं उनसे सबसे आप मुक्त हो जाएंगे और आपको एक बच्चा हासिल हो जाएगा।
0: बिल्कुल,
1: तो जरूर जाए, तकनीक का सहारा लीजिए, और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, इसमें बिल्कुल आप समझिए कि एकदम रिवोल्यूशन आने वाली है, और अब बहुत बहुत सक्सेस रेट्स बढ़ जाएंगे IVF के। तो प्लीज जाइए, अपने डॉक्टर से सलाह करिए, और अगर वो जरा भी हिंट देते हैं, जरा भी आपको इंडिकेशन देते हैं कि आपको IVF के लिए जाना चाहिए, प्लीज गो फॉर इट।
0: तो मैम अगर ये आप तक कनेक्ट होना चाहे तो कैसे हो पाएंगे आप तक ये?
1: मेरा हॉस्पिटल, मैंने आप बताया लोकेशन, भव्य हॉस्पिटल,
0: हाँ जी हाँ जी,
1: दयानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने है, सिविल लाइन्स में, मुरादाबाद में। तो अगर आप कोई सलाह चाहते हैं, कोई काउंसलिंग चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप मेरे से बात कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं।
0: थैंक यू सो मच मैम।
1: आपकी सभी श्रोताओं को कभी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: थैंक यू सो मच मैम। तो श्रोताओं, मिलते हैं बस एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद आप सभी के साथ।

0: क्या सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
1: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
2: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
3: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
2: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
3: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
2: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
1: मुरादाबाद
2: से संपर्क कीजिए।
3: नियम और शर्तें लागू।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।

हेलो, गुड वाली मॉर्निंग है। मॉर्निंग मसाला शो में आप आरजू रीना के साथ कनेक्ट है श्रोता हो। और समय की बात करूं तो 11:30 हो चुके हैं। और देखिए, जो भी IVF कराना चाहता है, बिल्कुल आप भव्य हॉस्पिटल जाइए, कराइए। और जिनको जो प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर सकती है, उनके लिए भी यहाँ पे उपचार है। और पूरी आपकी चेकअप कराई जाएगी, आपकी पूरी बॉडी का चेकअप किया जाएगा और उसके बाद आपका प्रोसेस है वो शुरू होएगा। लेकिन देखिए, हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो मिथक है, उनको दूर करिए। और मुझे लगता है कि घर सबकी बातें सुन सुनकर अपने आप को परेशान मत करिए, शांत रहिए और अपना इलाज कराइए। क्योंकि देखिए, अगर समस्याएं हैं तो उसका उपचार भी है। कहते हैं दुख के बाद सुख ज़रूर आता है। तो जो भी दिक्कत है, जो भी परेशानी है, आप बिल्कुल डॉक्टर से कांटेक्ट करिए, मिलिए उनसे, जानिए, चेकअप कराइए। क्या पता आपके घर में खुशियाँ ही आ जाए। और भगवान से यही प्रार्थना करते कि हर घर में खुशियाँ आए और यूं ही आगे बढ़ते रहे परिवार। खुश रहिए और अपने जीवन को अच्छे से एंजॉय करिए। तो जिनको भी डाउट है, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। और भी अगर कोई परेशानी आपको लगती है तो बिल्कुल भव्य हॉस्पिटल जाइए, मैम से मिलिए, बातें करिए, चेकअप कराइए, जो भी प्रोसेस है वो शुरू कराइए, देर मत कीजिए। बस इतना कहना चाहेंगे कि किसी भी चीज़ में हमें देरी नहीं करनी चाहिए और देरी के साथ साथ जल्दबाजी भी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि जल्दबाजी में कभी कभी ऐसा होता है कि हम गलत कदम, गलत स्टेप उठा लेते हैं। इसीलिए सोच समझकर दिमाग से जाइए, मिलिए, बातें करिए। क्योंकि बातें करने से ही सॉल्यूशन मिलता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए, फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे मैसेज आगे श्रोता। और ये कश्मीर से मिराज उद्दीन जी कनेक्ट होते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं, डफली वाले डफली बजा।

अगले मिसेस की बात करूं तो ये हमारे साथ रानी नांगल, रानी नांगल से रिहाना जी कनेक्ट होती हैं और ये गाना सुनना चाहती है, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आज का दिन है, बहुत खास है, यानी कि योगदेशनी एकादशी है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये गाना सुनना चाहती है, नजर में तू जिगर में तू, क्या बात है जी, बहुत ही शानदार गाना है। सो इस गाने को डेफिनेटली हम सुनवाएंगे। रवि सैनी जी लाइन पर मुरादाबाद से कनेक्ट हो गए हैं, गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग जी, आई होप कि आप अच्छे होंगे। और ये गाना सुनना चाहते हैं, तेरा नाम हमने लिया, क्या बात है जी, बहुत ही। चलिए जी, फिलहाल एक गाना सुनते हैं और मिराज उदयन जी के रिक्वेस्ट पर ये गाना है, उसके बाद लौट कर आते हैं श्रोताओं। फिलहाल आप सभी से यही कहना चाहेंगे कि मैसेज करते रहिए, नंबर है 9837896896 पर। चलिए फिलहाल गाना सुनना चाहते हैं, डफली वाले, लता मंगेशकर जी की आवाज़ में, मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में, बहुत ही खूबसूरत गाना है।

खर्द वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ। और समय की बात करूं तो 11:41 हो चुके श्रोताओं, और आइए बिना किसी देरी के आप सभी के मैसेज की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि मैसेज बहुत ज्यादा है और समय बहुत कम है। सो हमारे पास मैसेज आता है, रीना जी जय श्री राम, गौरव टेलर नबी नगर मुरादाबाद से कनेक्ट होते हैं। रीना जी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग जी, कार्यक्रम बहुत ही बिंदास पेश कर रही हो और जानकारियां भी बहुत ही अच्छी अमेजिंग लेकर आती हो, थैंक यू सो मच जी। और आप खुश रहे, यूं ही स्वस्थ रहे, और थैंक यू सो मच जी, आप भी खुश रहे, स्वस्थ रहे, और आपका परिवार यूं ही खुशहाल रहे। और ये बहुत ही शानदार ये गाना सुनना चाहते हैं, चांद तेरा फूल। सबनम तुझसे अच्छा कौन, क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपकी जो आपने गाना चॉइस किया है, बहुत अच्छा है। और ये कुछ लाइनें भी लिखते हैं, भगवान रिश्ते देते हैं उन्हें समझने, उन्हें समझे, समझने के लिए, जानने और निभाने के लिए, लेकिन इंसान उन्हें बर्बाद कर देता है उनको परखने में। ये तो बिल्कुल सही बात कही है सर, कि हम हर इंसान को परखने में समय ऐसे गुजार देते हैं ना, कि हमें समझ नहीं आता एक्चुअल में करना क्या है क्या नहीं। इसीलिए इंसान को समझिए, परखिए मत। अगर आप परखेंगे ना तो बहुत वर्षों लग जाएगा, वर्षों बीत जाएगा, लेकिन आप किसी को समझ नहीं पाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा जी। राम राम सीताराम, राम राम जी सीताराम, और लाजवाब प्रस्तुति, शानदार प्रोग्राम, थैंक यू सो मच जी। अजीत कशाना जी, माया देवी, ऋतिक और आदित्य कशाना जी कनेक्ट होते हैं लदावली मुरादाबाद से।

अगले मैसेज की बात करूं तो हेलो रीना मैम, गुड वाली मॉर्निंग है, मॉर्निंग मसाला शो में आप कैसे हो? आपकी आवाज बहुत अच्छी है और बोलने का अंदाज बहुत ही प्यारा है। थैंक यू सो मच जी। ललिता कश्यप जी कनेक्ट होती हैं और इनका कहना है कि आज मौसम भी बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल जी, सही कहा आपने, आज मौसम भी अच्छा है। मैम आज एकादशी है और एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चतुर्मास की अब शुरुआत हो जाएगी जी और 4 महीने के लिए भगवान जी यानी कि विश्राम करेंगे, लेकिन विश्राम के साथ साथ वो अपने भक्तों की पुकार भी सुनते हैं। और बहुत ही शानदार ये गाना सुनना चाहते हैं, डेफिनेटली आपका हम ये गाना जरूर सुनवाएंगे जी। फिलहाल अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं।

0: लेकिन ऐसे अगले मैसेज से बढ़ने से पहले हमारे पास कुछ हो, यानी कि अभी तो फिलहाल कमर्शियल एड ब्रेक का समय हो गया श्रोताओ, उसके बाद कनेक्ट होते हैं आप सभी के साथ और करेंगे ढेर सारी बातें। फिलहाल के लिए आप कहीं मत जाइए, आरजे रीना के साथ कनेक्ट रही एफ एम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे।
1: जा सिमरन, जा जी रहे अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है एफएम मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो एफएम मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

0: गुड वाली मॉर्निंग है मॉर्निंग मसाला शो में आरजे रीना के साथ आप कनेक्टेड श्रोता और समय हमारे पास 11:53 हो चुके हैं जी और आइए अगले मैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सो अगला मैसेज आता है हमारे पास राधे राधे जी जय श्री राम जय श्री राम जी और ये कुछ शायरी भी लिखते हैं। उदासी में चेहरे की शान चली जाती है टूटे हुए दिलों की पहचान चली जाती है हम तेरी जिंदगी से ऐसे चले जाएंगे जैसे किसी हादसे में जान चली जाती है। बड़ा ही दर्द भरा शायरी है सर आपका। ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं अजय कुमार जी गांव सिहाली खदर मुरादाबाद से और ये गाना सुनना चाहते हैं दिल मांग रहा है मोहलत तेरे साथ धड़कने की। क्या तुमको हमसे प्यार बहुत ही टूटा हुआ दिल लग रहा है मेरे को तो भैया। देखिए दिल मत तोड़िए दिल जोड़िए बस। अगले मैसेज की बात करूँ तो ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं रिस्पेक्टेड होस्ट आरजे जनकपुरी सहारनपुर से जॉन रोजिस पलवलील जी और ये गाना सुनना चाहती है तेरा फूल जैसा रंग और मूवी का नाम है कभी कभी किशोर कुमार जी की आवाज में लता मंगेशकर जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत गाना। अगले मैसेज की बात करूँ तो बबली अंजान जी गीता कश्यप जी और लक्ष्मी कश्यप संतोष कश्यप जी कनेक्ट होती है गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग जी गाना सुनना चाहती है
1: तुमको हमसे प्यार है तुमको हमसे
0: मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम बहुत होनी चाहिए। देखिए उम्र बहुत होनी चाहिए है ना लेकिन जिंदगी शानदार होनी चाहिए। अगले मैसेज की बात करूँ तो मुरादाबाद से रणवीर जेठालाल जी कनेक्ट होते हैं और गुड मॉर्निंग पहुंचाते हैं और ये गाना सुनना चाहते हैं फिल्म कटी पतंग से प्यार दीवाना होता है मस्ताना होता है। चलिए फिलहाल एक और गाना सुनते हैं उसके बाद लौट कर आएंगे। ये ललिता कश्यप जी की रिक्वेस्ट पर गाना है यानी कि श्याम बाबा का ये भजन सुनना चाहती है इतिहास बना दूंगा। क्या बात है जी बहुत ही खूबसूरत गाना कन्हैया मित्तल जी की आवाज में खाटू श्याम जी का बहुत ही शानदार गाना क्योंकि आज देव दिवशनी एकादशी है इस मौके पर ये गाना

बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है जी। आफ्टरनून इसलिए, देखिए 12:01 हो चुके हैं, लेकिन अभी मैसेज है उनको भी शामिल करना बहुत जरूरी है। श्रोताओं, मॉर्निंग मसाला शो में आप कनेक्ट है आर्जरीना के साथ, और समय की बात करूं तो 12:02 हो चुके हैं, और आइए जिनके मैसेज रह गए वो शामिल करते हैं। और लेते हैं यहाँ से जाने की इजाजत, आपको हम फिर मिलने वाले हैं 3:00 यानी कि फरमाइश शो में, आप सभी के फरमाइशी वाले गाना प्ले करने के लिए। चलिए देखते हैं किनका मैसेज रह गया अभी भैया। हेलो रीना मैम, गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ की, जय भोलेनाथ की। और ये हमारे साथ कनेक्ट होते हैं उमेश कुमार प्रजापति जी, लोधीपुर से कनेक्ट होते हैं। मैम जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती है, थैंक यू सो मच जी। और ये गाना सुनना चाहते हैं, बोल तेरे मीठे मीठे, और इनके दोस्त है सोनू जी, मंसूरी कॉलोनी मुरादाबाद से इरशाद हुसैन अंसारी जी, शेगत शारी के लिए। गुड मॉर्निंग रीना जी, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं जी, आप बताइए कैसे हैं? आपका शो सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी बातचीत डॉक्टर मैम से हुई और बहुत सी अच्छी जानकारियां मिली उनसे, सुनने को अच्छा लगा। थैंक यू सो मच जी कि आपको अच्छा लगा। और आप सभी से यही कहना चाहूँगी, जिनको भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर के पास जाइए और IVF कराइए, खुशहाल परिवार पाइए और अपना जीवन खुशहाल बनाइए। चलिए जी, मिलते हैं आपको 3:00, ढेर सारी बातें करेंगे। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और यूं ही अपनी जिंदगी में खुश रहिए। देवशनी एकादशी को आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भगवान की कृपा आप सभी के ऊपर हमेशा बरकरार रहे, हमेशा बना रहे। चलिए इसी के साथ एक और जो आप सभी के जो गाने हैं उसको मैं जरूर डेफिनेटली शामिल करूंगी। श्रोताओं, बिंदास रहिए, अपना गाना सुनते रहिए और कनेक्ट रहिए। और देखिए, जो भी एपिसोड हम प्ले करते हैं, कृपया करके फीडबैक जरूर दीजिए, क्योंकि आपके फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
0: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
1: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
0: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
0: से संपर्क कीजिए।
1: नियम और शर्तें लागू।

0: हमको मैरी नहीं मांगता, हमको लेली नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉनी का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली, तू ही तो मेरी जान है, जान है।

0: हमको मेरे नहीं मांगता, हमको लेले नहीं मांगता, हमको सैंड्रा फ्रॉम बैंड्रा नहीं मांगता,
1: तो कौन मांगता?
0: ए जूली जूली, जॉली का दिल तुम पे आया जूली, तेरे लिए चढ़ जाऊं सूली।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम सेहत से लाभ कई और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। आज का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूं। जब हम किसी बच्चे के उज्जवल भविष्य की बात करते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है? अच्छी पढ़ाई, अच्छा स्कूल, अच्छे शिक्षक, अच्छा माहौल, है ना?
1: बिल्कुल। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए तो उसका भविष्य अपने आप संवर जाता है।
0: बात तो सही है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस अच्छे स्कूल तक पहुंचने से पहले भी बच्चे की एक यात्रा शुरू हो चुकी होती है और उसी यात्रा की शुरुआत तय करती है आगे उसकी नींव कितनी मजबूत होगी।
1: अरे मतलब बच्चों का भविष्य स्कूल से भी पहले शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जरा और पीछे चलिए।
1: अच्छा तो क्या जन्म के बाद?
0: नहीं, उससे भी पहले।
1: उससे भी पहले? अब तो आप हमारी उत्सुकता बढ़ा रही हैं। आखिर कब से?
0: विशेषज्ञों का कहना है कि एक बच्चे के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण शुरुआत उसकी माँ से होती है। जब एक महिला स्वस्थ होती है, उसे पर्याप्त और संतुलित पोषण मिलता है, तभी उसके बच्चों को भी जीवन की मजबूत शुरुआत मिलती है।
1: यानी बच्चे का भविष्य केवल उसके जन्म के बाद नहीं बल्कि माँ के स्वस्थ और पोषण से ही तय होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल, जब हम मातृ पोषण की बात करते हैं तो हम केवल एक महिला की सेहत की बात नहीं कर रहे होते, हम उस शक्ति की बात कर रहे होते हैं जो उसे स्वस्थ गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ बच्चे की ओर ले जाती है। हम उस मजबूत नींव की बात कर रहे होते हैं जिस पर पूरे परिवार और आने वाली पीढ़ी का भविष्य खड़ा होता है।
1: और शायद यही वजह है कि आजकल हर जगह मातृ पोषण पर इतना जोर दिया जा रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। हाल ही में समापन हुआ पोषण पखवाड़ा ने भी हमें यही संदेश दिया है कि जीवन के शुरुआती वर्षों में मिलने वाला सही पोषण केवल शरीर से नहीं बल्कि बच्चे के मस्तिष्क के विकास और उसके पूरे भविष्य को प्रभावित करता है।
1: यानी अगर शुरुआत सही हो तो आगे की राह भी मजबूत बनती है।
0: बिल्कुल। और इन्हीं महत्वपूर्ण बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है हमारे अपने सेहतिया सिंह और हमारी साथी टीकन देवी जी। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद आरजे रीना जी। आप सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी को मेरा स्नेह भरा प्रणाम।
0: सेहतिया जी, अभी हमने बात की कि बच्चे के भविष्य की शुरुआत उसकी माँ से होती है, लेकिन कई लोग सोचते हैं कि बस पेट भर खाना खा लिया वही काफी है। क्या सचमुच माँ का पोषण इतना महत्वपूर्ण है?
2: बिल्कुल महत्वपूर्ण है आर्चरीना, और यह केवल गर्भावस्था की बात नहीं है। जब किसी महिला को रोज संतुलित और पौष्टिक भोजन मिलता है तो उसका शरीर मजबूत रहता है, उसमें काम करने की ऊर्जा रहती है और वह बीमार भी कम पड़ती है और अपने परिवार की बेहतर देखभाल कर पाती है। लेकिन जब वही महिला माँ बनने वाली होती है तब उसका शरीर सिर्फ उसका अपना नहीं रहता, गर्भ में पल रहे बच्चे को मिलने वाला हर पोषण उसी के शरीर से पहुँचता है। इसलिए माँ जितनी स्वस्थ होगी बच्चे की शुरुआत भी उतनी ही बेहतर होगी।
1: यानी माँ जो खाती पीती है उसका सीधा असर बच्चे तक पहुँचता है।
2: बिल्कुल, गर्भ में पल रहे बच्चे का पूरा विकास, उसके शरीर, उसके अंग, यहाँ तक कि उसका मस्तिष्क का विकास भी माँ के स्वस्थ और पोषण पर ही निर्भर करता है।
1: यानी माँ की थाली जितनी पौष्टिक होगी बच्चे का भविष्य भी उतना ही मजबूत होगा।
2: बिल्कुल सही कहा टीकन जी।
0: सेहतिया जी, आपने पोषण तत्वों की बात की, आजकल एक और शब्द बहुत सुनने को मिलता है, अनीमिया, यानी खून की कमी। आखिर यह समस्या कितनी गंभीर है?
2: आर्चरीना, ये समस्या बहुत गंभीर है। सबसे बड़ी चिंता है इस बात की है कि यह महिलाओं को वर्षों तक पता ही नहीं चलता है कि उनमें खून की कमी

0: है, वे कमजोरी, थकान या चक्कर आने को सामान्य बात समझकर नजरअंदाज कर देती हैं। लेकिन जब शरीर में पर्याप्त खून नहीं होता तो शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन सही मात्रा में नहीं पहुंच पाता और इसका असर पूरे शरीर पर पड़ता है,
1: इसीलिए उन्हें हमेशा थकान रहती है।
0: बिल्कुल आरजे, जल्दी थक जाना, कमजोरी महसूस होना, चक्कर आना, सांस फूलना, काम करने की क्षमता कम होना, ये सब खून की कमी के सामान्य लक्षण हैं। लेकिन अगर यही समस्या गर्भवती महिलाओं में हो तो जोखिम और भी बढ़ जाता है।
1: किस तरह का जोखिम?
0: बिल्कुल आर्जेरीना, समय से पहले प्रसव हो सकता है, कम वजन वाले बच्चों का जन्म हो सकता है और प्रसव के समय अगर ज्यादा रक्त स्राव हो जाए तो पहले से एनीमिक महिला के लिए स्थिति जानलेवा भी हो सकती है।
1: अरे, हम तो हमेशा यही समझते थे कि खून की कमी का मतलब बस थोड़ा कमजोर महसूस करना। यही तो सबसे बड़ी गलतफहमी है। अनीमिया सिर्फ कमजोरी नहीं बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरनाक बन सकता है। अगर माँ अनीमिक है तो बच्चे में भी आयरन की कमी, कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक विकास में रुकावट जैसी समस्याएं हो सकती हैं।
2: यानी इसकी कीमत सिर्फ माँ नहीं बच्चा भी चुकाता है।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज एनीमिया मुक्त भारत अभियान के माध्यम से किशोरियों, महिलाओं और गर्भवती माताओं तक आयरन की गोलियां, नियमित जांच और पोषण संबंधित जानकारियां पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है।
2: लेकिन सेहतिया जी, अक्सर लोग सोचते हैं कि गर्भ ठहरने के बाद ही अच्छा खाना शुरू करना चाहिए, क्या तैयारी उससे पहले भी जरूरी है?
0: बिल्कुल, स्वस्थ गर्भावस्था की तैयारी तो बहुत पहले से शुरू हो जानी चाहिए। अगर एक किशोरी स्वस्थ है, उसका भोजन संतुलित है, उसे आयरन की कमी नहीं है तो भविष्य में गर्भावस्था में अधिक सुरक्षित रहती है।
1: यानी एक स्वस्थ माँ बनने की शुरुआत एक स्वस्थ बेटी से होती है।
0: बिल्कुल, आपने सही कहा।
2: हाल ही में पोषण पखवाड़ा का मुख्य विषय बच्चों के मस्तिष्क के विकास पर था। क्या पोषण का दिमाग से भी इतना गहरा संबंध है?
0: बिल्कुल, बच्चे के मस्तिष्क का विकास गर्भावस्था के दौरान ही शुरू हो जाता है। उस समय आयरन, फॉलिक एसिड, आयोडीन और DH जैसे पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: और इसी से जुड़ा एक शब्द हम अक्सर सुनते हैं, पहले हजार दिन। आखिर इसका मतलब क्या है?
1: पहले हजार दिन यानी गर्भधारण से लेकर बच्चे के 2 साल का होने तक का समय। विशेषज्ञ इसे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दौरा मानते हैं। इस दौरान बच्चे के मस्तिष्क, शरीर और रोग प्रतिरोधक क्षमता का सबसे तेज विकास होता है। अगर इस समय पूरे समय सही पोषण और सही देखभाल मिले, बच्चे के स्वस्थ और सक्षम नागरिक बनने की संभावनाएं कई गुना बढ़ जाती है।
0: टीकन जी, अब हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि बच्चे के जन्म के बाद सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज क्या होती है?
1: बच्चे के जन्म से पहले घंटे के भीतर स्तनपान शुरू करना। बहुत से लोग पहले दूध को फेंक देते हैं, जबकि यही सबसे बड़ी गलती है। माँ का पहला गाढ़ा पीला दूध जिसे कैलोस्टम कहा जाता है, बच्चे के लिए पहले प्राकृतिक सुरक्षा कवच होता है। ये उसे कई संक्रमण से बचाने में मदद करता है। इसके बाद पहले 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही देना चाहिए। इस दौरान पानी, शहद, गुट्टी या कोई दूसरा भोजन देने की जरूरत नहीं होती।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए?
0: बिल्कुल आरजे, तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू करना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जियाँ, फल, अंडे और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चे के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
2: और जब बच्चा 6 महीने का हो जाए?
0: तब माँ के दूध के साथ साथ पूरक आहार शुरू कर देना चाहिए। घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन जैसे दाल, खिचड़ी, हरी सब्जी, मौसमी फल, अंडा, जहाँ परिवार खाता हो, दही और अन्य स्थानीय पौष्टिक खाद्य पदार्थ बच्चों के विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शुरुआत ही थोड़ी थोड़ी मात्रा में करें, धीरे धीरे बच्चे की उम्र के अनुसार भोजन की मात्रा और विविधता को बढ़ाया जाए।
2: यानी हमें महंगे या बाजार के पैकेट वाले खाने की जरूरत नहीं, अगर घर में उपलब्ध पौष्टिक चीजों का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो बच्चे को अच्छा पोषण मिलता है।
1: बिल्कुल, कई बार लोगों को लगता है कि अच्छा पोषण मतलब महंगा खाना, जबकि सच ये है कि हमारे घरों और आसपास मिलने वाली दालें, हरी पत्तेदार सब्जियां, मौसमी फल, चना, मूंगफली, दूध, दही और अंडी जैसे खाद्य पदार्थ भी बहुत पौष्टिक होते हैं। जरूरी बात यह है कि भोजन संतुलित हो और समय पर दिया जाए।
2: सेहतिया जी, आज की पूरी चर्चा से एक बात साफ समझ में आती है कि बच्चे की अच्छी शुरुआत तभी संभव है जब माँ खुद स्वस्थ हो और पोषित हो।
0: बिल्कुल, अक्सर हम बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल पर ध्यान देते हैं, लेकिन यह याद रखना हमें चाहिए कि स्वस्थ बच्चे की शुरुआत एक स्वस्थ माँ से होती है। इसलिए हर लड़की, हर किशोरी और हर महिला के पोषण का ध्यान रखना पूरे परिवार की जिम्मेदारी है, केवल उसकी अपनी नहीं।
2: और शायद इसी वजह से कहा जाता है, अगर हम एक माँ को स्वस्थ बनाते हैं तो हम केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी मजबूत बना रहे होते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। परिवार में अक्सर महिलाएं सबसे आखिर में खाना खाती हैं या अपनी जरूरतों को सबसे अंत में रखती हैं। लेकिन अब समय है हम ये सोच बदलें, अगर माँ स्वस्थ रहेगी तभी वह अपने बच्चे, परिवार और समाज की बेहतर देखभाल कर पाएगी।
2: और इसमें परिवार की बाकी सदस्यों की भी बराबरी जिम्मेदारी है। पति, सास, ससुर और घर के दूसरे लोग अगर गर्भवती महिला को समय पर भोजन, आराम और स्वास्थ्य सेवाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करें, तो इसका सीधा फायदा माँ और बच्चे दोनों को मिलता है।
0: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान नियमित जांच, डॉक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह का पालन करना, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां समय पर लेना, संतुलित भोजन करना और पर्याप्त आराम करना, ये सभी बातें मिलकर एक स्वस्थ गर्भावस्था सुनिश्चित करती है।
2: यानी पोषण केवल खाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सही जानकारी, समय पर जांच और परिवार के सहयोग से भी जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने आरजे रीना। जब सही जानकारी और सही व्यवहार के साथ आते हैं तभी अच्छे परिणाम देखने को मिलते हैं।
1: श्रोताओं, आज की चर्चा से हमने कई महत्वपूर्ण बातें सीखी। हमने जाना कि बच्चे के जीवन की सबसे मजबूत नींव उसकी माँ के स्वास्थ्य और पोषण से शुरू होती है। गर्भावस्था से पहले किशोरियों का अच्छा पोषण, गर्भावस्था के दौरान संतुलित आहार, एनीमिया से बचाव, नियमित स्वास्थ्य जांच और आयरन, फॉलिक एसिड का सेवन, ये सभी स्वस्थ माँ और स्वस्थ बच्चे के लिए बहुत जरूरी है।
2: हमने ये भी समझा कि बच्चे के पहले 1000 दिन उसके पूरे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। जन्म के पहले घंटे में स्तनपान शुरू कराना, पहले 6 महीने तक केवल माँ का दूध देना और उसके बाद समय पर पौष्टिक पूरक आहार शुरू करना बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बेहद आवश्यक है।
1: और मैं सभी बहनों और परिवार से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सेहत को कभी नजरअंदाज ना करें, समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाएं, अपनी नियमित जांच कराएं, आयरन, फॉलिक एसिड की गोलियां स्वास्थ्य कार्यकर्ता की सलाह के अनुसार लें और घर में उपलब्ध पौष्टिक भोजन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं।
0: अगर आपके मन में पोषण, गर्भावस्था या बच्चे की देखभाल से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो अपने नजदीकी आशा कार्यकर्ता, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता या स्वास्थ्य केंद्र से जरूर संपर्क करें। सही जानकारी ही सही निर्णय लेने की सबसे बड़ी ताकत है।
2: तो श्रोताओं, आज के कार्यक्रम से बस इतना ही याद रहे, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे की पहली शिक्षक, पहली पोषण दाता और पहला सुरक्षा कवच होती है। जब माँ स्वस्थ होगी तभी बच्चा स्वस्थ होगा, परिवार खुशहाल होगा और हमारा समाज भी मजबूत बनेगा।
1: इसी उम्मीद और इसी संदेश के साथ अब हमें दीजिए अनुमति, अगले कार्यक्रम में फिर मिलेंगे एक नए विषय, नई जानकारी और नए संदेश के साथ।
0: धन्यवाद आरजे। सभी श्रोताओं से अनुरोध है कि अपने परिवार की महिलाओं के स्वास्थ्य और पोषण का विशेष ध्यान रखें।
1: धन्यवाद। स्वस्थ रहें, जागरूक रहें और अपने आसपास के लोगों तक भी ये जानकारी जरूर पहुंचाएं। इसी के साथ आज का कार्यक्रम हमारा यहीं पर समाप्त होता है और जाने से पहले लेंगे हम अपनी सेहत की शपथ। हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे,
2: अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है।
0: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे।
1: साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके।
2: नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे।
0: संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहें।
1: महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे।
2: जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा।
0: सेहत सही तो लाभ सही।
2: तो श्रोताओं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। बने रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी समस्या की जो हमारे आसपास बहुत आम है, लेकिन कई बार समय रहते पहचान नहीं हो पाती। गर्भ अवस्था के दौरान खून की कमी यानी अनीमिया। कई बार लोग सोचते हैं कि गर्भवती महिलाओं को कमजोरी, थकान या अचानक चक्कर आना तो सामान्य बात है, लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होता है? क्या इसके पीछे खून की कमी भी हो सकती है? अगर हाँ, तो इसे कैसे पहचाना जाए? अब जांच करानी चाहिए? कब जांच करानी चाहिए? और माँ और बच्चे दोनों को स्वस्थ रखने के लिए क्या करना चाहिए? इसी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ हमारे अपने सेहतिया जी और टीकन देवी जी। सेहतिया जी, सबसे पहले तो यही बताइए कि आखिर ये है अनीमिया है क्या?
1: देखिए आर्जेरीना, सरल भाषा में कहते हैं, जब शरीर में खून की कमी हो जाती है या खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो उसे अनीमिया कहा जाता है।
0: और गर्भवती महिलाओं में यह इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है?
1: क्योंकि गर्भावस्था के दौरान माँ के शरीर को अपने साथ साथ कई बच्चे की कई जरूरतों को भी पूरा करना होता है। ऐसे में आयरन और फोलिक और एसिड की जरूरत काफी बढ़ जाती है। अगर यही जरूरत पूरी ना हो तो खून की कमी हो सकती है।
0: तो क्या खून की कमी का असर केवल गर्भवती महिलाओं पर पड़ता है?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं आर्जेरीना, इसका असर गर्भवती महिलाओं और बच्चों दोनों पर पड़ सकता है। अगर समय पर पहचान और इलाज ना हो तो समय से पहले प्रसव, कम वजन का बच्चा और मां के स्वास्थ्य से जुड़ी कई परेशानियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए जितनी जल्दी पहचानना होगा उतना ही बेहतर परिणाम मां और बच्चे दोनों के लिए होगा।
0: यानी गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य सीधे बच्चे के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है?
1: बिल्कुल आर्जेरीना, और इसी वजह से विशेषज्ञ अक्सर कहते हैं कि हम केवल बीमारी का इलाज नहीं करना चाहिए बल्कि कुपोषण और अनीमिया के दृष्टि चक्र भी तोड़ना है।
0: दृष्टि चक्र वह कैसे?
1: अगर कोई गर्भवती महिला खुद कुपोषित है और के शरीर में खून की कमी है तो उसका असर गर्भावस्था और बच्चे के स्वास्थ्य पर भी पड़ सकता है। बाद में बच्चे को पर्याप्त पोषण ना मिले तो वह कुपोषण और खून की कमी की समस्या से प्रभावित हो सकता है। इसी तरह कुपोषण और अनीमिया एक दुष्चक्र पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता आ रहा है, इसीलिए गर्भवती महिला का पोषण, जांच और समय पर इलाज बहुत ही जरूरी है।
0: दोस्तों, यह बात सचमुच सुनने वाली है, यानी आज माँ के स्वास्थ्य में किया गया निवेश आने वाले बच्चे के भविष्य को प्रभावित कर सकता है। सेहतिया जी, कई श्रोता सोच रहे होंगे कि खून की कमी के लक्षण क्या होते हैं?
1: देखिए आर्जेरीना, अगर आयरन की कमी है, अगर गर्भवती महिला बहुत कमजोर महसूस करती है अपने आप को, अगर उसे चक्कर आते हैं, सांस फूलता है, दिल की धड़कन तेज होने लगती है या रोजमर्रा का काम भी भारी लगने लगे तो केवल थकान ही नहीं हो सकती, यह आयरन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं।
0: लेकिन कई बार तो लोग इन बातों को गर्भ अवस्था का सामान्य हिस्सा मानकर नजरअंदाज कर देते हैं,
2: और यही सबसे बड़ी गलती है। हमारे गांव की सीमा की कहानी सुनिए। दूसरी बार गर्भवती थी, लगातार कमजोरी रहती थी। घर वाले कहते थे गर्भ में बच्चा है, थोड़ा बहुत तो होगा ही। लेकिन एक दिन आशा बहन उसे स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई। वहाँ खून की जांच हुई, पता चला कि उसे एनीमिया है। अगर जांच नहीं होती तो शायद ये बात पता ही नहीं चलती।
0: फिर क्या सीमा ने इलाज शुरू कराया?
2: हाँ, उसने स्वास्थ्य कर्मी की सलाह मानी, नियमित जांच कराई और अपने खान पान पर भी पूरा ध्यान दिया। कुछ समय बाद उसकी स्थिति में सुधार आने लगा। यही वजह है कि समय पर पहचान बहुत जरूरी है।
0: यानी केवल लक्षण देखकर अनुमान लगाने के बजाय जांच करवाना जरूरी है।
2: बिल्कुल, और इलाज तब संभव होगा जब पूरा परिवार गर्भवती महिला के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देगा।
0: अब सबसे जरूरी सवाल, गर्भवती महिलाओं को जांच कब कराना चाहिए?
1: गर्भ ठहरते ही स्वास्थ्य केंद्र में पंजीकरण कराना चाहिए, उसके बाद हर ANC संपर्क पर जांच करवानी चाहिए।
0: ANC यानी गर्भ अवस्था के दौरान होने वाली नियमित जांच।
1: बिल्कुल, और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC जांच करानी चाहिए।
0: और इन जांचों में क्या क्या देखा जाता है?
1: कई बातें देखी जाती हैं आरजे, लेकिन खून की जांच बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इससे पता चलता है कि गर्भवती महिला में खून की कमी है या नहीं।
0: अगर जांच में खून की कमी मिलती है तो क्या हर स्थिति एक जैसी होती है?
1: नहीं, खून की कमी अलग अलग स्तर से हो सकती है। अगर हीमोग्लोबिन 10 से 10.9 ग्राम के बीच हो तो इसे हल्का अनीमिया कहा जाता है। 7 से 9.9 ग्राम के बीच हो तो मध्यम अनीमिया, और अगर 7 ग्राम से कम हो तो गंभीर अनीमिया।
0: यानी हर स्थिति में एक जैसा इलाज नहीं होता।
1: बिल्कुल सही कहा आपने।
0: अब बात करते हैं इलाज और बचाव की। अक्सर IFA और MMS का नाम सुनने को मिलता है, आखिर ये है क्या?
1: अर्जरीना आई

0: एफ ए यानी आयरन और फॉलिक एसिड की गोली और MMS ऐसी पूरक गोलियां हैं जिनमें आयरन के साथ कई जरूरी विटामिन और खनिज भी होते हैं जो गर्भवती महिलाओं और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।
1: यानी MMS सिर्फ आयरन नहीं बल्कि कई जरूरी पोषक तत्वों का समूह है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्या केवल गोलियां ही पर्याप्त हैं?
0: नहीं, पूरक गोलियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनके साथ संतुलित और पौष्टिक भोजन भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल सही। केवल गोलियां खाने से बात पूरी नहीं होती, घर का भोजन और पूरक आहार दोनों महत्वपूर्ण हैं। किस तरह का भोजन करें? घर में जो उपलब्ध हो उसमें पौष्टिकता पर ध्यान दें। खासतौर पर प्रोटीन युक्त भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। दालें, चना, राजमा, दूध, दही, अंडा या स्थानीय रूप से उपलब्ध अन्य प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ शरीर को ताकत देने में मदद करते हैं।
2: यानी भोजन में केवल मात्रा नहीं गुणवत्ता भी जरूरी है।
1: बिल्कुल। गर्भवती महिला को पर्याप्त भोजन, पूरक आहार और प्रोटीन से भरपूर खाद्य पदार्थ मिलने चाहिए। परिवार को ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे सबसे आखिर में नहीं बल्कि प्राथमिकता के साथ भोजन मिले।
2: सेहतिया जी, अब एक ऐसा शब्द जिसका नाम लोग आजकल ज्यादा सुन रहे हैं, IVFCM, यह क्या है?
0: सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि IVFCM हर गर्भवती महिलाओं के लिए नहीं होता।
2: अच्छा।
0: हाँ, इसका उपयोग उन गर्भवती महिलाओं में किया जा सकता है जिनमें जांच के बाद मध्यम या गंभीर आयरन की कमी से होने वाले अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर को लगे कि तेजी से सुधार की जरूरत है।
2: यानी पहले जांच, फिर डॉक्टर की सलाह।
0: बिल्कुल सही आर्जेरीना। और भी सरल भाषा में कहें तो यह आयरन शरीर में चढ़ाया जाता है नसों के रास्ते ड्रिप लगाकर। इसका इस्तेमाल उन स्थितियों में किया जा सकता है जहां जांच में आयरन की कमी होने वाले मध्यम या गंभीर अनीमिया पाया गया हो और डॉक्टर की तेज तथा निगरानी में इलाज जरूरी समझें।
2: तो लोग अपने मन में इसकी मांग नहीं कर सकते?
0: नहीं, कौन सा इलाज उचित है इसका निर्णय स्वास्थ्य केंद्र की सलाह और डॉक्टर की जाँच पर आधारित होता है।
1: और एक बात याद रखिए, इलाज का सही रास्ता जांच, डॉक्टर की सलाह, नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जरूरत होने पर आगे की निगरानी।
2: दोस्तों, आज की चर्चा से एक बात साफ हो गई कि कमजोरी को सामान्य मानकर टालना सही नहीं है।
1: बिल्कुल। अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसकी जांच समय पर करवाएं, उसे पौष्टिक भोजन दीजिए, पूरक आहार और IFA MMS जैसी पूरक गोलियां नियमित लेने में मदद कीजिए और स्वास्थ्य केंद्र से जुड़े रहिए।
0: याद रखिए, जो गर्भवती महिलाएं गर्भ ठहरते ही पंजीकरण करवाती हैं, समय समय पर स्वास्थ्य केंद्र जाती हैं और पूरी गर्भावस्था में कम से कम 4 ANC की जांच कराती हैं, उनके स्वस्थ रहने और बच्चे के स्वस्थ पैदा होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है।
2: बहुत महत्वपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों, आज का पहला कदम क्या हो? अगर घर में गर्भवती महिला है तो उसे पूछिए क्या उसका पंजीकरण हुआ है, क्या उसकी खून की जांच हुई है, क्या वह नियमित ANC जांच करवा रही है, क्या वह IFA या MMS जैसी पूरक गोलियां ले रही है, क्या उसे पर्याप्त पौष्टिक भोजन और प्रोटीन युक्त आहार मिल रहा है। याद रखिए, समय पर पहचान, अच्छा पोषक, पूरक और आहार, सही इलाज से माँ और बच्चे दोनों का स्वास्थ्य बेहतर बनाया जा सकता है। इसी संदेश के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। फिर मिलेंगे सेहत सही लाभ कई के अगले अंक में, जहां हम बात करेंगे मध्यम और गंभीर अनीमिया तथा IV और FCM की भूमिका पर। नमस्कार, सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6।
3: मुरादाबाद 89.6, मेरा नाम आरजी आनंद है। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप सेहत सही तो लाभ कहीं, और आज इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे गर्भ अवस्था में एनीमिया की पहचान, जांच, पोषण और IFA MMS एवं समय पर जांच और इलाज। इसके विषय पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं वुमेन हॉस्पिटल में, डिस्ट्रिक्ट वुमेन हॉस्पिटल फ्रॉम मुरादाबाद सिविल लाइन्स, जहाँ पर हमारे साथ आज हमारे बीच में मौजूद हैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जी, गायनेकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस सेशन में मौजूद रहेंगी। उनसे हम आज ढेर सारी बातचीत करेंगे। मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ इस प्रोग्राम में। मैम, थोड़ा सा मैं चाहूंगा एक बार आप भी हमारे लिसनर्स को अपने बारे में प्लीज बताएं।
4: नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनम रस्तोगी जिला महिला अस्पताल में स्त्री व प्रसूति रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूँ।
3: ओके मैम, थैंक यू सो मच। तो मैम एक सेशन हम आपके साथ करने वाले हैं जिसमें सबसे पहला मेरा क्वेश्चन होगा कि गर्भ अवस्था में अनीमिया के समय पर पहचान के लिए कौन कौन सी जांचें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो हर बार विमेंस स्किप कर देती हैं, उनके विषय में थोड़ा सा आप बताइए।
4: गर्भावस्था में अनीमिया के लिए जो जाँचें हैं उसमें सबसे जरूरी जो जांच है वो हीमोग्लोबिन की जांच होती है।
3: ठीक है मैम।
4: जिसके लिए हम CBC कंप्लीट ब्लड काउंट कराते हैं।
3: ऑल राइट, ठीक है मैम, ओके। तो मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है जांच।
4: बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे ही पता चलता है कि आपके शरीर में खून सही मात्रा में है या नहीं।
3: ओके ठीक है। अच्छा मैम एक क्वेश्चन और रहेगा, किसी स्तर पर अगर हीमोग्लोबिन सामान्य माध्यम और गंभीर एनीमिया माना जाता है क्या इसको?
4: बिल्कुल, हीमोग्लोबिन कम से कम 11 ग्राम होना चाहिए गर्भवती महिला के केस में, कम से कम।
3: ठीक है।
4: अगर वो 11 से कम है और 9 से ज्यादा है तो वो माइल्ड एनीमिया में आता है, मतलब हल्का एनीमिया।
3: ठीक है।
4: फिर अगर वो 9 ग्राम से कम और 7 ग्राम के बीच में है तो वो मॉडरेट एनीमिया में आता है, मतलब कि एनीमिया थोड़ा ज्यादा है।
3: ज्यादा है।
4: और अगर 7 ग्राम से भी कम है तो वो सीवियर एनीमिया में आता है। इसका मतलब कि ये जो स्टेज है ये जानलेवा भी हो सकती है।
3: ओके।
4: इनका ट्रीटमेंट तुरंत, सब लेवल्स का ट्रीटमेंट अलग अलग तरीके से होता है, और अगर 7 ग्राम से कम है तो जान का भी बहुत खतरा रहता है और तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत भी पड़ सकती है।
3: ऑलराइट। अच्छा मैम क्या केवल आयरन की गोलियां ही पर्याप्त हैं या इसके अलावा जो विशेष खान पान है, जो भोजन है, क्या उसमें भी कोई विशेष बदलाव जरूरी है?
4: भोजन तो सबसे जरूरी है, दवाइयां तो सबको नहीं मिल पाती है, सब लोग अस्पताल तक नहीं पहुंच पाते हैं। उन लोगों के लिए तो खान पान बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल।
4: जिन भी चीजों में आयरन की मात्रा है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक हो गई, बीन्स हैं जितनी,
3: हाँ जी, ये दाले भी आई थिंक,
4: दालों में प्रोटीन्स होते हैं, वो बहुत जरूरी है।
3: बिल्कुल,
4: क्योंकि खून में आयरन भी होता है और ग्लोबुलिन भी होता है।
3: राइट।
4: हीम प्रोटीन होता है।
3: राइट।
4: प्रोटीन भी चाहिए हमको और आयरन भी चाहिए। उसको आयरन का एब्जॉर्प्शन बढ़ाने के लिए विटामिन सी जो नींबू संतरा इनमें होता है वो भी जरूरत है।
3: ओके, तो मतलब ये सारी चीजों को भी डाइट में मेंटेन करना है।
4: बिल्कुल करना
3: सारे
4: चाहिए। और जितने सेब हैं,
3: हाँ जी, जो फ्रूट्स
4: हैं,
3: मौसमी फल को ज्यादा शामिल करें।
4: बिल्कुल सही,
3: बहुत ही अच्छा लगा मैम, थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और रहेगा, यदि गर्भवती महिलाएं समय पर अनीमिया का उपचार नहीं करा पाती हैं अनफॉर्चुनेटली, तो क्या माँ और बच्चे पर इसका दुष्परिणाम क्या हो सकता है?
4: बिल्कुल, गर्भावस्था के दौरान बच्चे का जो ग्रोथ है,
3: हाँ जी,
4: वो कम हो सकता है और बच्चा गर्भावस्था के दौरान खत्म भी हो सकता है अगर बहुत ज्यादा खून की कमी है तो।
3: ओके
4: ठीक है। फिर डिलीवरी के दौरान क्या दिक्कतें आती हैं? प्रसव के दौरान महिला को ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो सकती है।
3: ओके।
4: और क्योंकि जितने भी प्रसव होते हैं, चाहे हम नॉर्मल डिलीवरी से कराएं, चाहे हम सिजेरियन ऑपरेशन से कराएं, सब में खून बहता है, सब में शरीर का खून हीमोग्लोबिन कम हो जाता है।
3: कम हो जाता।
4: तो जो महिला के अंदर सही मात्रा में खून होगा उसकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। नॉर्मल मतलब कि उसकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के चांसेस है। लेकिन जो महिला पहले से ही खून की कमी है, एक तो उसको खून भी ज्यादा होगा, दूसरा उसका खून डिलीवरी में निकल गया तो हार्ट पे और ज्यादा लोड पड़ेगा।
3: ओह माय गॉड।
4: इसलिए जान का खतरा बढ़ जाता है,
3: कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है,
4: बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और हमारे देश में तो जितनी भी मात्र की मोर्टैलिटी होती है, मरती हैं जितनी भी महिलाएं प्रसव में या प्रसव के दौरान या गर्भावस्था में, उसमें सबसे बड़ा कारण हमारे देश में आज भी कुपोषण है, खून की कमी।
3: एग्जैक्टली मैम, थैंक यू सो मच मैम। लास्ट क्वेश्चन रहेगा चाहते जाते, एंड थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर टाइम, आपने इतना इंपॉर्टेंट समय दिया हमारे फिर मुरादाबाद पे हमारे लिसनर्स के लिए। गर्भावस्था के दौरान अनीमिया से बचाव के लिए आपका एक सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज जो आप यहाँ से रेडियो से हमारे डिलीवर करना चाहें?
4: बिल्कुल, मैं सब लोगों से ये बात कहना चाहूंगी कि घर में अपने खान पान का ध्यान रखें। गर्भावस्था शुरू होने से पहले ही, अगर बच्चा प्लान भी कर रहे हैं, उससे पहले ही अपनी हेल्थ को ठीक रखना है। फिर आप जब डॉक्टर से मिले तो अपनी डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर आपको सारी जांचें करवाएंगे। अगर आप जल्दी चले जाते हैं, किसी डॉक्टर को जल्दी कंसल्ट करते हैं, तो हो सकता है कि सही स्टेज में आपके शरीर में क्या कमियां हैं वो पता लग सके और सही समय से उनका इलाज हो सके कि आपको एक हेल्दी बच्चा मिल पाए।
3: That's very nice ma'am. Thank you so much. Lovely talking to you ma'am. हमारे साथ आने के लिए guys, आप हिम्मत जाइए, आप सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6, रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
5: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़ पे और प्रोग्राम है आपका फेवरेट। जी हाँ दोस्तों, आप बेसब्री से इंतजार करते हैं इस प्रोग्राम का, एक बार फिर से ये लीजिए। अब आपके इंतजार की प्रतीक्षा खत्म करते हैं, मैं फिर से हाजिर हो गया हूँ आपका पसंदीदा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है सोच बदलो। जी हाँ श्रोताओं, इस प्रोग्राम में आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा साथ दे रहे हैं हमारे प्यारे से दोस्त अखिल जी। कैसे हालचाल है सर आपके?
6: बढ़िया आनंद जी, बढ़िया। आपके कैसे हालचाल है?
3: मेरे हालचाल बहुत ही अच्छे हैं अखिल जी, आप बताइएगा आपके हालचाल कैसे हैं और गर्मियों में कैसी जा रही है आपकी दिन और रात?
6: गर्मियों में दिन में पसीना,
3: हाँ, रात में मच्छरों ने जीना कर दिया दुश्वार मुश्किल नहीं, ये तो है यार। खैर श्रोताओं, मैं और अखिल जी आज आपके साथ इस प्रोग्राम में रहने वाले हैं। प्रोग्राम का नाम हमने आपको बताया सोच बदलो, और आज हम किस मुद्दे पर डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के जरिए जरूर आपको पता लगेगा, जैसे कि इसका नाम ही है सोच बदलो। अखिल भाई, आप पहली बार हमारे साथ इस प्रोग्राम में आए हैं और इसका नाम है सोच बदलो, तो कुछ मतलब नाम से कुछ लग रहा है आपको कि इसका क्या टाइटल ऐसा है, तो अंदर क्या होगा इस प्रोग्राम?
6: आपने बिल्कुल सही बात कही, मैं कहता हूँ हालात नहीं बदलते हैं जब तक इंसान भी अपनी सोच नहीं बदलता है।
3: तो है,
6: जब तक हम लोग अपनी सोच नहीं बदलेंगे या किसी चीज को लेके अपने अंदर बदलाव नहीं लाएंगे तो अपने हम हालात भी नहीं बदल सकते।
3: गॉट इट, 100% सही कहा आपने, लेकिन हालात बदलने के लिए अपनी सोच को बदलना बहुत जरूरी है। और आजकल हर इंसान परेशान है, कोई करियर को लेके, कोई रिश्तों को लेकर, और कोई खुद से हार चुका है, तो आज इन सब मुद्दों पर बात करना मुझे लगा बहुत जरूरी है। प्रोग्राम सोच बदलो है कि जब तक आपकी सोच नहीं बदलेगी, मुझे नहीं लगता तब तक चीजें बहुत अच्छे लेवल पे हम कर पाएंगे।
6: नजर बदलो तो नजारे बदल जाते हैं,
3: वाह,
6: सोच बदलो तो सितारे बदल जाते हैं।
3: करेक्ट,
6: कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा बदलो तो किनारे बदल जाते हैं।
3: वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत बात कही है अखिल जी ने, और बिल्कुल सही बात है, जब आप अपनी दिशा बदलते हैं तो किनारे अपने आप बदल जाते हैं।
6: छोटी छोटी जो बातें होती हैं कभी
3: जी,
6: कभी
3: जी,
6: वो जिंदगी में लाइफ में बहुत ही बड़ा बदलाव ले आती
3: है। करेक्ट, और छोटी सी शुरुआत ही जो है हमें जीवन में वहां तक पहुंचा देती है जहां हम जानना चाहते हैं, जहां हम पहुंचना चाहते हैं, है ना। एक सवाल, अगर सुबह उठते ही इंसान ये सोच ले कि आज भी कुछ खराब होगा तो क्या दिन अच्छा जाएगा?
6: बिल्कुल नहीं, क्योंकि दिमाग वही ढूंढता है
3: जो हम बताते हैं,
6: है ना? वही दिमाग हमारी चीज ढूंढ रहा होता है।
3: और अभी फिलहाल मेरा और आपका दिमाग ढूंढ रहा है एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, क्योंकि जब तक ब्रेक नहीं होगा म्यूजिक वाला तब तक हमारा दिमाग भी ढूंढता रहेगा, गाना कहाँ है, गाना आ गया आपका फेवरेट गाना, एक छोटा सा गाना, उसके बाद जल्दी से लौट कर आते हैं। मैं और अखिल आपके ही में जाइए, सुनते रहिए आपका अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो,
6: बजाते रहो और गुनगुनाते रहो।
3: वेरी नाइस।

0: वेलकम बैक है इस ब्यूटीफुल गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 पे। आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा प्रोग्राम जिसका नाम है सोच बदलो। जी अखिल जी, कुछ कह रहे थे आप अभी?
1: मैं यही कह रहा था कि आजकल लोग छोटी सी परेशानी में भी बोल देते हैं मेरी किस्मत ही खराब है।
0: और ये मुझे ऐसा लगता है कि हम नहीं, सभी इंसान इस चीज पे बिलीव करते हैं और सभी बोलते हैं। मोस्टली हर इंसान जब भी स्ट्रेस में होता है या उसका कोई काम नहीं बनता है तो वो ये चीज को जरूर बोलता है। अखिल भैया, लाइन क्या बोली थी अभी आपने? वो
2: ऐसे बोल दो
0: जी भैया,
1: ओहो मेरी तो किस्मत ही खराब है।
0: और ये जो लाइन है ना, ये अखिल भैया आपने ही, मुझे लगता है दुनिया का हर दूसरा इंसान बोल रहा होता है। करेक्ट,
1: बिल्कुल।
0: दोस्तों, सोच बदलो प्रोग्राम के जरिए कोशिश होती है कि छोटे छोटे टॉपिक्स पे डिस्कस किए जाएं और ये वो टॉपिक्स हम लेकर आते हैं जो एक्चुअली हमारी और आपकी लाइफ में चल रहे होते हैं।
1: अब देखो ना, अगर बारिश हो रही होती है तो कोई बारिश को देखकर ये बोल देता है ओह आज तो ट्रैफिक होगा, बारिश हो रही है, और कोई उसी बारिश को देख के कहता है अरे आज मौसम कितना प्यारा हो गया।
0: बस अपने अपने देखने का तरीका है, नजरिया है ना। लेकिन ये सच है कि प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है, फर्क सिर्फ सोच का होता है। अखिल भाई
1: बिल्कुल सही बात कही।
0: चलो,
1: अरे आनंद भाई, कभी कभी ना अगर कुछ लोग इतने नेगेटिव मिलते हैं कि अगर आप उन्हें फ्री में पिज्जा भी दो ना तो ये कहेंगे आपसे अरे कहीं कोल्ड पिज्जा तो नहीं दे दिया, कहीं ठंडा तो नहीं दे दिया हमें।
0: मतलब पिज्जे के अंदर भी वो नेगेटिविटी ढूंढ लेते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि यहाँ तो फिर पक्का उन्हें सोच बदलने की जरूरत है। और श्रोताओं, मुझे ऐसा लगता है कि सोच अगली बात से डेफिनेटली बदल जाएगी। और कुछ लोग अखिल भाई इतने पॉजिटिव होते हैं, आप यकीन मानिए कि मतलब अगर उनके घर में उनका वाईफाई ना भी चले तो भी भैया उनको ये लगता है कि चलो आज वाईफाई ना चला ना सही, एटलीस्ट फैमिली से तो बतिया लेंगे भाई, फैमिली से तो बात कर लेंगे। और ये जो गेट टुगेदर वाला टाइम होता है ना, ये एक अलग

0: होता है और यहीं पर निकल के आती है पॉजिटिविटी। अगर आपका, मैं तो एक बात और कहना चाहूंगा श्रोताओं, अगर कोई काम आप कर रहे हैं और अगर वो नहीं हो पा रहा है सक्सेसफुल या वो नहीं बन पा रहा है तो आप सोचिए उसके पीछे भी कुछ पॉजिटिव हो सकता है।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी लाइफ में, अखिल भाई ऐसा होता है, हम बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं अपनी लाइफ से और वो हमें नहीं मिलती है तो हमें लगता है यार ऊपर वाले ने ऐसा क्यों किया, जबकि थोड़े दिन के बाद उससे भी बेहतर से बेहतरीन हो रहा होता है, फिर हमें लगता है कि यार अगर वो चीज हो जाती तो शायद ये नहीं होता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तो जिंदगी कहाँ परफेक्ट होती है, जिंदगी परफेक्ट कहाँ होती है, नहीं होती ना जिंदगी परफेक्ट, लेकिन अगर सोच पॉजिटिव हो तो वो और सफर थोड़ा सा और आसान हो जाता है।
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा और मुझे भी लगता है कि दोस्तों जिंदगी देखो परफेक्ट तो कभी नहीं हो सकती, ना ही इंसान कभी परफेक्ट हो सकता है, ठीक है, लेकिन एक गाना जो मैं लगा रहा हूँ ये जरूर परफेक्ट हो सकता है आपके लिए और हमारे लिए। तो एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद लौट कर आते हैं। मैं और अखिल, प्रोग्राम है सोच बदलो, आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो। भैया बजाते रहो या गुनगुनाते रहो, गुनगुनाते रहो या बजाते रहो, बात एक ही, फिलहाल हम बजा रहे हैं गाना।

0: और इस बेहतरीन गाने के बाद एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हैं मैं और अखिल जी आपका इस प्रोग्राम में जिसका नाम है सोच बदलो। साथियों, आज का हमारा टॉपिक कोई स्पेशल नहीं है, बस हमने कुछ चीजों को उठाया है, कुछ चीजों को हम चुनकर लेकर आए हैं जिसपे हमें अपनी सोच को थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो अहम और कड़क वाला मुद्दा बना हुआ है वो है आज के टाइम में सोशल मीडिया। क्यों अखिल जी? सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है जिसमें ना जिसकी भागदौड़ में छोटे से लेके बड़े तक और बड़े से लेके बुजुर्ग तक भी शामिल है। हर किसी को लग रहा है कि मैं फेमस हो जाऊं, हर किसी को लग रहा है मेरे अच्छे व्यूज आ जाए। और मजे की तो यह है दोस्तों, आप में से भी कई लोग ऐसे होंगे जो अपनी फोटोज डालते होंगे ये उम्मीद करके कि शाम तक तो 200 लाइक आ ही जाएंगे और उस पे 2 लाइक भी ना आए तो आपका मन बड़ा उदास हो जाता है। और ऐसा मेरे साथ भी होता है। मैं आपको बोलूं तो मैं भी कभी बहुत सारी चीजें अच्छी अच्छी डालता हूं तो मुझे भी लगता है यार शाम तक 500 लाइक तो आ जाएंगे, और जब 5 भी नहीं आती तो थोड़ा सा मन उदास होता है। लेकिन फिर वहीं पे हमें अपने मन को चेंज करना है, डायरेक्शन चेंज करनी है। टाइम पे क्या करना है भाई? क्या हम 500 लाइक या 5 लाइक पे अपने आप को थोड़ी रख रहे हैं भाई?
1: बिल्कुल सही बात कही। और हमें सोशल मीडिया से अपने आप को कंपैरिजन करना है क्यों है?
0: एब्सोल्युटली अखिल भाई, बिल्कुल। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया से ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है हमारी खुद की लाइफ, हमारी खुद की सेटिस्फेक्शन और हमारी फैमिली। अगर फैमिली खुश है, हम खुश हैं तो सब बढ़िया है। तो गाइज, यहाँ पर भी सोच बदलने की जरूरत है। जरूरी नहीं है कि सोशल मीडिया पे अखिल जी ने दुबई में जाके एक बढ़िया से फूड की फोटो डाली तो मेरे को ये लगे भैया मैंने नहीं डाली तो मेरी लाइफ खराब हो गई, मैं कहाँ बैठा हूँ। ऐसा नहीं सोचना है। अखिल भाई की अपनी लाइफ है, आपकी अपनी है, मेरी अपनी है, सबकी अपनी अपनी प्रायोरिटीज है।
1: तुमने दुबई बोल के ना कुछ पुराने मेमोरी
0: याद दिला दी। वैसे मेरे साथ जो शख्स बैठे हुए हैं, जो महान इंसान है, ये दुबई भी घूम के आ चुके हैं और दुबई में इन्होंने अरीना मरीना सब देखा है, एलेन और पता नहीं अबू धाबी कहाँ घूम के आए हुए भाई।
1: दुबई तो अपने में बहुत ही अच्छी जगह है।
0: और लेकिन यार आज की डेट में पता है सबसे बड़ा स्ट्रेस क्या है अखिल भाई?
1: क्या है
0: यार? मुझे लगता है कि इंस्टाग्राम जो है ना हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे आ गया है जैसे मतलब बिना टमाटर के सब्जी नहीं बनती, वैसे इंस्टाग्राम से जब तक खोलो ना दिन की शुरुआत नहीं होती।
1: बिल्कुल।
0: तो ये इंस्टाग्राम जो हमारी जिंदगी में आके मतलब इसने तहलका मचाया ना।
1: एक बात बोलूंगा तुमसे कि इंस्टाग्राम में देख के ना कभी भी अपने आप को ना अनसक्सेसफुल मत
0: अनाप शनाप डाला और उसके इतने व्यूज आ गए, इतना वायरल हो गया वो बंदा। अभी किसी और की बात क्यों करे, कॉकरेज की बात कर लेते हैं भाई। कॉकरेज भाई को ले लो, इतने वायरल हो गए यार। तो मतलब कभी कभी लगता है फिर हम क्या कर रहे हैं इतने टाइम से, तो वो स्ट्रेस अपने आप ही आ जाता है। आप कहना क्या चाह रहे हैं?
1: मैं तो बस यही कहना चाह रहा हूँ कि ये सब है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो अगर हम किसी को देख के अपने आप को अनसक्सेसफुल समझ रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है।
0: वो मतलब हमें सोच बदलनी चाहिए। हर किसी की लाइफ अलग है, हर किसी की प्रायोरिटीज अलग है, हर किसी का डिजायर अलग है। तो जरूरी नहीं है जो अखिल भाई की लाइफ में चल रहा हो मेरी लाइफ में भी चल रहा हो।
1: और दूसरी बात यह है कि सोशल मीडिया पे ना लोग अपनी हाईलाइट ही दिखाते हैं, उसके पीछे की क्या कहानी है, पूरी कहानी वो किसी को नहीं पता।
0: पॉइंट तो है। और कभी कभी तो ऐसा होता है लोग सिर्फ दिखाने के लिए ही चीजें कर देते हैं भाई। तो दोस्तों, आपको अपनी जो है ना सोच को एकदम सही रखना है। जो आप देख रहे हो जरूरी नहीं है वो सच हो। आज भी आप YouTube पे एक इन्फॉर्मेशन डालोगे उसके इतने इन्फॉर्मेशन आएंगे आपको समझ ही नहीं आएगा सही क्या है और रॉन्ग क्या है। तो हमें सही डायरेक्शन में चलना है। और अभी एक और डायरेक्शन है जहां हमें जाना चाहिए मुझे और अखिल भाई को, वो है एक म्यूजिकल ब्रेक, म्यूजिकल डायरेक्शन, जहां जाएंगे तो थोड़ा सा रिलैक्स और रिलीफ दोनों मिलेंगे, हमारी जुबान को भी, हमारे गले को भी, और आपके कानों को भी मिलेगा सुकून। तो एक छोटा सा गाना, उसके बाद वापस आते हैं मैं और अखिल जी। हाँ, लेकिन याद रखिए दोस्तों, ये इंस्टाग्राम जितना प्यारा है ना उतना टेंशन का कारण भी बन गया आजकल की स्पेशली जेंजी का। कभी कभी तो मेरे अखिल भाई को भी टेंशन हो जाती है कि यार सुबह वीडियो डाली थी शाम तक आई क्यों नहीं, कल जोक बनाया था 2 महीने हो गए अभी तक आया क्यों नहीं। तो इनको भी बहुत टेंशन हो जाती है।
1: इसके लिए तो मैं जरा आनंद को अकेले में पकड़ूंगा।
0: और फिर ये अकेले में पकड़ने गलत मतलब मत समझिएगा श्रोताओं, फिर बाद में कहते हैं बच रहा है तू मेरा। एक काम करते हैं, गाना सुनते हैं, फिर मिलते हैं।

0: ये गाना सुन के तो मैं अपनी चेयर से गिरने वाला था। अखिल भाई ने पकड़ लिया कि बेटा रुक जा, इतना डांस मत कर। वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट, गाना बहुत ही मजेदार था ये। और इस गाने के बाद इसी बात पे आपका वेलकम कर लेते हैं जी। आप सुन रहे हैं आपके शहर का अपना फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो स्टेशन आनंद एंड अखिल के साथ। सो अखिल जी, आप कुछ अभी माइक के पीछे मुझे चार लाइने, चंद लाइने सुना रहे थे, जरा हमारे श्रोताओं के सामने पेश करें।
1: मैं बहुत ही सिंपल और ये कहना चाह रहा था, हर चमकती चीज जो होती है वो सोना नहीं होती है।
0: बिल्कुल।
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: लेकिन ये जो हर चमकती चीज सोना नहीं होती, ये कौन सी सोने की बात चल रही है? जो रात को नींद पूरी नहीं हुई वो, या फिर आजकल जो महंगा हो गया है वो? थोड़ा सा विस्तार से बता दें। अच्छा, मैं थोड़ा कंफ्यूज में।
1: अच्छा आनंद, तुम्हारे पास कितना सोना आज बता दो लोगों को।
0: मेरे पास सिर्फ वीकेंड पे ही सोना होता है, सैटरडे एंड संडे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये दो दिन ही होते हैं। सैटरडे रात को जागता हूँ, संडे को सोना सोना करता हूँ, और उसके बाद भी हो नहीं पाता है, क्योंकि भाई इतना काम पड़ा होता है ना वीकेंड पे, वो भी कम्प्लीट करना होता है।
1: जो तुम्हारा सोना है ना, वो एक्चुअल में जो दूसरा सोना है उससे ज्यादा कीमती है।
0: करेक्ट यार। और अगर वो सोना कम्प्लीट नहीं है आपका, तो फिर सारे सोने बेकार है, सब अनसक्सेसफुल है। करेक्ट, क्योंकि आपकी हेल्थ भी उसी से जुड़ी है।
1: बिल्कुल सही है। हाँ। वो असली हेल्थी आपकी सोना है ना।
0: और अगर आप टाइम पे सोओगे, टाइम पे उठोगे, तो आपके चेहरे पे जो सोने जैसा निखार आएगा ना, भाई साहब हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। करेक्ट। चलो जी, ट्रैक से नहीं भटकेंगे, सोच बदलो में हम थोड़ा सा फन और एक्टिविटीज ऐसे करते रहते हैं। लेकिन अभी अखिल जी, आपने जो वो चार लाइनें कही थी, वो लाइनें मैं जरा आपसे दोबारा सुनना चाहूंगा। हाँ, हर चमकती चीज
1: सोना नहीं होती,
0: सोना नहीं होती,
1: और हर हंसता हुआ चेहरा खुश हो ये भी जरूरी नहीं होता।
0: बिल्कुल। इस बात में मैं भी कहना चाहूंगा, कंपैरिजन कॉन्फिडेंस खत्म कर देता है श्रोताओं। तो जो ये कंपैरिजन, इसको अपनी लाइफ से हटा देंगे तो कितना बढ़िया होगा अखिल जी।
1: बिल्कुल सही बात
0: है। लेकिन मतलब मुझे लगता है कि हम इंसानों की आदत है, फितरत है, हम ये हटा ही नहीं सकते हैं, ये कंपैरिजन करने वाली आदत। वेल, आप आगे क्या कहना चाह रहे
1: हैं? मैं तो ये कहूंगा कि अपने को ना किसी और की कहानी से मत नापिए।
0: हाँ,
1: आपकी जो अपनी जिंदगी है ना, उसकी टाइमिंग अलग है।
0: टाइमिंग अलग है यार, हर किसी की लाइफ के पैरामीटर सेट है,
1: एक अलग ही टाइमलाइन चल रही है, तो वो अच्छी चल रही है। कोई ऐसा वो नहीं है कि आप उसे कंपैरिजन में ही निकाल दें या गांव दें।
0: अगर सोशल मीडिया आपका इनर पीस खराब कर रहा है, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि आपको रुकने की जरूरत है, थोड़ा सा आपको सावधान होने की जरूरत है। क्यों अखिल जी?
1: बिल्कुल सही बात। और एक थोड़ा सा डिजिटल डिटॉक्स भी करवाएं, इतना सारा डिटॉक्स चल रहा है।
0: डिजिटल डिटॉक्स के बारे में थोड़ा बताएं।
1: थोड़ा सा एक बढ़िया सा गाना लगा दीजिए, वही डिजिटल डिटॉक्स है।
0: हाँ, मैं गाना जरूर लगाऊंगा, और बहुत जल्दी जल्दी हम गाने सुनवा रहे हैं, तो श्रोता हमें सोच रहे होंगे कि आज क्या हो गया है, सारे गाने सुना के जाएंगे क्या?
1: थोड़ी स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं,
0: थोड़ा मुद्दे की बात भी कर लेते हैं। अच्छा, मुझे लगता है कि लाइफ में ना एक चीज और है अखिल जी, जिसपे हमें ना थोड़ा सा काम करने की जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को जो है सेट करने की जरूरत है, और थोड़ी सी थॉट्स और अपनी सोच को बदलने की जरूरत है, वो है फेलियर। हर किसी की लाइफ में ये फेज आता है, मुझे ऐसा लगता है, छोटे बड़े बच्चे हर किसी के जीवन में आता है ना। तो लोग इतना फेलियर शब्द से क्यों डरते हैं, इतना अनकॉन्फिडेंट अनकॉन्शियस क्यों फील करते हैं?
1: मेरे हिसाब से ना, मुझे क्या लगता है, क्योंकि जो सोसाइटी है ना,
0: हाँ,
1: वो सिर्फ आपकी सक्सेस ही सेलिब्रेट करती है।
0: गॉट इट, 100% अग्री विद यू।
1: और हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे फेलियर्स की बहुत ही लंबी कहानी होती है।
0: करेक्ट।
1: हमें तो उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं तो यही कहूंगा कि अगर जो लोग डर रहे हैं, तो कोई डरने की जरूरत नहीं। जब तक फेलियर्स से आपका सामने नहीं होगा, तो सक्सेस का वो मजा भी आप नहीं ले पाएंगे।
0: इनफैक्ट, जब आप फेल होते हो ना अपनी लाइफ में दोस्तों, मैं अपना पर्सनली एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जब आप फेल हो रहे होते हो, तो आप ना उस वक्त बहुत कुछ सीख रहे होते हो। इतना आप सक्सेस में जब सेलिब्रेट करोगे, तब नहीं सीखते, इतना फेलियर वाले पीरियड में सीख पाओगे। बिकॉज वो जो फेस होता है ना, वो आपको वो सारी चीजें सिखाता है, वो चेहरों से रूबरू कराता है, जो एक्चुअली आप कभी आप उनको मिल भी नहीं पाओगे।
1: एक बार बताओ आनंद,
0: हाँ,
1: में फेल हुए, बिजनेस नहीं चला या रिलेशनशिप टूट गया, तो क्या जिंदगी खत्म हो गई क्या?
0: नहीं यार, ये एग्जाम, रिलेशनशिप, बिजनेस, ये तो लाइफ का पार्ट है। अगर इन सब चीजों पे जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता यार कि हमारी जिंदगी नहीं चलेगी। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि फेलियर ना हमारी डायरेक्शन को बदलता है ना।
1: बिल्कुल सही, डेस्टिनी नहीं बदल सकता वो।
0: करेक्ट। तो वही है ना, आपकी अगर डेस्टिनी स्ट्रांग है, आपका आपको पता है कि आपको जाना कहाँ है, अगर आप उस पर फोकस्ड हैं, तो आई एम श्योर आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना। पर अगर लाइफ में आपको थोड़े से डाउनफॉल मिल रहे हैं, आपको लग रहा है कि आप थोड़ा सा डगमगा रहे हैं, आपकी लाइफ में थोड़ा सा वो फेस आ रहा है जहां पर आपको लग रहा है कि यार अब मुझे फेलियर का सामना करना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फुली कॉन्फिडेंस के साथ चलते रहिए, क्योंकि आपको पता है ना आप कहां पर सही है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं है, और आपको पता है आपकी मंजिल कहां है, तो फिर बस आपको तो भैया अच्छी चीज के साथ, फुल ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, पूरी सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ आगे निकलना है, और वो कहना है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा।
1: क्या बात है
0: ना,
1: क्या
0: इस मोटिवेशन को अपने अंदर लेकर आओ और अपनी सोच को बदलो, देखो जिंदगी कितने प्यारे रिजल्ट देगी। कुछ ज्यादा ही मोटिवेशन नहीं भर दिया आज हमने लोगों में?
1: हाँ जी, ऐसा मोटिवेशन दे दिया, कल आ जाएंगे फोन के भाई साहब आ रहे हैं, हम भी एक आरजे बनने वाले हैं।
0: कोई दिक्कत नहीं है जी, चेयर बिल्कुल खाली है, अखिल भाई को थोड़ी देर के लिए बाहर खड़ा करेंगे, आपको अंदर बिठाएंगे, और आपको यहाँ ना बिठाएंगे, टेंशन मत लो आप। फिलहाल अखिल भाई ने एक गाने की बात करी थी, तो गाना जो है आ गया है निकल के बाहर, और ये गाना बहुत अच्छा है, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। आपने सुना है गाना?
1: सुना।
0: कयामत से कयामत फिल्म थी आमिर खान साहब की, और ये गाना भाई साहब आज भी मजेदार लगता है मुझे।
1: और गाना गाने के बाद आमिर खान की तो मैं बात कहूंगा, आज क्या नाम कर रखा है
0: आमिर खान साहब ने, अरे गजब। और ये उदित साहब का भी कमाल है, उदित नारायण जी ने जब गाना गाए थे तो भाई साहब उनकी भी रातों रात पॉपुलैरिटी बढ़ गई थी। उदित साहब की आवाज है ना,
1: देखा एकदम आपका जो थे जितने भी फेलियर्स थे सभी एक उस गाने से सक्सेस।
0: एब्सोल्युटली यार। और आमिर खान की भी फर्स्ट मूवी थी कयामत से कयामत तक मूवी है, इसमें आमिर खान साहब को अगर आपने नहीं देखा तो ध्यान से देखना, उनका जो फेस है एकदम यंगर वाला, क्या लग रहे हैं भाई। एक काम करेंगे, अगर हम इन्हीं पे बातें करेंगे तो पूरा स्टोरी निकल जाएगा, गाना नहीं सुन पाओगे। तो पहले गाना सुनो, उसके बाद लौट कर आते हैं।

दोस्तों, सबसे पहले तो शुक्रिया सेकंड ईयर स्टूडेंट्स का, जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है। थैंक अ लॉट, वी मिस यू। हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है

0: वेलकम बैक ही वंस अगेन, यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो। और ये गाना भी आपने सुना कयामत से कयामत मूवी का, और बहुत ही कमाल की फिल्म थी और बहुत ही फैंटास्टिक लगे मुझे तो आमिर खान। और इसमें एक गाना है, मेरा तो सपना है एक चेहरा देखे जो उसको झूमे बाहर। अभी तक वो चेहरा मुझे तो नजर नहीं आया, लेकिन अखिल जी क्या कहना चाहते हैं, प्लीज टेल अस यार।
1: मैं एक्चुअली क्या है ना, अभी हम
0: कहते हैं बड़ा नाम करेगा,
1: मगर आमिर खान साहब ने एज अ चाइल्ड एक्टर भी काम किया है। एक मूवी थी यादों की बारात करके,
0: हाँ।
1: और उन्हीं के अंकल हैं, डायरेक्टर थे जो उस मूवी के थे, नसीर साहब थे। तो मतलब बचपन से ही इज लाइक इन एक्टिव, और इतना कहते हैं ना कि बचपन खून में है, तो वो खून वाली ही चीजें थी कि हाँ भाई खून में है एक्टिंग, और इतना अच्छा आज के समय में ऐसा नाम।
0: मेरी तो आमिर खान साहब से बात भी हुई है, एक्चुअली एक रेडियो स्टेशन का नाम तो नहीं लूंगा, तो आमिर खान साहब मुंबई के एक स्टूडियो में थे और मैं अपने घर से खड़ा फोन लगा रहा था। लाल सिंह चड्डा इनकी मूवी आई थी अभी थोड़े टाइम पहले, तो उसके प्रमोशन के लिए आए थे। तो इन्होंने बोला था जो सबसे क्रिएटिव लाइन सुनाएगा मैं उससे लाइव बात करूंगा। तो मैं बस जस्ट रैंडमली मैंने फोन लगाया एक स्टेशन में, और वो रिकॉर्डिंग आज भी मेरे इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो। तो आमिर खान साहब ने बोला हाँ कौन बोल रहे हो, मैंने कहा आनंद। तो कह रहे मैंने कहा मैं आमिर खान से बात कर रहा हूँ, आमिर खान ने बोला यस बेटा मैं आई एम आमिर, टेल मी आनंद कहाँ से हो। मैंने बताया और मेरे को आरजे बनना है, आई एम वेरी पैशनेट ये वो। तो आमिर ने बोला ठीक है मैं यहाँ के डायरेक्टर से बात करता हूँ, जो वहाँ का प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी थे, कि और तुम्हें कुछ एक चांस दिलाते हैं। बट स्टेशन मुंबई में था तो मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं था। तो फिर आमिर खान साहब ने बोला एक राइमिंग बनानी है लाल सिंह चड्डा की मूवी के ऊपर। तो फिर मैंने बना दिया, मुझे बड़ा मजा आया भाई। जब मैंने बनाया तो ताली वाली सब बजाई, पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अखिल भाई। वो लाइन थी कि जाना था मुझे बस के अड्डा, मुझे आज भी याद है, जाना था मुझे बस के अड्डा, लेकिन जैसे रेडियो खोला तो नजर आ गया लाल सिंह चड्डा। इतनी तालियां बजाई आमिर खान, मतलब आमिर खान इज वेरी हैप्पी कि हाँ यार बंदे ने कुछ तो क्रिएटिव। एक दो लाइन और बोली थी, वो शायद मेरे पास, मुझे ध्यान नहीं है, वो मेरे वीडियो में पड़ा हुआ है। और जब मैंने आमिर खान साहब से बात करी तो उस दिन पूरा दिन मुझे नींद ही नहीं आई भाई, लगा ही नहीं कि मैं कहां बैठा और कहां आमिर खान साहब से, मतलब जिनको पिक्चर में देख रहे हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत गोल्डन चांस।
1: हमारे साथ ये वाला वाक्य हो गया कि पापा कहते हैं
0: बड़ा नाम करेगा। हाँ बट मम्मी को बहुत खुशी हुआ था, मेरी मम्मी को मतलब फेवरेट है आमिर खान। और फिर एक बार मेरी अक्षय कुमार साहब से भी हुई यार ऐसी, तो दूसरे स्टेशन के, मतलब मैं शुरू से इतना ज्यादा एक्टिव रहा हूँ चीजों में, तो आई फील कि यार हाँ ठीक है रेडियो पे अगर हम, और रेडियो में भी मेरा आने का मतलब ये नहीं कि सेलिब्रिटी से ही मिलना है, मतलब एक रियल कनेक्शन बनता है। जैसे मेरी बात उनसे हुई मैं खुश हुआ, ऐसी हमारे तमाम लिसनर जो हमसे बात करते हैं उन्हें खुशी मिलती है, तो ये एक अलग ही यू नो हैप्पीनेस होती है। और ये अखिल जी जो बैठे ना ये भी बहुत कमाल धमाल करके आ चुके हैं ऑलरेडी दिल्ली में, और ये एक बहुत अच्छे स्टेशन में साउंड इंजीनियर जो भी है, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता इनका प्रोफेशन क्या रहा है, बट इन्होंने अच्छा किया है।
1: मैं बताना चाहूंगा आमिर खान साहब को मैंने भी बहुत नजदीक से देखा है, बात भी हुई है उनकी। एक मूवी की शूटिंग हुई थी जब मैं किंगडम ऑफ ड्रीम्स में था,
0: तो
1: नहीं गुड़गांव में किंगडम ऑफ ड्रीम्स,
0: अच्छा ओके।
1: तो वहाँ पे ना आपका तो शॉट रात में था, और रात में आप मतलब मानोगे नहीं, रात में एक दो बजे भी ऐसा लग रहा था कि सुबह के एकदम ताजा उठे हुए और वो शूट कर रहे थे, और उस बीच उनका एक
0: मतलब प्रोडक्टिविटी एकदम मॉर्निंग वाली थी,
1: इतना एक्टिव कुछ पूछो मत। और उस शूट में एक मजे की बात और थी कि उन्हीं के बेटे जुनैद खान वो उसमें असिस्टेंट थे।
0: ओ वाओ क्या बात,
1: सॉन्ग के असिस्टेंट थे,
0: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। ये तो जानकर हमें बहुत खुशी हुई अखिल जी, थैंक यू सो मच, आपने ये कड़क अपडेट हमें बताई। और अगर हम कभी आमिर खान से मिले तो जरूर आपका मैसेज तक पहुंचा देंगे, आप बिल्कुल चिंता ना करें, अगर आप हमसे पहले मिले तो हमारा पहुंचा दीजिएगा।

0: दोस्तों फिलहाल प्रोग्राम है सोच बदलो और उनका पीके मूवी का इन्होंने जिक्र किया तो एक मीम बहुत वायरल होता है, अच्छा हमें सिखाएगा, अच्छा हमें बता दिया है। आई एम श्योर आपने देखा ना। और ये मूवी की शूटिंग के दौरान ही मैंने इनके एक इंटरव्यू में पढ़ा था कि इन्होंने इस मूवी में जो डायलॉग बोले ना, अच्छा हमें सिखा दिया है, ये वाला करने के लिए उन्होंने 100 पान चबाए थे भाई, ये वाले शॉट के लिए आमिर खान साहब ने, वो पान खाते हो और तब ये वाला वायरल होता, तो इस मूवी के लिए उन्होंने 100 पान को खाया यार। एक एक्टर को कितनी मशक्कत करनी पड़ती है सोचो आप।
1: बिल्कुल सही।
0: और दोस्तों इस एक्टर को नहीं, एक रेडियो जॉकी को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कहीं और ट्रैक पे हम लोग आ गए तो हमें वापस अपने ट्रैक पे जाना है। सो वेल, ये जो भी इन्फॉर्मेशन थी हमारे लिसनर्स के काम की, भाई हर किसी को हर चीज नहीं पता होती है, रेडियो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से नई नई इन्फॉर्मेशन मिल रही होती है। तो आगे बढ़ते हैं और अभी हमारा टॉपिक चल रहा था सोशल मीडिया पे, हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, तो अखिल जी आप फेलियर के बारे में कुछ जिक्र कर रहे थे।
1: मैं तो कहूंगा यही
0: जी भैया,
1: गिरकर उठना सीख लिया हमने, अब मुश्किलों से डर नहीं लगता।
0: वाह,
1: क्योंकि सपने शहर देखकर नहीं हौसले देखकर पूरे होते हैं आनंद।
0: हाँ बिल्कुल सही बात है, और हौसले अगर आपके मजबूत है ना तो फिर आपको कोई नहीं पड़ सकता, कोई नहीं हरा सकता। करेक्ट, तो बस अपने इरादों को मजबूत रखिए, अपनी सोच को अच्छा रखिए, और जिंदगी में कुछ बढ़िया करने के लिए ना कुछ बढ़िया सोचना जरूरी है। कहते हैं जैसा हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते, तो ये बिल्कुल फैक्ट है। आप भी अच्छा सोचिए, ऑफकोर्स आपकी लाइफ में भी अच्छा होगा। और आज के छोटे छोटे टॉपिक्स हमारा सिर्फ यही मतलब था, यही मुद्दा था बताने का कि इन सब की वजह से ना हम बहुत भटकते हैं अपनी लाइफ में, सोशल मीडिया हो गया, स्ट्रेस हो गया, फेलियर हो गया, ये सब चीजों के पीछे हम इतना ज्यादा घुस जाते हैं कि हम अच्छी चीजों को ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि भाई यही सब चीजें जो हमें दबा रही हैं और इन्हीं चक्कर में हम आगे नहीं पहुंच पाते हैं। तो थोड़ा सा सोच को बदलिए, सोच बदलोगे तो आपके इरादे बदलेंगे, इरादे बदलेंगे तो आपकी सफलता आपके सामने खड़ी होगी, है ना भैया। और मुझे लगता है अगर आप सही दिशा में प्रयत्न करोगे, सही दिशा में प्रयास करोगे तो आपको एक ना एक दिन सफलता डेफिनेटली मिलेगी।
1: आनंद कभी अब तुम ये तो नहीं सोच रहे कि मैं अपने आसपास वालों को बदल दूं?
0: यार आसपास वालों को तो नहीं बदल सकता, लेकिन मैं खुद को जरूर बदल लूंगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल है नहीं भाई। बट हम सही काम करेंगे तो डेफिनेटली बदल सकते हैं यार,
1: बिल्कुल
0: है ना। एक इंसान की सोच सब कुछ बदल सकती है, तो बस वही चीज है। बाकी अभी मैं और अखिल जी लेते हैं इजाजत, बहुत सारी ज्ञान और काम की बातें भी हो गई और फिल्मी शिल्मी वाली बातें भी हो गई, एंड जल्दी गुफ्तगू करने के लिए फिर किसी और मोड़ पर नए एपिसोड के जरिए आपसे रूबरू होंगे मैं और अखिल जी। तो अखिल जी जाते जाते आप कुछ कहना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
1: हाँ बिल्कुल आनंद, बस एक छोटी सी बात ही कहना चाहूंगा मैं कि अगर खुद पर भरोसा हो तो छोटी शुरुआत भी बड़ी बन जाती है।
0: क्या बात है, बहुत ही खूबसूरत बात आपने कह दिया अखिल जी, और बहुत ही बड़ी बात ही है मुरादाबाद के युवाओं के लिए। बस यही एक प्यारा सा मेरी तरफ से भी संदेश रहेगा कि दोस्तों जिंदगी में ये मत सोचिए कि हर चीज परफेक्ट होगी, परफेक्ट कुछ भी नहीं होता है। जब आप अपनी लाइफ में शुरुआत करते हो ना, वही सबसे पहला और सबसे बेहतरीन कदम होता है।
1: अपने साथ स्माइल रखनी है बस हमेशा।
0: करेक्ट, अपनी स्माइल के साथ आगे बढ़िए, नो स्ट्रेस नो टेंशन, सब कुछ ऊपर वाले पे छोड़ दीजिए, अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहिए। फिलहाल हम भी यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक अच्छे से गाने की तरफ प्रस्थान करेंगे और फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ढेर सारा पानी पीते रहिए, गर्मियां बहुत हैं। मच्छरों से बचने के लिए मच्छरदानी का इस्तेमाल कीजिए और थोड़े से कूलर शूलर भी चला लीजिए।
1: थोड़ा नहीं, कूलर तो पूरा ही चला,
0: मतलब हाँ भाई यार पूरा ही चला लीजिए। चलिए दोस्तों फिर मुलाकात होगी, बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, बाय कर दीजिए आप भी,
1: बाय बाय। रेडियो बजाते रहो,
0: गुनगुनाते रहो और सुनते रहो आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो FM मुरादाबाद 89.6। बाय
1: बाय।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।
1: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: बरसात से पहले अपनी गाड़ी को दीजिए योकोहामा की सेफ्टी और परफॉर्मेंस का भरोसा। चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड पर 4 योकोहामा टायर्स खरीदिए और पाइए अश्योर्ड गिफ्ट वर्थ अप टू 4,200 रुपीस एब्सोल्युटली फ्री। साथ ही नो कॉस्ट EMI और बजाज फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। ऑफर वैलिड टिल स्टॉक्स लास्ट। विजिट चौला टायर्स ऑपोजिट मधुबनी पार्क कांत रोड मुरादाबाद। कॉल नाउ 9412211111।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सभी का स्वागत करता हूं इस विशेष कार्यक्रम में। और ये कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शायद आपका बैंक अकाउंट खाली होने से बचा सकता है। हाँ, क्योंकि आज जो बात होने वाली है वो एक ऐसे टॉपिक पर होने वाली है जो टॉपिक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता जा रहा है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जैसे जैसे हम ऑनलाइन अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, वैसे वैसे बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो आपके साथ हो रहे हैं। और ये जो अपराध हो जाते हैं उस अपराध के बारे में आप किसी को बताना नहीं चाहते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद हमारे साथ ये अपराध हो गया। हाँ जी, तो आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में। तो ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत। आज हम बात करेंगे एक ऐसे साइबर अपराध की जो न सिर्फ आपका पैसा बल्कि आपका आत्मविश्वास, मानसिक शांति और सम्मान भी छीन सकता है। इस अपराध का नाम है डिजिटल अरेस्ट। श्रोताओं, सबसे पहले ये बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई भी कानूनी प्रक्रिया भारत में मौजूद नहीं है। यह पूरी तरह से एक साइबर ठगी है। ठग खुद को पुलिस अधिकारी, साइबर क्राइम ऑफिसर, CBI, ED या नारकोटिक्स विभाग का कर्मचारी बताकर आपसे संपर्क करते हैं। वे फोन, व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल करते हैं, डर पैदा करते हैं। तो चलिए एक ड्रामे के जरिए मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये साइबर ठग आपके साथ कैसा पेश आते हैं। यहाँ पर एक राजेश है और एक ठग है, तो चलिए शुरू करते हैं।

0: हेलो, कौन बोल रहा है?
1: मैं साइबर क्राइम विभाग से बोल रहा हूँ, राजेश कुमार। आपका आधार कार्ड अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल हुआ है
0: क्या? मैंने तो कुछ नहीं किया साहब।
1: आपके नाम से मनी लॉन्ड्रिंग और ड्रग्स ट्रांजेक्शन हुआ है, आपको अभी डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। देखिए, ये मेरी आईडी है, कोर्ट का नोटिस है, आप किसी से बात नहीं करेंगे। अगर सहयोग नहीं किया तो जेल जाना पड़ेगा।
0: मैं क्या करूँ साहब?
1: आपकी जांच के लिए सुरक्षा राशि जमा करनी होगी। अभी UPI से पैसे ट्रांसफर कीजिए।
0: मैंने पैसे भेज दिए हैं।
2: और यही पर राजेश ठगी का शिकार हो जाता है। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट, ठग मानसिक दबाव का इस्तेमाल करते हैं, जल्दी जल्दी बोलते हैं, धमकी देते हैं, बदनामी और जेल का डर दिखाते हैं। यही सबसे बड़ा संकेत है कि यह ठगी है। याद रखिए, असली पुलिस कभी भी गोपनीयता के नाम पर आपको अलग थलग नहीं करती। असली अधिकारी कभी पैसे नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कॉल आए तो आपको क्या करना चाहिए, चलिए मैं आपको बताता हूँ। श्रोताओं, अगर आपके पास ऐसा कॉल आए, सबसे पहले एक गहरी सांस लें, डरे नहीं, कॉल तुरंत काट दें। किसी भी हालत में OTP, बैंक डिटेल, आधार कार्ड, पैन कार्ड साझा ना करें। अपने परिवार से बात करें, नजदीकी पुलिस स्टेशन या हेल्पलाइन से संपर्क करें। सबसे ज्यादा ये ठग निशाना बनाते हैं बुजुर्गों को। श्रोताओं, डिजिटल अरेस्ट के सबसे बड़े शिकारी हैं बुजुर्ग नागरिक, रिटायर्ड कर्मचारी, अकेले रहने वाले लोग। इसलिए आपसे अपील है, अपने माता पिता को ये जानकारी जरूर दें, उन्हें समझाएं कि फोन पर गिरफ्तारी नहीं होती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये किसी ठग का काम है आपको ठगने के लिए। अगर गलती से आप इस ठग का शिकार हो जाते हैं और आपके पैसे चले जाते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है? अगर ठगी हो जाए तो सबसे पहले तो घबराना नहीं है, तुरंत एक नंबर मैं आपको बताने वाला हूँ, वो नंबर है 1930। इस नंबर पर कॉल करके अपनी सारी परेशानी को उनसे बताएं। अगर आप कॉल नहीं कर पा रहे हैं तो www.cybercrime.government.in पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज करें। जितनी जल्दी शिकायत दर्ज होगी उतनी ज्यादा रिकवरी की संभावना बनेगी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट से बचने के ऐसे कौन कौन से नियम हैं जिनका आप पालन कर सकते हैं और आप इस अरेस्ट से बच सकते हैं। सबसे पहले, पुलिस फोन पर गिरफ्तारी नहीं करते हैं, ये आपको समझनी है। सरकारी अधिकारी कभी आपसे पैसा नहीं मांगता है। डर दिखाया जाए, समझ जाइए कि शायद आपके साथ ठगी हो सकती है। किसी से बात करने से रोका जाए, खतरे की घंटी हमेशा इस बात का ध्यान रखें, पुष्टि हमेशा खुद से करें। जाते जाते मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहूंगा कि डिजिटल अरेस्ट सिर्फ एक झूठ है, लेकिन इसका डर सच्चा नुकसान करता है। डर को हराइए, जानकारी को हथियार बनाइए। याद रखिए, डर में लिया गया फैसला नुकसान करता है, समझदारी आपको सुरक्षित रखती है। यह कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन अवेयरनेस ISEA, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से। जाते जाते आप सभी से इतना कहना चाहूंगा, सुरक्षित रहें, जागरूक रहें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और इस शो का होस्ट आज राज। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 MHz। एक बार फिर मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि अगर आपके साथ ऐसा होता है तो कृपया करके आप सबसे पहले तो घबराएं नहीं। अगर आपके साथ ऐसी कोई चीज हो गई है तो 1930 पर कॉल करें। अगर आपको अपनी शिकायत दर्ज करनी है तो www.cybercrime.government.in पर जाकर आप अपनी कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं। हाँ, घबराना नहीं है, सुरक्षित रहें, जितनी जानकारी उतनी ज्यादा सुरक्षा। तो अभी के लिए लेता हूँ अलविदा, बाय बाय, टेक केयर।

0: और पुनर्निर्माण कार्यों में केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। श्री शर्मा ने कहा कि असम के लोग इस कठिन समय में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए आश्वासन और अटूट समर्थन के लिए उनके प्रति अत्यंत आभारी हैं। इस बीच गुजरात में मॉनसून की स्थिति गंभीर बनी हुई है। राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश हो रही है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर जारी है।
1: सीआरपीएफ की 32 प्लांटून और सेना की 6 टुकड़ियां भी विभिन्न जिलों में तैनात की गई है। लगातार हो रही बारिश से राज्य के जलाशयों में जल स्तर भी तेजी से बढ़ रहा है। सरदार सरोवर नर्मदा बांध में जल भंडारण क्षमता का लगभग 69% पानी भर चुका है, जबकि राज्य के 21 बांधों के लिए हाई अलर्ट जारी किया गया है। जल भराव के कारण यातायात और विद्युत सेवाएं भी प्रभावित हुई है। 34 स्टेट हाईवे समेत राज्य के 600 से अधिक सड़कें एहतियातन बंद कर दी गई है। वहीं मौसम विभाग ने राज्य के विभिन्न जिलों के लिए भारी से अति भारी बारिश की चेतावनी जारी करते हुए मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: भारतीय तटरक्षक बल ने 22 जुलाई की मध्यरात्रि से चलाए गए 11 बचाव अभियानों के माध्यम से दमन, दादरा और नगर हवेली तथा दक्षिण गुजरात के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में फंसे 170 लोगों को बचाया है। वहीं सिक्किम के नामची जिले के फामतम गांव में आज भूस्खलन के कारण 2 लोगों के मारे जाने की आशंका है। नामची के एसएसपी ने बताया कि बचाव अभियान चलाया जा रहा है। 2 घायलों को नामची जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिनों तक स्थगित रहने के बाद वार्षिक श्री अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू हो गई है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि बालतल और पहलगाम दोनों मार्गों से यात्रा फिर से शुरू कर दी गई है। यात्रियों को सुरक्षित तीर्थ यात्रा के लिए प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की सलाह दी गई है। इस बीच 6,269 तीर्थयात्रियों का एक नया जत्था आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से रवाना हुआ। जम्मू कश्मीर में तेज बारिश के कारण लगातार 6 दिन तक निरस्त रही श्री माता वैष्णो देवी यात्रा आज फिर शुरू हुई। इस मार्ग पर लगातार बारिश, भूस्खलन और अचानक बाढ़ आने के जोखिम के कारण यात्रा को निरस्त कर दिया गया था। तीर्थयात्रियों को अपनी यात्रा के दौरान श्राइन बोर्ड और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों तथा सुरक्षा परामर्श का पालन करने और मौसम संबंधी जानकारी से अवगत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान में भी इसी तरह की स्थिति रहने की संभावना है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश हो सकती है। वहीं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, तटीय कर्नाटक, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्र, पंजाब, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली में भी आज तेज वर्षा हो सकती है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार आज दोपहर नई दिल्ली में कांग्रेस जनता पार्टी CJP के प्रतिनिधिमंडल के साथ तीसरे दौर की वार्ता करेगी। इस बैठक में परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा होगी। ये बैठक दोपहर 3:30 बजे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में आयोजित होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री JP नड्डा और डॉ जितेंद्र सिंह ने कल नई दिल्ली में CJP प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की थी। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में श्री नड्डा ने कहा कि सरकार ने परीक्षा प्रणाली में सुधार संबंधी CJP की मांगों को गंभीरता और धैर्यपूर्वक सुना है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रश्न पत्र लीक और उससे जुड़े अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालतों को नामित किया है। न्यायालय ने निर्देश दिया है कि आरोप पत्र दाखिल होने के 3 महीने के भीतर इन मामलों का निपटारा किया जाए। उच्च न्यायालय ने कहा है कि ये अदालतें राज्य और केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भेजे गए संबंधित मामलों की भी सुनवाई करेगी। इनका अधिकार क्षेत्र आसपास के जिलों तक विस्तारित रहेगा। न्यायालय ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना तथा ऐसे मामलों में त्वरित न्याय उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि राज्य सरकार अब इस घोषणा को अमल में लाते हुए 4 प्रमुख शहरों में विशेष अदालतें स्थापित कर रही है। ये घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के हित में शिक्षा और रोजगार से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए की थी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कल मध्य कोलकाता में कई वामपंथी संगठनों द्वारा नीट परीक्षा पेपर लीक के विरोध में आयोजित रैली के दौरान पत्रकारों पर हुए कथित हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने आज विधानसभा में कहा कि इस घटना के संबंध में 7 मामले दर्ज किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में सख्त कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया है। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा।
0: वीडियो को अब तक 30 करोड़ 30 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। ये पहले 24 घंटों में सबसे अधिक देखा जाने वाला वीडियो है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लगाने और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए नया विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में अगले सप्ताह पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पेपर लीक और परीक्षा में गड़बड़ी के मामलों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाने और कड़ी सजा के लिए एक मसौदा विधेयक को भी मंजूरी दे दी है। संसद भवन परिसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में इसे मंजूरी दी गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि संसद के बाहर मीडिया को दिए गए बयान के साथ एआई का दुरुपयोग कर छेड़छाड़ की गई और एक डीप फेक वीडियो तैयार कर उसे गलत सूचना फैलाने के उद्देश्य से प्रसारित किया गया। सोशल मीडिया पर साझा किए गए पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस मामले में आज सुबह चाणक्यपुरी पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि फर्जी वीडियो बनाने, प्रसारित करने या उसे बढ़ावा देने में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर वो सोशल मीडिया पर लगातार नजर रख रही है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए मध्य दिल्ली के पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि फर्जी खबरें और AI द्वारा निर्मित सामग्री फैलाने वाले 400 से अधिक सोशल मीडिया हैंडल की पहचान कर उन्हें ब्लॉक दिया गया है।
3: दिल्ली पुलिस ने लोगों से अपील की कि बिना पुष्टि वाले दावों पर बिल्कुल भी भरोसा ना करें। हमारी जांच में यह भी सामने आया कि पाकिस्तान से चलाए जा रहे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स फेक कंटेंट फैला रहे हैं। दिल्ली पुलिस संबंधित एजेंसियों के एक साथ मिलकर ऐसे और अकाउंट्स की पहचान करने पर लगातार काम कर रही है। ऐसे 400 से अधिक हैंडल्स की अब तक पहचान कर ली गई है और उन्हें AI जनरेटेड कंटेंट, डीपफेक वीडियो, एडिटेड तस्वीरें और प्रदर्शन से जुड़ी अन्य झूठी सामग्री फैलाने के कारण ब्लॉक किया गया है।
0: और अभी समाचार मिला है कि नीट पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि संसद में बिताया गया हर दिन, हर घंटा, हर मिनट और हर सेकंड लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए समर्पित होना चाहिए। नई दिल्ली में आज राज्यसभा के नव निर्वाचित और मनोनीत सदस्यों के लिए आयोजित 2 दिवसीय ओरिएंटेशन और प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सदन में होने वाली बहस हमेशा किसी सार्थक निर्णय तक पहुंचनी चाहिए। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल NS राजा सुब्रमणि ने कहा है कि नई दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहे प्रदर्शनों के कारण 30,000 सेना के जवानों ने इस्तीफा दे दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी और AI से तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम 2026 के प्रतिभागियों से बातचीत करेंगे। इस अवसर पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले 400 से अधिक युवा प्रतिभागी प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने आज राज्य विधानसभा में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG की 28 लंबित रिपोर्टें पेश की हैं। इन लंबित रिपोर्ट को पेश करके पश्चिम बंगाल सरकार ने अपना किया गया वायदा पूरा किया। वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ये रिपोर्ट पेश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर नागरिकों को शुभकामनाएं दी हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज़ हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत की स्क्वैश खिलाड़ी अनाहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स फाइनल में जगह बना ली है। उन्होंने आज कनाडा के ओंटारियो में खेले गए सेमीफाइनल में मिस्र की बार्ब सामेह को 3-1 से हराया। वहीं फाइनल में अनाहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलीम से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात करीब 10:30 बजे शुरू होने की उम्मीद है। अनाहत सिंह जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं। ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने अपना पहला पदक जीत लिया है। झंडू कुमार ने पैरा भारोत्तोलन की पुरुष हैवीवेट स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। उन्होंने 190 किलोग्राम भार उठाकर तीसरा स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के बाद उन्होंने खुशी व्यक्त करते हुए अपने कोच और प्रशिक्षकों का आभार व्यक्त किया।
4: बहुत अच्छा लग रहा है, पहला मेडल है हमारा। हमारे पीछे कोच हैं राजेंद्र सिंह और हमारा जेपी सर हैं, वो भी बहुत सहयोग किए हैं। आज उन्हीं सब बदौलत हमें आज मेडल प्राप्त हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम पे आज इतना प्रैक्टिस करवाए, प्यार दिए, और भी आगे हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एथलीट झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कुमार के प्रदर्शन को शानदार बताते हुए कहा है कि ये उपलब्धि उनकी अदम्य शक्ति, अटूट दृढ़ संकल्प और वर्षों के अनुशासित प्रयासों का सशक्त उदाहरण है। क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार 4:30 बजे शुरू होगा। आकाशवाणी कार्यक्रम पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत हम करगिल युद्ध के जाबाज योद्धा और भारत के पहले ब्लेड रनर सेवानिवृत्त मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। इस बातचीत को आज शाम 5:10 से 100.1 आकाशवाणी गोल्ड पर सुना जा सकता है। श्रोता कार्यक्रम को न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम का पुनः प्रसारण कल दोपहर 12:30 से किया जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दिया। सरकार और सीजीपी के बीच परीक्षा प्रणाली में सुधार और पेपर लीक रोकने के उपायों पर आज तीसरे दौर की बातचीत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने पेपर लीक और उससे जुड़ी अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के लिए 4 विशेष फास्ट ट्रैक अदालत गठित की। असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, मरने वालों की संख्या 61 हुई। 1 लाख से अधिक लोगों ने राहत शिविरों में शरण ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर संभव सहायता का आश्वासन। वर्षा प्रभावित गुजरात में बचाव और राहत कार्य जोरों पर। 40,000 से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जम्मू कश्मीर में खराब मौसम के कारण 6 दिन तक स्थगित रहने के बाद श्री अमरनाथ यात्रा और श्री माता वैष्णो देवी यात्रा फिर से शुरू। और खेलों में स्क्वैश में भारत के अनाहत सिंह विश्व जूनियर चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। वहीं क्रिकेट में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरा मुकाबला आज हरारे में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने, तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
3: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
2: पता लाइन पार्क, प्रकाश नगर चौराहा, मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना फेवरेट शो महिला मंच, और ये है आपके शहर का अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन एफएम मुरादाबाद 89.6, और मैं हूँ आपके साथ आपकी अपनी आरजे खुशी। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो घर से जुड़ा हुआ है, महिलाओं की स्वास्थ्य और पोषण पर। दोस्तों, अक्सर देखा जाता है कि घर में सबसे पहले महिलाएं उठती हैं और सबके बाद में ही सोती हैं। सुबह बच्चों का टिफिन बनाना, घर का काम संभालना, कई महिलाएं तो ऑफिस भी जाती हैं, यानी पूरे परिवार की जिम्मेदारी उनकी कंधों पर होती है। लेकिन एक सवाल है, क्या महिलाएं अपने स्वास्थ्य का उतना ध्यान रखती हैं जितना बाकी लोग रख पाते हैं? अक्सर जवाब होता है नहीं। कई बार महिलाएं जल्दी जल्दी में खाना खा लेती हैं, कई बार अपना खाना ही छोड़ देती हैं। लेकिन हमें ये समझना होगा कि अगर महिलाएं स्वस्थ रहेंगी तभी पूरा परिवार स्वस्थ और खुश रहेगा। इसीलिए आज के इस खास शो में हम बात करेंगे कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य का ध्यान कैसे रखें और अपने खान पान में कौन कौन सी चीजें शामिल कर सकती हैं।
4: क्या बात है, बहुत जरूरी बात तुमने कही आज खुशी। सो अब हम बात करते हैं पोषण का महत्व। महिलाओं के लिए सही पोषण बहुत जरूरी होता है, लेकिन कई बार महिलाएं अपने खान पान पर ज्यादा ध्यान नहीं देती है। कई घरों में देखा जाता है कि महिलाएं पहले पूरे परिवार को खाना परोसती है और बाद में खुद खाती है। कई बार जब तक उनकी बारी आती है तब तक खाना ठंडा हो जाता है या कम बचता है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि शरीर को ताकत देने के लिए सही और संतुलित भोजन बहुत जरूरी है। महिलाओं को अपने खाने पीने में हरी सब्जियां, दाल, फल, दूध और अनाज जरूर शामिल करना चाहिए। ये चीजें शरीर को जरूरी पोषण देती है और शरीर को मजबूत बनाती है। इसी के साथ कोशिश करेंगे कि दिन में 3 बार सही समय पर खाना जरूर खाएं। खाना छोड़ना या देर से खाना खाना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है।
1: बिल्कुल रीना जी, आप सही कह रही हो। दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या जो कई महिलाओं में देखी जाती है वह है आयरन की कमी। आयरन की कमी से शरीर में खून की कमी होती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना, जल्दी थक जाना जैसी समस्याएं हो सकती हैं। कई महिलाएं कहती हैं कि उन्हें हर समय थकान महसूस होती है। इसका एक ही कारण है, शरीर में आयरन की कमी भी हो सकती है। इसीलिए खाने में ऐसी चीजें जरूर शामिल करें जिनमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, जैसे पालक, चुकंदर, अनार, गुड़, दाल और हरी पत्तीदार सब्जियां। अगर हम अपने खाने में इन चीजों को शामिल करेंगे तो शरीर को ताकत मिलेगी और कई बीमारियों से भी बचाव होगा।
4: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है तुमने खुशी। और अब हम बात करेंगे कैल्शियम का महत्व। दोस्तों, महिलाओं के लिए कैल्शियम भी बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर होने लगती है और आगे चलकर जोड़ों में दर्द या अन्य समस्याएं हो सकती है। इसीलिए महिलाओं को अपने खाने में दूध, दही, पनीर, हरी सब्जियां और सूखे मेवे का जरूर शामिल करना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध सिर्फ बच्चों के लिए जरूरी होता है, लेकिन सच यही है कि महिलाओं के लिए भी दूध और कैल्शियम बहुत जरूरी होता है।

0: साथियों, अब हम बात करने वाले हैं पानी के बारे में, पानी के महत्व के बारे में, क्योंकि आपको पता है गर्मियों का समय है और पानी हमारे लिए कितना जरूरी है। दोस्तों, कई बार महिलाएं दिन भर में काम में इतना व्यस्त हो जाती हैं कि पानी पीना ही भूल जाती हैं। लेकिन पानी हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये शरीर को तरोताजा रखता है और शरीर को गंदगी से बाहर निकालने में मदद करता है। डॉक्टर भी कहते हैं कि दिन में कम से कम 7 से 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर आप चाहें तो इसे अपने पास पानी की बोतल रख सकती हैं, ताकि आपको याद रहे और आप समय समय पर पानी पीती रहें।
1: बिल्कुल सही कहा तुमने कि पानी पीना हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन साथ साथ हम बात करेंगे आराम की जरूरत। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, सच बताऊं, औरतें आराम मानो तो उनके जिंदगी में है ही नहीं। पता नहीं वो कहाँ चला गया है, ये कोई जादू है या क्या है कि उनको थकान कभी फील ही नहीं होती है। तो श्रोताओं, स्वास्थ्य के लिए आराम और नींद भी बहुत जरूरी होती है। कई महिलाएं दिन भर काम करती हैं और रात में भी देर तक जागती रहती है, इससे शरीर को पर्याप्त आराम नहीं मिल पाता है। कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना शरीर के लिए बहुत जरूरी है। जब शरीर को सही आराम मिलता है तो मन भी खुश रहता है और शरीर भी स्वस्थ रहता है और आप कोई भी काम फिर आसानी से कर पाएंगे। कहते हैं ना, जब तक आपकी बॉडी आराम नहीं कर पाती है तब तक आप कोई भी काम करिए, आप अच्छे मन से नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका सर भारी रहेगा और पूरा दिन लगेगा कि यार क्या ही करूं क्या ना करूं।
0: सर में भी दर्द होने लगता है
1: रीना। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात कही खुशी ने। आप जैसे सुबह उठोगे, जब तक आपके अंदर थकान होगी ना, आपके सर में दर्द तुरंत बन जाता है। इसीलिए सोना, आराम करना बहुत जरूरी है हमारे जिंदगी में।
0: प्रॉपर 7-8 घंटे की नींद लीजिए, ताकि आपका बॉडी अगले दिन के लिए तैयार रहे और एनर्जेटिक रहे।
1: बिल्कुल। सो मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद। बस आप यूं ही बने रहिए आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ महिला मंच शो में। और बहुत ही शानदार ये गाना आप सभी को हमारी प्यारी वुमनिया के लिए डेडिकेट है।

0: दोस्तों, रीना जी ने अभी बात की थी आराम के बारे में और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। जी हाँ, सुबह सुबह दोस्तों देखिए, हमारा जीवन जो है ना, वो हमारा जो स्वास्थ्य है वो एक धन है और उस धन को हमें कैसे एकत्रित करना है, कैसे इकट्ठा करना है, वो हम कैसे करेंगे आपको पता है, जब हम आप अपने फिटनेस का ख्याल रखेंगे। क्योंकि कहते हैं ना, स्वास्थ्य ही असली धन है। और अब मैं बात करने वाली हूँ व्यायाम के बारे में। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम बहुत जरूरी है। अगर महिलाएं रोज 20 से 30 मिनट की सैर करें या हल्का फुल्का योग करें तो शरीर फिट रहता है। व्यायाम करने से शरीर में ऊर्जा बढ़ती है और मन भी अच्छा महसूस करता है। इसीलिए कोशिश करें कि हर रोज थोड़ा समय अपने स्वास्थ्य के लिए जरूर निकालें।
1: बिल्कुल खुशी, तुमने बहुत अच्छी बात कही है। इस भाग दौड़ की दुनिया में ना, हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख पाते। इसीलिए सभी वुमनिया से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने लिए सुबह आधा घंटा निकालिए, इतना ही काफी है आपके लिए।

0: सो अब हम बात करेंगे मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। कई बार महिलाएं इतनी जिम्मेदारियों में उलझ जाती हैं कि तनाव बढ़ने लगता है, लेकिन मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। इसीलिए थोड़ा समय अपने लिए निकालें, अपने मनपसंद गाने सुने, किताब पढ़े या दोस्तों से बात करें। ये छोटी छोटी चीजें मन को खुशी देती है। और बिल्कुल सही बात है, हम क्या ना पूरे परिवार की जिम्मेदारी में ना खुद की मनपसंद चीजें भूल ही जाते हैं।
1: अच्छा, इसीलिए आपने बात की है रीना कि भूल ही जाते हैं अपनी दुनिया, अपनी फैमिली को मतलब केयर करने में, उनको
0: संभालने में।
1: हाँ। तो ये बताओ, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ना तो अभी आपकी शादी हुई है और ना ही आपके बच्चे हैं, आप अभी अकेली हैं, तो आप अपनी मनपसंद की चीजें क्या करती हैं जब आप फ्री रहती हैं?
0: देखो, घर पे भी रहती हूँ तो मम्मी से जो बोलती हूँ वो बनाती हैं।
1: अरे वाह।
0: और मम्मी से मैं कभी पूछती हूँ ना क्या आपको क्या पसंद है, तो बोलती है जो तुम्हें पसंद है मैं वही खा लूंगी। मैंने कहा नहीं मम्मी, आज ऐसा नहीं चलेगा, आज आप बताओ कि आपको क्या पसंद है।
1: हाँ।
0: तो मेरी मम्मी को ज्यादा कुछ नहीं, बस खीर।
1: अरे वाह,
0: खीर बहुत पसंद है मेरी मम्मी को, सच में। हाँ, वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस खीर बना दो मेरे लिए। तो मैंने अपनी मम्मी के लिए ना एक बार खीर बनाया और मेरी मम्मी को सच में बहुत पसंद आया। तो मेरी मम्मी कहती है कि जब भी अगर तू खीर बनाएगी ना घर में, मतलब खीर बनाने की बारी आएगी तो तू ही बनाएगी। तो मैं अपने घर में वही बनाती हूँ, और बल्कि मम्मी ने ही सिखाया मुझे खीर बनाना भी।
1: हाँ।
0: तो देखिए, मतलब हम अपने घर में ना अपने साथ साथ मम्मी का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्हीं की वजह से हमारा परिवार आगे बढ़ता है।
1: एग्जैक्टली। और फिर रीना, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जो सबका ख्याल रखती है तो उनका भी ख्याल रखने वाला कोई चाहिए ना।
0: बिल्कुल। और आप गाइस ये पूछोगे ना अपनी मम्मी से कि आज आपकी पसंद का खाना बनाते, बताओ क्या खाना है आपको, तो उनके जो चेहरे पर खुशी होगी ना, नेक्स्ट लेवल वाली होगी खुशी। आगे हम बात करते हैं,
1: आगे हम बात करने वाले हैं अभी स्वास्थ्य के ऊपर। अब मैं बात करने वाली हूँ नियमित जांच।
0: बिल्कुल।
1: तो दोस्तों, महिलाओं को समय समय पर स्वास्थ्य जांच की भी। अच्छा रीना, आपको पता है हमारे जो घर की वुमेन होती है ना, वुमनिया जिसको आप बोल रही हैं, वो सबका ध्यान रखती हैं, लेकिन वो अपने स्वास्थ्य को लेकर अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं। लाइक जैसे छोटी छोटी कभी चक्कर आ जाते हैं, कभी वीकनेस फील होती है, तो वो जांच नहीं करवाती हैं, वो नजरअंदाज कर देती हैं कि ठीक हो जाएगा, नॉर्मल है। लेकिन ऐसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि छोटी छोटी ये जो चीजें होती हैं, जो ये बड़ी प्रॉब्लम कब बन जाए, कब बड़ा रूप ले लें, कुछ नहीं पता है।
0: बिल्कुल सही कहा तुमने, इसीलिए समय पर जांच करवाना बहुत जरूरी है। और मैं घर की सभी वुमनिया से के रिक्वेस्ट करूंगी कि कभी आप ये ना सोचे कि घर के नुस्खे से ही हम ठीक हो जाएंगे, बल्कि कुछ चीजें ऐसी होती है कि आपको डॉक्टर के पास ही जाना जरूरी होता है। सो श्रोताओं, हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले एक म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं, और उसके बाद फिर से कनेक्ट होंगे और करेंगे और बातें, और फिर हम बोलेंगे आपको बाय बाय।

वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया उनको हमसे प्यार है।

क्या बात है जी, बहुत ही प्यारा गाना एंजॉय किया आपने आरजे रीना और आरजे खुशी के साथ। सो अब हम लेंगे यहाँ से जाने की इजाजत, लेकिन जाने से पहले आज के शो का सबसे बड़ा संदेश यही है कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को नजरअंदाज ना करें। परिवार की जिम्मेदारियां निभाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। याद रखिए, अगर महिला स्वस्थ है, खुश है, तो पूरा परिवार भी खुश और स्वस्थ रहता है। इसीलिए हमें अपने स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी प्यारी वुमनिया के जो स्वास्थ्य हैं उनके ऊपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और घर में जितने भी वुमनिया हैं, बस एक दूसरे की हेल्प करें, साथ रहे, क्योंकि आप साथ रहकर आगे बढ़ोगी तो फैमिली और भी आगे जाता है। तो इसीलिए हमें कभी किसी से भेदभाव नहीं करना चाहिए, एक दूसरे के साथ मिलकर रहना चाहिए, तो परिवार और समाज दोनों स्वस्थ रहेगा। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। तो हम आप सभी के साथ फिर से कल कनेक्ट होंगे दूसरे टॉपिक के ऊपर। अभी के लिए दीजिए जाने की इजाजत। बाय बाय, टाटा, टेक केयर। यूं ही पानी पीते रहिए क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, और मौसमी फल खाते रहिए, खरबूज, तरबूजे, बहुत से ऐसे फल है, कीवी कहते हैं, छोटा पैकेट बड़ा धमाल, तो इसीलिए कीवी का सेवन करिए जिसे आयरन भरपूर मात्रा में मिलता है, और साथ ही साथ अंजीर जो पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, सो उसको भी आप जरूर खाएं। और एक और सब्जी है जो सभी फ्रूट से 10 गुना ज्यादा उसके अंदर विटामिन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, वो है मोरिंगा, जो लंबे फलियां होती हैं, और मोरिंगा का आप सूप बनाकर पीजिए, सब्जी बनाकर खाइए। सभी फलों से भी ज्यादा गुण होता है उसके अंदर, सब्जियों से ज्यादा पावर होती है उसके अंदर, सो इसको जरूर आप अपने डाइट में शामिल करें, इसको शामिल करना बहुत जरूरी है। सो चलिए गाइस, बाय।

0: KCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
0: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद से
1: संपर्क कीजिए।
0: नियम और शर्तें लागू।

0: हेलो जी, हेलो, गुड वाली आफ्टरनून है। आज जरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूँ तो 3:09 हो चुके हैं श्रोताओं। और आज का जो वेदर है बहुत ही सुहाना है। आप सभी को पता है कि आज यानी कि पता नहीं चलता ना, एकदम मौसम का, और एकदम इतनी तेज़ बारिश आ जाती है ना कि किसी का कह नहीं सकते। और ऊपर से छत पर कपड़े सूख रहे हो, अगर आपका ध्यान ना हो तो ऐसा हो सकता है कि आपके कपड़े दोबारा धोना पड़ जाए। एक्चुअली क्या हुआ, अपने हमारे पड़ोस में, जैसे मैं ऊपर गई तो मैंने देखा उनके कपड़े पूरे अच्छी तरह से भीग रहे हैं, लेकिन वो मगन हो जाते हैं। इस टाइम अगर देखिए वेदर अच्छा होता है ना तो नींद भी बहुत अच्छी आती है। और आप चाहते कि और भी अच्छी नींद आए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर है 9837896896। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको नींद नहीं आ रही हो, लेकिन आपके फेवरेट गाना अगर आप सुनते हो, सुनते सुनते आपको नींद आ जाती है, आपको खुद भी नहीं पता चलता है। और टेम्परेचर की बात करूँ तो 33 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है आज का। और बारिश तो यानी कि अगले 3-4 दिन तक बता रखी है कि कभी भी बारिश आ सकती है। और साथ ही साथ आपको पता है कि आज अमरनाथ की यात्रा भी शुरू हो चुकी है, और ये भी कहा जा रहा है कि वैष्णो देवी की यात्रा भी अब शुरू कर दी जाएगी, क्योंकि 19 तारीख से ही वहाँ पर इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। और पहाड़ों में तो वैसे भी बरसात के समय पहाड़ जो होते हैं छोटे छोटे कण, वो गिरने के बड़े डर रहते हैं। इस वजह से जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन अब अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिर से यात्राएं शुरू हो गई है। सो चलिए देखते हैं कि हमारे साथ यानी कि फरमाइश शो में अगर फर्स्ट कॉलर कौन कनेक्ट होते हैं। हेलो
1: जी मैम,
0: गुड आफ्टरनून सर।
1: गुड आफ्टरनून मैडम,
0: कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं। जहाँ भी जाते हैं आपकी याद आती है।
0: ओह थैंक यू सो मच सर। कहाँ से बात कर रहे हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: हम कमसान अंसारी पूना से बोल रहे हैं, रहने वाले बिलारी के हैं।
0: अच्छा, रहने वाले बिलारी से। वैसे पुणे में रहते हैं आप?
1: जी जी, पूना में हमारा काम चल रहा है, रेनकोट बेच रहे हैं, बारिश ज्यादा आना है पर।
0: अच्छा अच्छा, बारिश ज्यादा पुणे में बारिश हो रही है इस टाइम?
1: बारिश हो रही है।
0: अच्छा जी, चलिए मौसम का आनंद लीजिए और बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप।
1: मैं वो गाना सुना दीजिए, दो जीना के साथ गाना जो पड़े आए आराम से।
0: ओके, किसके साथ आप ये गाना सुनना चाहते हैं?
1: ये हमारे ये दोस्त हैं सारी बिलारी से ही, और एक हमारे अजीज हैं मंसूरी कॉलोनी के इरशाद अंसारी।
0: ठीक है जी, के साथ आप कोई गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी?
1: जी
0: ओके, तो चलिए श्रोताओं एक गाना सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत गाना है, यानी कि सदाबहार जो गाने होते हैं वो ऑल हमेशा बहुत ही शानदार होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। तो आपने क्या करना है, हमें कॉल करते रहना है, नंबर है 9837896896।

0: क्या बात है जी, बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है। और कहते हैं ना श्रोताओं, जो पुराने गाने होते हैं, ओल्ड इज गोल्ड वाले गाने होते हैं ना, वो बहुत ही शानदार होते हैं। आप उनको चाहे कितनी बार भी सुन लो, फिर भी आपका मन नहीं भरता है। गुड वाली आफ्टरनून है जी, आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है फरमाइश शो में। और समय की बात करूँ तो 3:18 हो चुके हैं। सो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून, नमस्कार जी।
1: ग्राम बिजनेस उस्मान टेलर बोल रही
0: हूँ। कैसे हैं सर आप?
1: बढ़िया बढ़िया, आप सुनाओ।
0: मैं भी बहुत बढ़िया। और बताइए जी, उधर का वेदर कैसा है?
1: बादल हो रहा है, मौसम बारिश का हो रहा है।
0: ओके, क्या करते हैं सर आप?
1: सिलाई कर रहा है मैडम।
0: अच्छा, सिलाई।
1: चलिए, आप सुनाओ।
0: बस हम तो आपकी फरमाइश के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर।
1: हमने कल आपका इंतजार कर देखा, आप नहीं आए, आनंद भाई आ रहे थे।
0: अच्छा, हमारे यहाँ पर हम भी आ जाएंगे, मैं और खुशी आ जाएंगे एक दिन सर, आपको पता भी नहीं लगेगा, एकदम सरप्राइज मिल जाएगा आपको।
1: हाँ, हम बोले मरीना में भी आएंगे।
0: अच्छा जी, चलिए सर बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: बंजारन का सुना दो, ये जीवन जितनी बार मिले।
0: जीवन जितनी बार भी मिले उतनी बार कम है। चलिए सर, आपको ये गाना सुनवाते हैं।
1: हमारे भाई रिजवान भाई हैं और दीपा से हैं, ये सुनना चाहते हैं।
0: ठीक है जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है जी,
1: ठीक।
0: सो चलिए श्रोताओं, बहुत ही शानदार बंजारन मूवी से ये गाना है, मोहम्मद अजीज़ जी की आवाज़ में, अलका याग्निक जी की आवाज़ में। बहुत ही खूबसूरत ये गाना, बंजारन मूवी से ये गाना सुनेंगे हम। और इस मूवी में ऋषि कपूर जी और श्रीदेवी की क्या ही बात करना भैया, उनकी अदाएँ बड़ी ही धमाल की हैं।

0: क्या बात है, बहुत ही शानदार। आपने बंजारन मूवी से गाना एंजॉय किया है कि हर बार मुझे प्यार मिले ये जीवन जितनी बार मिले, अलका याग्निक जी की आवाज में, मोहम्मद अजीज जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया। श्रोताओं, गुड वाली आफ्टरनून है, फरमाइशों में आर्जरीना के साथ आप कनेक्ट है। और समय की बात करूँ तो 3:24 हो चुके हैं और आप सभी को पता है कि नीट के यूपी जो नीट के जो एग्जाम्स है, पेपर लीक होने के वजह से छात्राओं ने यानी कि सड़कों पर जंतर मंतर जो आंदोलन चलाया है, उसी के बीच अब ये कहा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। जो कि बच्चों का आंदोलन इसी पर था कि जो हमारे शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान, उनको इस्तीफा देना पड़ेगा और उन्होंने आज फाइनली इस्तीफा दे दिया है। इसका वजह भी बताया उन्होंने, क्योंकि और वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना होगा। FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। सो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम
0: जी, कैसे हैं सर?
1: अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए, ठीक ठाक?
0: हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत बढ़िया हूँ। कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं बात कर रहा हूँ करांची, पाकिस्तान से।
0: पाकिस्तान से, ओके, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मेरा नाम तो पूछने क्या है, राशिद नाज नाम है।
0: क्या नाम है आपका?
1: राशिद नाज।
0: ओके, बताइए फिर जी कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: साहब बीबी और गुलाम फिल्म का नाम है और गाने के बोले साखी आज मुझे नींद नहीं आएगी।
0: लेकिन आज तो नींद आ जाएगी सर, बहुत अच्छा मौसम है।
1: मौसम भी अच्छा है और खुशी भी इस बात की है कि कॉल लग गई मेरी इस्तीफा से आज।
0: अच्छा, कॉल लग गई, चलिए अच्छी बात है, खुशी दुगनी हो गई सर
1: जी। और एक बात और सुनिए, मैंने 3-4 दिन पहले खुशी का प्रोग्राम सुना था तो मुझे बहुत किया था और फिर आज फिर शौक उठा के मैं बात करूँ, लेकिन इत्तेफाक से वो नहीं है आज।
0: अच्छा अच्छा, नहीं वो सुन रही है आपका शो,
1: तो उन्हें बोले जरा हाय तो करें, हेलो हाय।
0: अरे सर वो अपने घर से सुन रही है क्योंकि आज सैटरडे सैटरडे का ऑफ रहता है।
1: ओके ओके, सही, ठीक है, समझ गया मैं।
0: ओके जी, ओके, ठीक है सर, फिर मैं आपका गाना सुनवाती हूँ, ठीक है?
1: ठीक है, ओके
0: ओके। चलिए जी, बहुत ही खूबसूरत ही गाना है आशा भोसले जी की आवाज में। सो इस गाने को सुनते हैं और उसके बाद लौट कर आते हैं।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा।

0: आइए आप भी भागीदार बनिए, वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 से जुड़िए।
1: सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जारी।
2: हेलो जी, गढ़वाली आफ्टरनून है, आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है शाहिब बीबी और गुलाम मूवी से। ये मूवी यानी कि 1962 में रिलीज हुई थी और आशा भोसले जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत आपने गाना एंजॉय किया है, यानी कि सदाबहार गाने, जो आप सदाबहार गाने यानी कि कभी भी आप सुन सकते हैं, तब भी आपका मन नहीं भरेगा, बस एक ही बात कहेगा, दिल से एक ही आवाज आएगी कि बस इस गाने को मुझे सुनना ही सुनना है। और आज बता दूं तो आपको, आज 25 जुलाई है और 25 जुलाई को 4:30 बजे अगर आप मैच देखने के दीवाने हैं तो T20 मैच है यानी कि 4:30 बजे शुरू होने वाला है, तो आप ऑफकोर्स मैच देख सकते हैं। श्रोताओं देखिए, अगर मैच के दीवाने हो तो भाई मैच का भाई पता चल जाने कि आज मैच चलने वाली है तो फिर सारा काम बस छोड़ के मैच देखने लग जाते हैं, है ना। और आज का मौसम तो वैसे भी बहुत अच्छा है मुरादाबाद का, क्योंकि बारिश हो रही है झमाझम, और इस बारिश में चाय पकौड़े का आनंद लीजिए और आराम से मैच देखिए और हमारा रेडियो सुनिए और इतना सारा प्यार देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया श्रोताओं। फिलहाल अपने अगले कॉलर से बात करेंगे कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो।
3: हेलो,
2: हाँ जी सर, गुड आफ्टरनून
3: जी। मैं कच्छ गुजरात से बोल रहा हूँ, मेरा नाम है दीपा भाई रबारी
2: जी। क्या करते हैं आप?
3: जी हम खेती बाड़ी करते हैं।
2: क्या बोल रखे सर अपने खेतों में?
3: खेती में अभी बारिश हुई है तो अभी लगाएंगे, अभी क्या इतना दिन से तो बारिश नहीं हुई थी कच्छ में।
2: अच्छा अच्छा, तो आज बारिश हो गई?
3: हाँ जी, अभी 2 दिन से बारिश शुरू हुआ था, आज थोड़ा कम हुआ है, मतलब अभी बंद है बारिश।
2: ओके।
3: लेकिन दो दिन से बहुत जमाजम बारिश हो गई और फसल के अनुकूल मतलब हो गई है, अभी जो भी फसल बोनी है वो बो सकते हैं मतलब।
2: चलो जी, बहुत अच्छी बात है। तो
3: जी जी बिल्कुल, अभी थी नहीं बारिश कच्छ में, बिल्कुल बारिश नहीं था, तो अभी 2 दिन से ही हुआ है बारिश और अभी खेती बाड़ी का काम काज सब शुरू करेंगे। तो मुझे आज गाना सुनना था गोपी किशन का।
2: बताइए जी कौन सा गाना है?
3: गोपी किशन फिल्म का गाना है, उसमें जो गाना है वो बारिश के छतरी न खोल बरसात में, ऐसा गाना है पूर्णिमा और कृष्ण कुमार सानू की आवाज में।
2: जी बिल्कुल, और मुझे लगता है कि जब बारिश हो तो बारिश में भीग जाना चाहिए अच्छे से सर, है ना।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी तो बारिश का मौसम तो बहुत बढ़िया होता है ना।
2: जी बिल्कुल, प्रकृति के साथ साथ खुद को भी प्रकृति के साथ घुल मिल जाना चाहिए।
3: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, और बारिश का मौसम तो बहुत बढ़िया ही लगता है, सब प्यारा मौसम है, ठंडी और गर्मी भी सीजन ठीक है, लेकिन अभी बारिश का मौसम जो है मेरे को बहुत पसंद है, क्योंकि उसमें भीगने में और वो मौसम बहुत बढ़िया लगता है,
2: ठंडक मौसम हो जाता है ना, इसलिए सर अच्छा भी लगता है, गर्मी में सब परेशान रहते हैं।
3: गर्मी में परेशान रहते हैं और बाकी जो ये मौसम है ना, ये मेरे को मतलब मेरे पर्सनली मेरे को अच्छा लगता है, बाकी तो ठीक है किसको कैसा कौन सा मौसम अच्छा लगता है।
2: जी जी,
3: मेरे हिसाब से मेरे को ये बहुत बढ़िया लगता है।
2: चलिए सर हम आपको ये गाना सुनवाते हैं
3: जी, तो हमारे जो श्रोता मित्र है उनको भी नाम ले लेता हूँ।
2: हाँ हाँ बिल्कुल ले लीजिए।
3: तो सुनने वाले हैं सब, धीरज भाई रबारी है, रमणीक भाई जाला है और हिरेन भाई सुपेड़ा है, किरीट भाई है, ये हमारे बहुत सारे कच्छ के जो रेडियो श्रोता मित्र है वो सब हम ग्रुप में एक जुड़े रहते हैं और दूसरे अलग अलग जो आकाशवाणी है उसके जो बातचीत होती है वो एक दूसरे को हम शेयर करते हैं और बातचीत सब सुनते हैं।
2: चलिए सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी।
3: जी धन्यवाद।
2: ओके जी, शुक्रिया। चले श्रोताओं, ये बारिश हो रही है वैसे भी, और बारिश हो और बारिश के गाने ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता है, तो छतरी ना खोल बरसात में ये वाला गाना सुनेंगे कुमार शानू जी की आवाज में, बहुत ही खूबसूरत गाना।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे श्रोताओं। भीग जाने दे भीगी रातों में, छतरी न खोल बरसात में। और समय की बात करूं तो 3:42 हो चुके हैं। फरमाइशों में आप आरजे रीना के साथ कनेक्ट है और इंस्टाग्राम पर भाई साहब तहलका मचा हुआ है, यानी कि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और तभी से ही इंस्टाग्राम पर ना तहलका मचा हुआ है। जब भी आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तो जंतर मंतर के, यानी कि जो आंदोलन था आज, यानी कि आंदोलन में यही मांग थी कि बस शिक्षा मंत्री को यानी कि इस्तीफा देना पड़ेगा, यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। और इन्होंने इस्तीफा क्यों दिया है उसके बारे में पूरे विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अभी के लिए जो हमारे श्रोता है वो इंतजार कर रहे हैं क्योंकि मंडे को फिर कनेक्ट होंगे आप सभी के साथ जब ढेर सारी बातें करेंगे। और अभी के लिए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी सर, नमस्कार।
1: नमस्ते
0: सर, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए, आपके जो बैकग्राउंड में चल रहा है।
1: बहुत दिनों में बात हुई है तुम्हारी आवाज मेरी।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है। बताइए क्या नाम है सर आपका?
1: बसंदा नाम है मेरा, गांव गुरेठी से बोल रहा हूँ
0: जी। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सावन का महीना आया है, महीना
0: सावन का महीना आया है
1: जी।
0: ओके जी,
1: दिल की आग बुझा देना।
0: ठीक है जी, ये गाना हम बिल्कुल
1: बताते हैं।
0: क्या कह
1: रहे राम रूप, राम रूप है और सभी साथी हैं राम के साथ में, सही सुनने जाते हैं।
0: ठीक है जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है,
1: ठीक है, ओके,
0: ओके जी, ओके। चलिए गाना सुनते हैं। सावन का महीना आया है और सावन के महीने बिल्कुल नज़दीक है। आज की तारीख बात करूँ तो यानी कि 25 जुलाई और सिर्फ हमारे पास यानी कि 5 और है, उसके बाद सावन का महीना है वो शुरू हो जाएगा श्रोताओं। चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं, बहुत ही शानदार, सावन का महीना आया है। लेकिन ये गाना सुनने से पहले हम कुछ हमारे जो कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया उसके बाद कनेक्ट होते हैं।
2: 30 से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे ITM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद,
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक,
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई,
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी,
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
6: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
5: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
7: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: हेलो जी, गुड वाली आफ्टरनून है आर्जेरीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं श्रोताओं, तो 3:51 हो चुके हैं और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है। सावन का महीना आया है और सावन का महीना आते ही देखिए इंद्रदेव भगवान पहले से प्रकट हो गए शिव जी के, यानी कि स्वागत करने के लिए। जब भगवान शिव आएंगे तो और भी हरियाली बढ़ जाएगी। और साथ ही साथ आज देवउठनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से यानी कि भगवान जी बस 4 महीने के लिए विश्राम करेंगे। चलिए अगले कॉलर से बात करते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हेलो,
1: अरे रीना जी नमस्ते।
0: नमस्ते जी, कैसे हैं?
1: बढ़िया है रीना जी, बिक्की सागर बोल रहा हूँ वर्तमान से।
0: हाँ जी हाँ जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया मैम, वो बताइए बारिश पड़ रही है वर्तमान में अपने?
0: जी बारिश हो रही है।
1: हाँ यहाँ पर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है।
0: चलिए अच्छी बात है, बारिश होनी चाहिए, गर्मी हो रही थी ना।
1: हाँ कोई बात नहीं, अभी गर्मी हो रही है, बारिश रुक जाएगी तो भक्का हो जाएगा।
0: हाँ एक बार अच्छे से बारिश आ जाए तो फिर ठीक रहेगा ना।
1: हाँ दीना जी, अभी हम थोड़ी देर पहले सुनने थे पाकिस्तान से कॉल आई थी।
0: जी जी सर, यहाँ पे तो हर जगह से कॉल आता है
1: भैया। बहुत ही अच्छी बात है, पाकिस्तान के लोग हमारे मुर्दाबाद सुनते हैं, बहुत ही सुन के अच्छा लगा भैया। हमारे मुर्दाबाद से और हमारे इंडिया से इतने प्यार करते हैं पाकिस्तान के लोग, बहुत अच्छा लगा।
0: जी जी जी, सो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आज?
1: गाना सुनेंगे, घर से निकल आया, गद्दारों की बोतल ले आया।
0: क्या बात है।

0: लेकिन करता नहीं हूँ, लेकिन सुनने का शौक है।
1: सर देखिए, अब जरूरी नहीं है जो इंसान पीता ना वो गाने भी ना सुने।
0: हाँ रीना जी, अच्छे लगते हैं, सॉन्ग अच्छे लगते हैं।
1: बिल्कुल, गाने तो गाने हैं सर, गाना तो हम सुन ही सकते हैं ना।
0: जी रीना जी बिल्कुल, भारत का वो कहते हैं ना, मौसम के अनुसार इंसान को जीना चाहिए, मौसम के अनुसार इंसान को गाना सुनना चाहिए।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो चलिए सर, हम आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है जी?
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी मैडम जी।
1: चलिए जी, चलिए शुक्रिया। तो चलिए गाना सुन लेते हैं, बहुत ही प्यारा गाना है ये। मैं घर से निकल आया, दारू यानी कि बोतल भी उठा लाया। क्या बात है श्रोताओं, फिलहाल अभी बोतल मत उठाइए, यानी कि चाय पकौड़े का आनंद लीजिए, क्योंकि बारिश हो रही है, और जब बारिश आए ना तो बस मन में भी एक ही ख्याल आता है कि भैया चाय पकौड़े आज बने, वो भी अदरक इलायची वाली चाय मिल जाए तो मजा ही आ जाता है, सुकून जिसको बोलते हैं ना वो मिल जाती है हमें। तो चलिए फिलहाल ये गाना सुनते हैं, उसके बाद लौट कर आते हैं, फिर करते हैं ढेर सारी बातें। फिलहाल आप कॉल कर सकते हैं, क्योंकि कल संडे और संडे को आपको मौका नहीं मिल पाएगा। हमारा नंबर है 9823789689 पर कॉल करके आप अपने फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं।

0: क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया श्रोताओं। और आप गाड़ी में हैं तो बस यही कहूंगी कि गाड़ी जो आप गाड़ी में रेडियो सुन रहे हैं तो वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, तभी ये मजा आएगा। क्योंकि ये बरसात वाले गाने होते हैं और इनके मतलब जो एक क्रेज होता है कि भाई बरसात में ये वाले गाना सुनना है हमने, और जब आप वॉल्यूम हाई करेंगे तो और भी आपको मजा आएगा। और सफर कैसे कट जाएगा आपको भी नहीं पता चलेगा, 2 घंटे का सफर कब ऐसा लगेगा आपको कि बस यार अभी तो हम गाड़ी में बैठे थे और एकदम अपने मंजिल तक पहुंच गए। जब आप रेडियो सुनेंगे और वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो और मजा आएगा आपको। और आप आर्जेरीना के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में। और देखिए 2 घंटे की शुरुआत हो गई है, यानी कि करेक्ट 4 बज चुके हैं श्रोताओं। और आप अभी ऑन द वे है तो आप सभी से यही कहना चाहेंगे, देखिए बारिश आ रही है, यानी कि और कहीं कहीं पे अभी बारिश नहीं भी है, कहीं कहीं पे बारिश बहुत तेज है। सो इस टाइम आपने क्या करना है, अगर आप ऑन द वे हैं तो गाड़ी सेफली चलाना है आपने। स्कूटी तो खासकर इसमें वे में बिल्कुल नहीं चलाना चाहिए, मौसम जब खराब हो, जब बारिश हो तो, क्योंकि स्कूटी के जो पहिए होते हैं वो बहुत स्लिप खाते हैं, हमें भी नहीं पता चलता है लेकिन वो बहुत स्लिप खाते हैं। इसलिए आपको सेफ गाड़ी चलाना है और साथ ही साथ अपने दाएं बाएं जरूर अपने आसपास वालों का भी ध्यान रखना है। ज्यादा तेज रफ्तार में आपने गाड़ी नहीं चलानी है, पता चले कि आप ज्यादा तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहे हैं और जो पैदल यात्री है ई रिक्शा वाले उनको आप गीला करके जा रहे, तो इसीलिए ऐसा नहीं करना है, उनका भी हमें ख्याल रखना है। ठीक है जी, चलिए फिलहाल अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि कौन सा गाना वो सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी सर बोलिए। नमस्ते
1: मैम,
0: कैसे हैं सर आप?
1: बहुत बढ़िया।
0: क्या नाम है, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम शानू सैफी है।
0: कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मुरादाबाद करोले से।
0: ओके सर, बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं आप?
1: मैम मैं आपकी आवाज बहुत प्यारी है।
0: थैंक यू सो मच सर।
1: गाना तो नाम है मुगले आजम मूवी का,
0: मैं तेरी महफिल में।
1: जी जी जी जी,
0: ठीक है मैं आपको ये गाना सुनवा दूंगी। किसी का नाम लेना चाहते हैं आप?
1: मैम मेरे फ्रेंड है सरताज खान।
0: ठीक है, उन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है सर, ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा गाना है मैं तेरी महफिल में, गाना सुनते हैं श्रोताओं और लौट कर आते हैं आप सभी के बीच। फिलहाल कॉल करते रहिए, नंबर है 9837896896। फिलहाल तो कुछ कमर्शियल एड ब्रेक का टाइम हो गया है।
2: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।
3: जा सिमरन, जा जी ले अपनी जिंदगी।
2: अरे अंकल, सिमरन तो अपनी जिंदगी मजे में जी रही है क्योंकि वो सुनती है FM मुरादाबाद 89.6 पर बॉलीवुड के मस्त गाने। तो आप भी ट्यून इन करो FM मुरादाबाद 89.6 और कहो रेडियो बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए।
4: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
5: स्किन एलर्जी, मस से नाखून बालों की समस्या, टैटू हटाना, कार्बन लेजर फेशियल के लिए संपर्क करें डॉक्टर ऋचा गर्ग, यूनिवर्सल नेत्र एवं चर्म रोग, Z19 आशियाना 2 निकट विवेकानंद अस्पताल मुरादाबाद, 7983153386।
6: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
7: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए EKCC पोर्टल ekcc.nabard.org।
6: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
7: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
6: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद से
6: संपर्क कीजिए।
7: नियम और शर्तें लागू।

हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आज रीना के साथ। फरमाइश शो में श्रोता हो, और समय की बात करूँ तो 4:09 हो चुका है, और एक मैम का कॉल आया हमारे पास, जिन्होंने बोला कि आप ना मत ऑन एयर लीजिएगा, लेकिन हमारा गाना प्लीज प्ले कर दीजिएगा। तो चलिए, उन्हीं की पसंद पर ही हम गाना आपको सुनवाते हैं, और आप कॉल करिए। नंबर है 9823789689।

0: गुड वाली इवनिंग है फरमाइशों में आर्जरीना के साथ कनेक्टेड श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 4:00 यानी कि 15 मिनट हो चुके हैं, यानी कि दूसरे घंटे की शुरुआत हो गई है श्रोताओं। और कल संडे है, जो संडे में आपको पता ही शो नहीं आते, तो आज का जो मौका है उस मौके का आनंद लीजिए और कॉल करिए। नंबर है 9837896896 पर आप कॉल करके आप अपने फेवरेट वाला गाना सुन सकते हैं। और टेम्परेचर की बात करूं तो 33 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि हवाओं में नमी के साथ साथ हल्के हल्के फुहारे वाली बरसात जो हो रही है ना, मजा ही आ जाता है इस बरसात में। और देखिए, बहुत पकौड़ी खाते हैं बहुतों को, तो बस मन में एक ही बात आती कि बस भुट्टा खा लो यार। कहीं भी अगर किसी घर में भी भुट्टे की भुट्टा भुना जाता है या बॉईल किया जाता है, अगर खुशबू आ जाती है ना, सौंधी सी खुशबू, तो बस इंसान का मन ना उधर ही जाता है। तो इस बरसात में पकौड़ी और भुट्टे का आनंद लीजिए और कॉल करते रहिए आपका अपना रेडियो, जो सुबह से लेकर शाम तक आप सभी को एंटरटेनमेंट करता रहता है। सो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो हेलो अनुपुर भाई
0: जी, नमस्कार सर।
1: अरिजा जी नमस्कार,
0: आप कृपया अपने रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर, रेडियो का वॉल्यूम कम कर लीजिए।
1: अच्छा ठीक है। हेलो,
0: हाँ जी हाँ जी, आप बोलिए, क्या नाम है आपका?
1: मेरा नाम ओम प्रकाश, रेलवे कॉलोनी मुरादाबाद।
0: ओके बताइए जी।
1: इसी समय जो आपने कहा था, इसी समय मैंने शनिवार को भेजू बाबरा की गाना सुना था। इस बार शनिवार को मेरे फोन लगाया, आप ही के पास फोन लगाता हूँ, बोलते मेरे फोन लगता ही नहीं है।
0: अच्छा नहीं लगता है, वो इसलिए नहीं लगता ना सर। अरे सुनिए, इसलिए नहीं लगता ना क्योंकि वीक में एक ही बार कॉल करना होता है, तो फोन भी यही कहता है कि हम बस एक ही दिन कॉल करेंगे, अभी नहीं। उसको भी पता लग गया ना।
1: गाने भी तो नहीं, आप गाने भी तो निकाल लेते, फट फट के सर गाने नहीं निकलता। अभी तो आगे दो बार तो और आगे खड़े हो सकते हो, दूसरा गाना छाट कर रखूंगा आपकी पसंद का।
0: सर सबको मिल जाता है, कोई ऐसी बात नहीं कि गाना नहीं मिलता, मिल जाता है। आप बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: वो ससुराल का।
0: कौन सा?
1: ससुराल क्या मिल गया, क्या हो गया मुझे, मेरे बालों में क्या हो गया।
0: ओके, मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर जी की आवाज में।
1: लता मंगेशकर आवाज में, राजेंद्र कुमार कस में हीरो।
0: चलिए जी, इन्हीं के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है?
1: धन्यवाद।
0: ओके जी, शुक्रिया। चलिए फिलहाल गाना सुनते हैं, क्या मिल गया क्या खो गया, मोहम्मद रफी की आवाज में। ओल्ड इज गोल्ड गाना है श्रोता, उसके बाद लौट कर आते हैं। आप सभी को सुनते रहिए और कॉल करते रहिए।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077
3: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी
4: अरे चिंता मत करो राधा अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना
5: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त
4: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा

0: जी हेलो, गुड वाली इवनिंग है आर्जरीना के साथ फरमाइश शो में श्रोताओं। और समय की बात करूं तो 4:25 हो चुके हैं और आप आर्जरीना के साथ कनेक्ट है फरमाइश शो में। तो आइए अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो, नमस्कार मैम।
0: नमस्कार जी, कैसे हैं? कैसे हैं आप?
1: मैम ठीक है, आप बताइए मैम, आप कैसी हो?
0: मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। क्या नाम है आपका?
1: संजय कुमार, सियाली खद्दर, जिला मोरदाबाद से बात कर रहा
0: हूँ। ओके जी, ओके। क्या करते हैं आप?
1: मैं पढ़ाई करता हूँ।
0: ओके, पढ़ाई करते हैं आप, कॉलेज या फिर स्कूल?
1: नहीं मैम, कॉलेज।
0: अच्छा, कॉलेज में आप। तो बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: मैम सॉन्ग सुनना, आज बरसात के ऊपर हुई है रात मंगल, जल रहे हैं हम।
0: ओके, किसी का नाम लेना चाहेंगे आप?
1: मैम हमारे साथ मोहित कुमार, ऋषभ कुमार, विजय कुमार।
0: बस बस, दो दो दोस्त के नाम लेने होते हैं सर।
1: हाँ मैम, और आपके साथ जितने सुबह सुनने वाले उनके साथ।
0: चलिए, सभी के साथ आपको गाना सुनवाते हैं, ठीक है? ओके, वेलकम। चलिए गाना सुनते हैं भाई, बरसात का मौसम है। और ये जो गाना है कुमार सानू जी की आवाज में, कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज में गाना है ये। और बरसात के मौसम हो और उसमें गाने बरसात के ना हो तो मजा ही नहीं आता है ना। चलिए

0: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ फरमाइश शो में श्रोताओं। और समय की बात करूँ तो 4:32 हो चुके हैं और आरजे रीना के साथ आप कनेक्ट है और फरमाइश शो सुन रहे हैं जहाँ आप सभी के फरमाइश वाले गाने प्ले किए जाते हैं। सो आप सभी से यही कहना चाहेंगे, देखिए आज का जो मौसम है वो बहुत ही औसम है, तो इस मौसम में कॉल करिए और अपना फेवरेट वाला गाना सुनिए। नंबर है 9823789689। तो चलिए फिलहाल अपने अगले कॉलर से बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी सर, नमस्ते।
1: नमस्ते सर, मैम
0: कैसे हैं आप?
1: हेलो फरमाइश।
0: हाँ जी
1: मैं ठीक हूँ, आप सुनिए अपने सभी लोग कैसे हैं?
0: मैं बहुत बढ़िया हूँ, यहाँ सब बहुत बढ़िया हैं, आप बताइए।
1: बस मैं अपना एड्रेस बोल दूँ मैं?
0: अरे बिल्कुल, अपना एड्रेस बताइए।
1: मैं जिला मुरादाबाद ग्राम बड़ी मस्जिद के पास से राजा हुसैन बोल रहा हूँ मैं।
0: ओके जी, देखिए सर आपने एड्रेस बताया, पता चले कि हम सभी आपके घर आ जाए।
1: आइए, हमारा दरवाजा खुला हुआ आपके लिए।
0: चलिए जी, बहुत अच्छी बात है सर। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? आज क्या कहना जरूरी है सर?
1: गाने के बोल हैं।
0: अच्छा
1: है। प्यार हुआ है।
0: अच्छा अच्छा,
1: तो नाम बोलूं मैम?
0: हाँ हाँ, दो नाम बोलिएगा सिर्फ।
1: दो नाम?
0: हाँ दो ही नाम बोलने से।
1: जी हाँ, दो ही नाम है, मकसूद हुसैन और हाजी गफ्फर खान रामपुर, दोस्त हैं आप और हम।
0: चलिए।

0: जी, सभी के साथ आपको ये गाना सुनवाते हैं, ठीक है सर?
1: थैंक यू मैम।
0: ओके, तो चलिए श्रोताओं गाना सुनते हैं। आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ अंदाज मूवी से ये गाना सुनेंगे। उदित नारायण जी की आवाज में बहुत ही खूबसूरत ये गाना।

है। क्या बात है जी, बहुत ही शानदार आप गाना एंजॉय कर रहे हैं और अलका याग्निक और उदित नारायण जी की आवाज़ में आपने खूबसूरत गाना एंजॉय किया है। और आप सुन रहे हैं यानी कि फरमाइश हो आरजे रीना के साथ। समय की बात करूँ तो 4:38 हो चुके हैं। चलिए भैया सर से बात करें, क्या उन्होंने फ़ोन ही काट दिया। हेलो हेलो हेलो करते करते देखिए श्रोताओं, अगर आप कॉल करते हैं तो थोड़ा सा पेशेंस जरूर रखिए। आप कॉल कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बीच में ही कॉल कट जाए। देखिए अगर आप कॉल कर रहे हैं तो गाना भी सुनकर जाइए, इतना तो पेशेंस लेवल आपको रखना पड़ेगा। जब तक गाना ख़त्म नहीं होता है तब तक हम आपको लाइव ही नहीं ले सकते हैं, इसीलिए थोड़ा पेशेंस बना कर रखिए। फिलहाल मैं अपनी पसंद से गाना सुनवाती हूँ, आप सभी को सुनिए और इन्जॉय करिए।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल, जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
0: यार सोना कितना महंगा हो गया है, काश मुरादाबाद में कहीं सस्ता सोना मिल पाता।
2: अरे सस्ता सोना चाहिए तो उत्सव ज्वेलर्स आइए।
0: उत्सव ज्वेलर्स लाए हैं मुरादाबाद के अंदर सबसे सस्ता सोना। पुराना सोना लाओ, नया सोना लेकर जाओ, मात्र 5% मेकिंग चार्जेस पर। 18 कैरेट सोना 82% विद मेकिंग चार्जेस, 22 कैरेट सोना 99% विद मेकिंग चार्जेस पर। किसी भी दुकान का पुराना सोना मशीनों द्वारा जांच होने पर 100% वापसी। 18 कैरेट हो या 22 कैरेट, दोनों पर मिलेगा 7% मेकिंग चार्जेस। उत्सव ज्वेलर्स, आभूषण एक, खुशियां अनेक। आज ही विजिट करें प्रकाश नगर चौराहा लाइन पार मुरादाबाद। कॉल करें 7055070552।
3: हेलो जी, गुड वाली इवनिंग है। फरमाइशों में आर्जे रीना के साथ आप कनेक्ट है श्रोताओं, और समय की बात करूं तो 4:48 हो चुके हैं। और अब देखिए, यानी कि देखते हैं कौन से कॉलर हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट बचते हैं श्रोताओं। फिलहाल बिना किसी देरी के कॉलर से बात करते हैं। हेलो
4: जी, हेलो फरमाइश।
3: हाँ जी सर, बोलिए। नमस्ते
4: जी, मैं गाना सुनना चाहता हूँ।
3: आप अपना नाम तो बताइए सर, कहाँ से बोल रहे हैं ये तो बताइए।
4: मैं मुरादाबाद से बोल रहा हूँ, मकबूलाबाद मेरा नाम है।
3: हाँ जी, गाना बताइए।
4: मोहब्बत जो में जिसके हाथ, जवानी पाँव पर दिन रात, तो उसे हाय वो किसकी बात, मोहम्मद रफी की आवाज में है ये गाना।
3: ओके, किसी का नाम लेना चाहेंगे?
4: नहीं, किसी का नाम नहीं।
3: ठीक है जी, चलिए हम आपको ये गाना सुनवाते हैं। ठीक है। मोहम्मद रफी की आवाज में।

0: तो अब बस देखना ये है श्रोताओं कि हमारे साथ लास्ट लकी कॉलर कौन कनेक्ट होते हैं, क्योंकि समय यानी कि 4:50 हो चुके
1: हैं। झुकाना ही पड़ा कैसा कहते

मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान, मोहब्बत

0: जी गुड वाली इवनिंग है आरजे रीना के साथ एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और समय की बात करूं श्रोताओं, फरमाइश शो में तो समय हो चुका है 4:55 और अब मेरा यहाँ से बाय-बाय बोलने का टाइम आ गया है, क्योंकि हम मिलेंगे मंडे इवनिंग शो में, यानी कि इवनिंग मस्ती शो में करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए हमारे साथ जो लास्ट लकी कॉलर है कनेक्ट, चलिए उनसे बात करते हैं कि वो कौन सा गाना सुनना चाहते हैं। हेलो
1: हेलो हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्कार नमस्कार सर, कैसे हैं आप?
1: बस बढ़िया सर।
0: क्या करते हैं आप, क्या नाम है आपका?
1: मैं श्यामधर बोल रहा हूँ, बंगला गाँव से।
0: ओके जी, क्या करते हैं आप?
1: इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं।
0: अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक का काम करते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। बताइए कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
1: सन्यासी फिल्म का गाना सुनना चाहता हूँ, बाल ब्रह्मचारी। मैं हूँ कन्याकुमारी।
0: ओके, तो किसी का नाम लेना चाहेंगे? आप लास्ट कॉलर बने हैं सर।
1: बस सभी सभी के साथ सुनने वालों के।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है कि सभी के साथ आप ये गाना सुनना चाहते हैं। ठीक है सर, अपना ध्यान रखिए। नमस्कार जी, चलिए श्रोताओं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर, मिलेंगे मंडे इवनिंग शो में, करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए और ये गाना सुनिए, सुन बाल ब्रह्मचारी।

0: कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, इसलिए उन्होंने प्रधानमंत्री को इस्तीफा सौंपने का निर्णय लिया है। श्री प्रधान ने कहा कि नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं के बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दी और परीक्षा रद्द कर दी। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगले वर्ष से इस परीक्षा को कंप्यूटर आधारित परीक्षा मोड में आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस बीच सरकार और कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के प्रतिनिधिमंडल के बीच नई दिल्ली में तीसरे दौर की वार्ता जारी है। इसमें परीक्षा प्रणाली में सुधार और प्रश्न पत्र लीक की घटनाओं को रोकने के उपायों पर प्रतिनिधिमंडल की मांगों पर चर्चा हो रही है। भाजपा ने संसद में नीट पेपर लीक मुद्दे पर चर्चा से कांग्रेस के पीछे हटने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने ये बात कही।
1: कांग्रेस पार्टी से स्पष्ट रूप से पूछना चाहता हूं कि सोमवार को संसद के वर्तमान सत्र का दूसरा सप्ताह प्रारंभ होगा, आप इस समस्या पर और आपके द्वारा जो भी विषय रखे गए, जब सरकार संसद में चर्चा करने के लिए तैयार है तो आप सोमवार से संसद की चर्चा में भाग लेंगे अथवा पुनः चर्चा से भागेंगे।
0: उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोगों का एकमात्र उद्देश्य राजनीतिक लाभ उठाना है, न कि छात्रों की चिंताओं का समाधान करना। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का 10 साल का सफर सार्वजनिक जीवन और विद्यार्थी कल्याण के प्रति आजीवन समर्पण का प्रमाण है। उन्होंने श्री धर्मेंद्र प्रधान को उनके अथक सेवा, सुधारों के प्रति प्रतिबद्धता और मजबूत देश के निर्माण में योगदान के लिए धन्यवाद दिया। श्री रिजिजू ने देश के शिक्षा तंत्र को सुदृढ़ करने और लाखों युवा विद्यार्थियों को हर निर्णय के केंद्र में रखने के लिए श्री प्रधान के ईमानदार प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पुलिस ने लोगों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर जाने से बचने की सलाह दी है, क्योंकि पूरे जिले में भारी भीड़ और यातायात जाम देखा जा रहा है। पुलिस ने यात्रियों को निर्देश दिया है कि वे देरी से बचने और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिए हैं। प्राचीन बौद्ध स्थल सारनाथ को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसे भारत की सांस्कृतिक विरासत के लिए ऐतिहासिक क्षण बताया है। श्री शेखावत ने कहा कि सारनाथ शांति, ज्ञान और करुणा का शाश्वत प्रतीक है। कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने नई दिल्ली में सिंगापुर के कानून मंत्री एडविन टोंग एससी के साथ द्विपक्षीय बैठक की। श्री मेघवाल ने दोनों देशों के कानूनी सहयोग को मजबूत करने, वैकल्पिक विवाद समाधान को बढ़ावा देने और संस्थागत तथा न्यायिक सहयोग को बढ़ाने पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रोमानिया में भारतीय समुदाय के योगदान की सराहना करते हुए उन्हें दोनों देशों के बीच बढ़ती साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ बताया। बुखारेस्ट में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय अपनी मातृभूमि से गहराई से जुड़े हुए हैं और अपनी उपलब्धियों तथा समर्पण से हर भारतीय को गौरवान्वित करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के पूरे नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। हरारे में भारत और जिम्बाब्वे के बीच दूसरे T20 क्रिकेट मैच में ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 7 ओवर में 2 विकेट पर 61 रन बना लिए हैं। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। अनहत सिंह ने इतिहास रचते हुए विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स के फाइनल में जगह बना ली है। फाइनल में अनहत का सामना आज मिस्र की रुकैया सलेम से होगा। अनहत जोशना चिनप्पा के बाद विश्व जूनियर स्कॉश चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली दूसरी भारतीय खिलाड़ी बन गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी?
3: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे। हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना?
4: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
3: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
4: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
2: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
4: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
2: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
4: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
2: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: अब किसान भाइयों के अच्छे दिन आ गए, क्योंकि नाबार्ड के सौजन्य से किसान क्रेडिट कार्ड लेना हुआ और भी आसान।
1: लोन के लिए अब बैंक जाने की जरूरत नहीं, सब कुछ होगा डिजिटल। जाइए ekcc पोर्टल ekcc.nabard

0: aadhar.org।
1: आधार के जरिए रजिस्टर कीजिए और अपना बैंक चुनिए, फिर अपनी जमीन की जानकारी भरिए और सरकारी योजना के तहत KCC पर उच्च सीमा तक सस्ता ऋण पाइए।
0: लोन समय पर चुकता करने पर न्यूनतम ब्याज दर का लाभ भी उपलब्ध है।
1: अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी जिला सहकारी बैंक
2: मुरादाबाद
1: से संपर्क कीजिए।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: हेलो जी, कैसे हालचाल है? यू आर लिस्निंग टू एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का सामुदायिक रेडियो सुन रहे हैं आप। और आज का जो ये टॉपिक है बहुत ही स्पेशल है। आई नो दैट आप इसको हर हफ्ते सुनते हैं और कुछ ना कुछ स्पेशल टॉक्स होते हैं इसमें। और हमारे साथ स्पेशल टॉक करने के लिए एक खास एक्सपर्ट हमारे साथ होते हैं, खास मेहमान होते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम में मैं नहीं होता हूं भाई। ये चेयर जो है बेसिकली रीना संभाल रही होती है, तो वो अभी भी मेरे साथ स्टूडियो में ही है। उसने मेरे को पकड़ के बाहर से अंदर बैठा लिया कि बेटा तू भी आ जा। सो हेलो, कैसे हो आप?
3: मैं बहुत बढ़िया हूँ।
2: आपके शो का नाम क्या है? लीगल टॉक्स आपने शायद रखा हुआ है ना?
3: हाँ हाँ,
2: लीगल टॉक्स में कौन होते हैं हमारे एक्सपर्ट?
3: एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी हमारे साथ कनेक्ट होते हैं हर हफ्ते
2: जी,
3: जहां हम ढेर सारी बातें करते हैं
2: और आज मैं वो बातें सुनने आया हूं। तो सबसे पहले तो हम अपने एडवोकेट साहब का ही वेलकम करेंगे अपने स्टूडियो में। सर बहुत बहुत स्वागत है, कैसे हैं आप?
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हर बार हर हफ्ते आप एक प्रोग्राम रखते हैं
2: जिसका
4: नाम लीगल टॉक्स है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये जो प्रोग्राम है आपका बहुत अवेयरनेस का प्रोग्राम है।
2: चलिए बहुत मजे की बात है। और ये अवेयरनेस के प्रोग्राम में एक आपको बस अकेली रीना मिलती है, लेकिन आज हम दो लोग मिल गए आपको।
4: हाँ तो अच्छा है ना, दोनों के साथ आप भी अवेयर हो गए थोड़ा थोड़ा।
2: जरूरी है सर, और मुझे लगता है कि आज की जनरेशन को अवेयर होना बहुत जरूरी है।
4: यूथ तो हमारे देश का आईना है।
2: एब्सोल्युटली, बहुत अच्छा कह रहे हैं सर आप। तो सर बताइए थोड़ा सा जरा अपने बारे में हमारी जनता को। आप जो है काफी समय से कर रहे हैं ये लीगल टॉक्स, कैसा लग रहा है आप?
4: देखिए आपका प्रोग्राम ही ऐसा है कि लीगल टॉक्स, तो लीगल टॉक्स का मतलब ये कि हम जो कानूनी बातें हैं उसकी बारीकियां उसको समझ पाए। और हमारे दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में कहीं ना कहीं कुछ रोज ऐसा कुछ घटित होता है जो कहीं ना कहीं लीगल मैटर से जुड़ा हुआ होता है।
2: करेक्ट करेक्ट।
4: और अगर ये जानकारी आपके लिसनर्स तक पहुंच रही है, वो लोग अवेयर हो रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज ये एजुकेशन सीरीज में मानता हूँ इसको।
2: बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया।
4: और लॉ के स्टूडेंट्स भी इसको सुनते हैं और जो है घर में माताएं बहनें महिलाएं सीनियर सिटीजन भी सुनते हैं, तो उनको अपने अधिकारों के बारे में पता चलता है।
2: बहुत जरूरी है।
4: और हमें अगर अपना लीगल राइट पता हो, हमारे फंडामेंटल राइट्स पता हो, तो निश्चित तौर पर हम अवेयर होते हैं और हमारी एजुकेशन भी बढ़ती है और हम किसी भी क्राइम के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, उसको क्राइम को रोक सकते हैं,
2: रोक सकते हैं, उस पर एक्शन ले सकते हैं। बट उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक राइट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए ना सर?
4: बिल्कुल, क्योंकि टाइम पे लिया हुआ ही एक्शन आपको बचा सकता है।
2: एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा है देखिए अनिरुद्ध जी ने। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको सही इन्फॉर्मेशन भी पता होनी चाहिए और वही सही इन्फॉर्मेशन लीगल टॉक्स के थ्रू आपको हर वीक दी जाती है और जिसमें हमारे साथ एडवोकेट साहब होते हैं। और यहाँ पर आपको लॉ भी पढ़ाया जा सकता है शायद, अगर मैं कहूँ तो। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है सर, कुछ ना कुछ तो आप ऐसा देखे जाते होंगे हमारे लिसनर्स को।
4: ये टॉपिक इतना डीप मैं कि इसमें कोई भी कहे कि मैं इसमें परफेक्ट हूँ तो नोबडी इज परफेक्ट।
2: आई थिंक
4: रोज नए नए सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, तो हमको भी रेगुलर बेसिस पे एक स्टूडेंट की तरह, एक न्यू कमर की तरह उसको हमें स्टडी करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है।
2: क्या बात है।
4: तो एडवोकेट्स की जो लाइफ होती है ना, वो स्टूडेंट लाइफ ही मान के चलिए,
2: मतलब हर दिन एक नई लर्निंग का पीच है।
4: पढ़ाई कभी खत्म नहीं होती,
2: खत्म नहीं होती है, हर दिन कुछ ना कुछ नया और इंटरेस्टिंग सीखना है।
4: वे
2: अरे वाह, क्या बात है। लेकिन सर मजा उसी में है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब तक आपको कुछ नया नहीं मिलेगा तब तक आपको मजा नहीं आएगा।
4: बिल्कुल बिल्कुल,
2: है ना। जब आपको नया मिलता है तो वो कुछ नए चैलेंजेस होते हैं, तो उनके साथ जब आप काम करते हो, आगे बढ़ते हो, तो और मजा आता है।
4: देखिए फील्ड ऐसा है कि आपको खुद ही इंटरेस्टिंग नई नई चीजें पता चलेंगी। अब जैसे अभी कोई नया जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का भी, अभी बहुत फेमस आप देख रहे होंगे आजकल सोशल मीडिया पे भी ट्रेंड हो रहा है, एक मॉडल त्रिशा करके,
2: है ना,
4: तो उसका भी एक सुसाइड का केस या मर्डर का केस जो भी है वो अभी इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं कहीं ना कहीं हमारा, अगर हम उसको डीप में जाएंगे ना, तो लीगल चीज से ही वो जुड़ा होता है। तो हमको अगर चीजें पता होंगी तो हम भी उस चीज को जो हम फेस करते हैं लाइफ में, तो हम चीजों से बच सकते हैं। और आजकल के डेज में मैंने ये देखा है कि मोस्टली ये प्रॉब्लम्स हर
2: हर किसी बंदे को हर दूसरे बंदे के सामने आ रही है, कहीं फैमिली में चल रही है,
4: देख रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं उन चीजों से अगर हम अवेयर रहेंगे तो हम टाइमली प्रिकॉशन ले सकते हैं।
2: बिल्कुल सही कहा आपने सर, और हम भी इस बात से अग्री करते हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, हर घंटे नई चीजें देखने को मिलती है, सुनने को मिलती है, और अगर हमें हमारे राइट्स पता होंगे, सही इन्फॉर्मेशन पता होगी, तो हम अपने लिए भी एक्शन ले पाएंगे। बहुत ही अच्छा। तो रीना आज क्या टॉपिक है? गुमसुम होकर मत बैठ, मैं यहाँ पे आया उसका मतलब ये नहीं कि मेरी जिम्मेदारी है, ये तेरी सीट है, तू ही संभालेगी इसे, मैं तो सीखने आया हूँ।
3: आज हमारा टॉपिक है यानी कि PIL, पब्लिक इंटरेस्टेड लिटिगेशन,
4: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
3: ओके, लिटिगेशन,
2: ठीक है। कोई नहीं सर, आप इंट्रोड्यूस कर दीजिए। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इस टॉपिक को मैं चाहूंगा कि अरोड़ा साहब आप बताएं, आप बताएंगे तो लिसनर को ज्यादा समझ आएगी।
4: देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो PIL, PIL की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन।
2: ओके,
4: ठीक है। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट, तो यानी अगर पब्लिक के इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई लिटिगेशन है, कोई चीज है, तो उसको हम पब्लिक की आवाज बन के कोर्ट में उठा सकते हैं।
2: करेक्ट। अच्छा, जब कोई लोक अदालत होती है तो उसमें भी इस चीज का जिक्र होता है?
4: नहीं, लोक अदालत अलग मैटर होता है, PIL अलग।
2: ये जो आपने लास्ट वाला बोला है ना, ये हमने कहीं पर तो सुना है सर।
4: PIL
2: का लास्ट वाला जो है, LL का जो फुल फॉर्म आपने अभी बताया,
4: पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन,
2: लिटिगेशन के बारे में बात करें।
4: देखिए, जो लिटिगेशन होती है, लिटिगेशन इज ए काइंड ऑफ, एक जो आप वहाँ पे जो अपना मैटर जो आप उठाते हो, जो कंटेंट होता है,
2: ठीक है,
4: कोई किसी चीज को लेके जो आप कोर्ट में जाते हो उसको लिटिगेशन बोलते हैं।
2: ओके, मतलब तो ये कोर्ट में ही, मतलब मोस्टली
4: लिटिगेशन वर्ड जो है वो कोर्ट से रिलेटेड ही होता है। और जो आप लोक अदालत की बात कर रहे हैं, लोक अदालत जो होती है वो एक कोर्ट के द्वारा निर्धारित की गई, हमारी जो जुडिशरी के द्वारा निर्धारित की गई एक लोक अदालत होती है, उसमें मोस्टली केसेस मीडिएशन होती है, रिकनसाइल कराने के लिए होती है, कि दोनों पार्टीज जो है, जिन दोनों के बीच में डिस्प्यूट है,
2: करेक्ट,
4: उसको बैठ के
2: समझौता किया जाए, बेसिकली
4: म्यूचुअली उसको टेबल पे बैठ के उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसको जो है आगे कोई भी अगर उसमें कोई कंट्रोवर्सी है कुछ है तो उसको कंपनसेट और डैमेजेस के बिहाफ पे उसको सॉर्ट आउट करके उसको खत्म किया जाए,
2: मतलब दोनों पार्टी के बीच।
4: क्योंकि हमारी जो इंडिया है, हमारी इंडिया की जुडिशरी में अगर आप देखेंगे तो इतने कई सालों से, 20-30 सालों से लोग लीगल अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, बैटल लड़ाई लड़ रहे हैं, आप चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, चाहे हाई कोर्ट चले जाइए, चाहे लोअर कोर्ट, तो मोस्टली लोगों की जो लाइफ है वो कोर्ट में ही चली जाती है। तो उसको ही इजी वे में करने के लिए एक लोक अदालत का जो ऑर्गेनाइज किया गया है कि लोग अपने छोटे छोटे विवादों को आपसी सहमति से बैठ के उसे सुलटाएं।
2: थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग दिस इन्फॉर्मेशन अरोड़ा साहब, बहुत अच्छा लगा, हमें भी नई इन्फॉर्मेशन मिली। वेल, बैक टू पॉइंट, अब हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक है PIL के बारे में हम बात कर रहे हैं ना
3: जी। हाँ,
2: यस। तो थोड़ा सा इसके बारे में अभी आपने बता ही दिया पर्टिकुलर ये क्या चीज है, तो इसके बारे में थोड़ा सा और अगर हम डिटेल में जानना चाहें, हमारे लिसनर्स को थोड़ा सा अगर आप और एक्सप्लेन करना चाहें बेसिकली इसके बारे में, और ये किस तरीके से वर्क करता है।
4: देखिए, आपने जैसे आजकल न्यूज में भी और न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो या सोशल मीडिया पे, तो आपने बहुत वर्ड सुना होगा कि भाई उन्होंने PIL दाखिल करी है।
2: हाँ, ठीक है,
4: सुनी होगी ना?
2: बिल्कुल सुना है सर, बिल्कुल।
4: तो PIL क्या होता है? एक जनहित याचिका होती है, पब्लिक इंटरेस्ट, जैसे नाम से आपको पता चला है, पब्लिक जनहित,
2: करेक्ट
4: ना, इंटरेस्ट, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं, और लिटिगेशन यानी याचिका होती है।
2: राइट,
4: ये याचिका जो होती है ये व्यक्ति विशेष के निजी हित के लिए नहीं, बल्कि मतलब अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है तो मैं अपने लिए फाइल नहीं कर सकता,
2: ठीक है,
4: लेकिन एक ग्रुप ऑफ सोसाइटी, अगर पब्लिक को प्रॉब्लम है तो उसके बिहाफ पे मैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन समाज के बड़े वर्ग के हित में दाखिल की जाती है। ये किन मामलों में दाखिल कर की ये वो बता देता हूँ मैं। जैसे कोई अवैध कब्जा कर लेता है, या सार्वजनिक भूमि पर कोई अतिक्रमण कर लेता है, जैसे सपोज करिए आप रह रहे हैं, एक सार्वजनिक भूमि है और उसको कोई कब्जा लेता है, तो आप उस केस में आप PIL दाखिल कर सकते हैं, या कोई एनवायरमेंट को हार्म कर रहा है।
2: ओके,
4: ठीक है,
2: अच्छा,
4: क्योंकि आपने देखा होगा भी मोस्टली लोग क्या करते हैं, अनऑथराइज अपनी फैक्ट्रीज कर लेते हैं, ठीक है, एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड करते हैं, उसके आसपास का जो सराउंडिंग्स खराब होते हैं, तो इसको लेके भी आप PIL दाखिल कर सकते हैं। लेकिन PIL में जो पब्लिक इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए वो आपका निजी पर्सनल मैटर नहीं होना चाहिए।
2: करेक्ट, मतलब वो पब्लिक उसमें ऑलरेडी हाईलाइट हो रहा है ना,
4: बिल्कुल,
2: तो पब्लिक की हित की बात,
4: पब्लिक की बात होनी चाहिए।
2: करेक्ट,
4: अब जैसे कोई सड़क है, नाली है, सीवर है,
2: दिस इज अ पब्लिक प्लेस,
4: पब्लिक प्लेस, पब्लिक की बात हो रही है, पेयजल, पानी की समस्या है, सार्वजनिक समस्याओं की, कोई
2: ट्रैफिक की समस्या भी इंक्लूड कर सकते हो,
4: ट्रैफिक की भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रैफिक भी
2: आप पब्लिक के लिए ही,
4: पब्लिक के लिए होनी चाहिए जी, सरकारी अधिकारी कोई लापरवाही कर रहे हैं,
2: राइट,
4: वो कोई चीज को लेके पब्लिक का कोई काम है और पूरे समूह की ग्रुप की बात हो रही है पब्लिक के लिए, उसको नहीं कर रहे हैं तो आप उसके खिलाफ भी आप पीआईएल डाल सकते हैं।
2: बेसिकली मॉडल ऑफ पॉइंट की कुल मिला के पब्लिकली ही चीजें चल रही
4: है, बात होनी चाहिए। भ्रष्टाचार कोई करप्शन है किसी मुद्दे को लेके सार्वजनिक।
2: रीना ने एक क्वेश्चन मेरी तरफ सरका दिया है हल्के से कि आप जरा सर से आप पूछिए, तो मैं ही पूछ लेता हूँ सर। पहला क्वेश्चन इसमें मतलब इसने लिखा है कि जनहित याचिका पीआईएल क्या है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बेसिकली
4: मैं वही बता रहा हूँ, पीआईएल जो याचिका होती है पब्लिक के इंटरेस्ट की बात ही।
2: अच्छा, जो अभी आपने हमें एक्सप्लेन किया,
4: जो हमें पब्लिक के इंटरेस्ट की ही बात वहाँ पे करनी होती है। पब्लिक का इंटरेस्ट कहीं से अगर ब्रीच हो रहा होता है या उसका पब्लिक का हैरेसमेंट होता हो रहा होता है तो उसको लेके ही हम
2: आवाज उठाना,
4: उसको लेके ही हम पीआईएल दाखिल कर सकते हैं, इंडिविजुअल के तौर पे नहीं कर सकते। अगर हमें इंडिविजुअल के तौर पे कोई रिलीफ चाहिए होता है तो उसके लिए और एप्लीकेशन।
3: अच्छा सर, इसमें यानी कि कौन कौन सी या संस्थाएं जनहित याचिका दायर किया जा सकता है?
4: देखिए, ये व्यक्ति कोई इंडिविजुअल भी दाखिल कर सकता है लेकिन पब्लिक के किसी ग्रुप के बिहाफ पे, कि इस पर्टिकुलर पब्लिक को इस एरिया में सराउंडिंग में ये प्रॉब्लम है जिससे पूरा एक समूह पूरा ग्रुप इफेक्टेड है,
2: ठीक है,
4: तो उसको लेके ही हम दाखिल कर सकते हैं इसको। आप निजी कोई पर्सनल आपका कोई अगर इसमें हित है कोई सेल्फ है तो उसको लेके आप पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते, उसके लिए और बाकी और रिलीफ जो कोर्ट ने आपको दी हुई है, जो और लिटिगेशन हैं और जो एप्लीकेशन है वो आप किसी और कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं।
2: क्या बात है, लीगल टॉक्स आप सुन रहे हैं एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ, और साथ में रीना और मैं भी हैं। ये चल रहा है आपके शहर के अपने सामुदायिक रेडियो एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम पर। सर अच्छा ये बताइए, पीआईएल और सामान्य याचिका में क्या अंतर है, थोड़ा सा इसके बारे में हम दोनों जानना चाहते हैं।
4: सामान्य याचिका तो कोई भी दाखिल कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, रीना भी कर सकती है, मैं भी कर सकता हूं,
2: ठीक है,
4: वो हम इंडिविजुअल अपने लिए भी कर सकते हैं,
2: ठीक है,
4: लेकिन पीआईएल सिर्फ पब्लिक की गुड फेथ के लिए, पब्लिक के भले के लिए या कोई पब्लिक से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा है उसके लिए हम कर सकते हैं। यदि मामला आपके व्यक्तिगत अधिकार या निजी विवाद से संबंधित है तो आप समानता पीआईएल नहीं बल्कि नियमित रिट याचिका या अन्य उपयुक्त कार्रवाई कर सकते हैं।
3: अच्छा सर, जनहित याचिका किन किन मुद्दों पर दायर की जा सकती है?
4: देखिए, जनहित याचिका के मुद्दे जैसे मैंने अभी बताया, अवैध कब्जा हो या सार्वजनिक भूमि पर कब्जा हो, एनवायरमेंट को कोई हार्म पहुंचा रहा हो, सड़क है, नाली है, सीवर है, पेयजल जैसी सार्वजनिक सुविधाओं की कोई समस्या हो, या फिर सरकारी अधिकारियों की कोई लापरवाही है, उसके अंगेश आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं। भ्रष्टाचार से संबंधित सार्वजनिक हित के मुद्दे हो, कोई मानव अधिकार का उल्लंघन हो, ठीक है, या सार्वजनिक सुरक्षा या कानून व्यवस्था से जुड़े कोई गंभीर मुद्दे हो तो उसके खिलाफ भी आप पीआईएल दाखिल कर सकते हैं।
2: क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा अरोड़ा साहब, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन और आ रहा है, मैं देख पा रहा हूँ कि अभी हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पर पर्यावरण की, थोड़ी देर पहले पेड़ वगैरह की बातें हमने करी, तो अगर मैं इसी से पूछूं कि पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ पीआईएल की क्या भूमिका रही है, मतलब किस तरीके से
4: पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र कि अगर आप बात करते हैं तो पीआईएल हाँ की बहुत अहम भूमिका रही है। अभी आपने करीब 2-3 महीने पहले सुना होगा कि अरावली हिल्स का एक मुद्दा बहुत छाया था।
2: करेक्ट, अरावली। हाँ,
4: तो अरावली हिल्स क्या था? अरावली हिल्स में ये था कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल मिनरल्स और कई ऐसी चीजें थी, रिसोर्सेस थे कि जितने भी भूमाफिया थे, लैंड माफिया थे, वो खनन वहां पे कर रहे थे। उस खनन की वजह से जो वहां की जो नेचुरल ब्यूटी थी और एनवायरनमेंट को हार्म हो रहा था उसके खिलाफ पीआईएल डाली गई थी, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लेके अरावली हिल्स में खदान क्षेत्र को ब्लॉक कर दिया था। वहां पे कोई ऐसी अगर कोई खदान करता हुआ पाया गया या कुछ है, उसमें गवर्नमेंट को भी सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि इस एरिया को जो नेचुरल ब्यूटी है उसको आपको बिल्कुल प्रिजर्व करके रखना है। तो अरावली हिल्स का मुद्दा आपको पता होगा कितना बड़ा मुद्दा था, और हमारे एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए निश्चित तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी बहुत सुमोटो, कई केसेस में हमने देखा कि वो सुमोटो भी ले लेते हैं।
2: करेक्ट दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम, आपके शहर का अपना सामुदायिक रेडियो रीना और आनंद है, जहां पर लीगल टॉक्स चल रहा है विद एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी के साथ। सर आपका नाम मैं सही ले पा रहा हूँ?
4: बिल्कुल बिल्कुल।
2: कभी कभी होता है ना, मेरी जुबान थोड़ी हिल जाती है, जब ब्रेकफास्ट में केला खाते हैं तो जुबान फिसल जाती है। आज वैसे मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है, ये लड़की बहुत जो है आजकल हंस रही है, इसके तो खैर हम बाद में बात लगाएंगे, टेंशन मत ले तू। अच्छा सर, अभी हम पीआईएल के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत सारे लिसनर्स हमारे जानना चाह रहे हैं ये है क्या, व्हाट इज दिस पीआरएल, इसके थोड़ा सा इसका यू नो एक बार रिपीट कर दो फुल फॉर्म।
4: देखिए पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया, तो अगर पब्लिक के मुद्दे से रिलेटेड आप कोई भी बात कोर्ट में अपने
2: सुप्रीम कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, तो यहाँ दोनों को याद कर लेना चाहिए, नहीं तो हम आउट हो जाएंगे ऑफिस से, ध्यान रखना।
4: नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो मैं आपसे पूछूंगा कि पीआईएल की फुल फॉर्म
2: सर, मैं अगर भाग गया तो ज्यादा सही, मैं गायब हो गया तो बात अलग है, तू याद करके रखियो, तेरा शो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यार पब्लिक सीखने को मिली है।
4: पब्लिक के जब भी हित की बात हमें कोई करनी हो या कोई याचिका दायर करनी हो
2: सर,
4: तो हम उसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, वो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकते हैं।
2: ओके
4: ठीक है,
2: तो देखिए गाइज, अब हम सिर्फ एंटरटेनमेंट की बातें नहीं कर रहे हैं, अब हम सीरियस बातें भी कर रहे हैं, और जहां पर आज जो है ये इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें अनिरुद्ध जी बता रहे हैं जिसके बारे में हमें पता ही नहीं था, और आई थिंक हो सकता है हम अपने शो में आपसे कभी भी पूछ लें कि पीआईएल का फुल फॉर्म क्या है, तो हमें याद होना हो आपको जरूर होना चाहिए, हम तो गूगल करके भी निकाल लेंगे, आप गूगल नहीं करने देना,
3: गूगल करके निकाल लेंगे तुम ये।
2: हाँ ये बात तो वो तेरी तरह है, मैं समझ गया हूँ, जितना दिमाग तू चलाती इतना हमारे लिसनर भी चला लेते हैं। बिल आगे बढ़ते हैं, बैक टू पॉइंट। हाँ तो रीना कुछ क्वेश्चन पूछ रही है सर आपसे। हाँ प्लीज।
3: हाँ तो मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या पीआईएल के माध्यम से सरकारी नीतियों और योजनाओं की समीक्षा कराई जा सकती है?
4: यस बिल्कुल कराई जा सकती है, अगर जनहित याचिका पीएल के माध्यम से हम सरकारी नीतियों योजनाओं की कोई जानकारी नहीं मिलती है,
2: हाँ जी हाँ जी,
4: तो हम उस योजनाओं की जानकारी के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पीआईएल दाखिल कर सकते हैं और उस योजनाओं की न्यायिक समीक्षा कराने की मांग कर सकते हैं। यदि वह संविधान कानून या जनहित के विरुद्ध हो, हालांकि न्यायालय समानता नीति के गुण दोष हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन यदि किसी नीति से मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो और मानहानि की गई हो या कानून का पालन ना किया हो तो न्यायालय हस्तक्षेप भी कर सकता है इसमें।
3: क्या बात
2: है। अच्छा डिजिटल टाइम है सर, आजकल डिजिटल जमाना है, इस पे अगर हम बात ना करें तो लगेगा बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारी जेंजी के लिए, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि डिजिटल युग में नागरिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए पीआईएल कितना महत्वपूर्ण है, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए जरा।
4: देखिए डिजिटल जब से युग आया, डिजिटल ट्रेंड आया, तो पीआईएल का महत्व और ज्यादा ही बढ़ गया है। आप देख रहे हैं आज की डेट में इतने ज्यादा फ्रॉड्स होते हैं, जो डाटा है हमारा उसको स्कैम कर लिया जाता है, उसको गोपनीयता उसकी भंग हो जाती है, साइबर सुरक्षा है, ऑनलाइन जो एक लोगों कहते हैं कि भाई हमें अभिव्यक्ति की आजादी, लोग अपने कुछ भी कमेंट करने लग जाते हैं, स्वतंत्रता है, डिजिटल जो निगरानी है आजकल लोग अगर आप कोई चीज देख भी रहे ना गूगल पे तो उसकी भी कोई ना कोई डिजिटल उसको मॉनिटर कर रहा है।
2: एब्सोल्युटली 100%
4: इंटरनेट तक जैसे मुद्दों पर पीआईएल नागरिक के अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण जो है माध्यम बन गया है, और इसके माध्यम से न्यायालय नई तकनीक से कई जो नई चीजें हैं उसको न्यायालय के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि उन जो चैलेंजेस आते हैं उसको भी पीआईएल के माध्यम से कई बार गवर्नमेंट ने उसको कई मुद्दों को उठाया भी है और पीआईएल भी दाखिल हुई है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिए। जैसे आपने सुना होगा आजकल व्हाट्सएप वगैरह पे अगर गोपनीयता हमारी भंग हो जाती है, अगर हम कुछ भी लिख रहे हैं किसी को चैट भी करें तो वो चीज भी लीक आउट हो जाती है, तो इसको लेके भी कई पीआईएल जो है दाखिल करी थी, और पीआईएल दाखिल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आपने देखा होगा कि कभी फेसबुक को उन्होंने डायरेक्शन दिए या ट्विटर को डायरेक्शन दे रहे हैं या व्हाट्सएप जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसके लिए डायरेक्शन दे रहे हैं कि भाई जो भी यूजर है एटलीस्ट उसका जो डाटा है वो लीक नहीं होना चाहिए। तो ये पब्लिक से रिलेटेड बात हो रही है, एक समूह से रिलेटेड बात हो रही है।
2: 100% राइट, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है सर आपने, थैंक यू वेरी मच। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, हाल ही वर्षों में पीआईएल से जुड़े कौन से महत्वपूर्ण फैसले हैं जो सामने आए हैं, अगर इस पे थोड़ा सा आप बताना चाहें।
4: देखिए हाल ही जो अभी ज्यादातर मोस्टली जो हमने देखे हैं जो मुद्दे हैं उसमें निजता के अधिकारों को मौलिक अधिकार है हमारा, एनवायरमेंट से रिलेटेड कई मुद्दे जैसे अभी मैंने आपको अरावली हिल्स के बारे में बताया, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण के कई मामले, अच्छा इलेक्शन से रिलेटेड भी कई एक पीआईएल आपने देखी होगी अभी जैसे चुनाव पारदर्शिता
2: से। ये तो सर मुझे लगता है कि पब्लिक के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है
4: भाई, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होने तो एटलीस्ट कम से हमारे इंडिया में तो मुद्दा है ही।
2: करेक्ट करेक्ट वही ना,
4: तो कहीं ना कहीं
2: ये चीज तो फिर उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई फिर ना।
4: हाँ
2: इस पर हम बात कर रहे हैं अभी,
4: तो जनहित की जहाँ पे भी कोई बात होगी तो वहाँ पीआईएल डेफिनेटली
2: रहती
4: है, ठीक है, उसको हम लोग याचिका को फाइल कर सकते हैं।
3: चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि जनहित याचिका आम नागरिकों को न्याय दिलाने में किस टाइप से मदद करती है?
4: देखिए हमारे जो समाज में जो अभिन्न हिस्सा, समाज का अभिन्न हिस्सा होते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं उसमें, है ना, अमीर गरीब सब तरीके, लेकिन कई बार ऐसा होता है देखने में आता है कि बहुत से लोगों को जो उनके वर्क का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है, तो उसको लेके जो है कई एक एनजीओ हैं, कई एक जो न्याय से रिलेटेड जो भी न्याय प्रेमी होते हैं, एनजीओ से एडवोकेट्स है, वो लोग अपनी पीआईएल या जब उनको लगता है भाई एक बड़े समूह का लॉस हो रहा है और कहीं ना कहीं उनके फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, तो उसको लेके अगर पीआईएल दाखिल की जाती है तो उस पर सुप्रीम कोर्ट अपना जो है सुमोटो भी ले लेता है, और पीआईएल के अकॉर्डिंग अगर उसको लगता है कि हाँ भाई वास्तव में एक समूह का या पब्लिक का कहीं ना कहीं लॉस हो रहा है, तो उसको लेके वो डायरेक्ट भी दे सकता है, डायरेक्शंस भी दे सकता है।
2: ऑल राइट सर, थैंक यू वेरी मच। लीगल टॉक्स टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, मैंने तो फर्स्ट टाइम अटेंड किया, और ये जो आपका पीआईएल का फुल फॉर्म है ये मैं सीख के जा रहा हूँ, रट्टा मार के जा रहा हूँ। एंड आई रिपीट, ये था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, करेक्ट? तो मैंने सीख लिया है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार कुछ नया सीखने के लिए मैं जरूर आऊंगा इस शो में। एंड आपने वैसे भी हमें एक वो चेतावनी दे दी है कि अगली बार हमसे पूछेंगे, तो हमने आपको अभी बता दिया है, सो आई होप अब आप नहीं पूछेंगे। एंड वेरी टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एंड आई थिंक हमारे लिसनर्स को भी ये शो बहुत अच्छा लग रहा होगा रीना। और सर जाते जाते आप हमारे लिसनर्स को एफएम मुरादाबाद 89.6 एफएम जो सुन रहे हैं उनके उनकी जो दिल की कनेक्शन है वो हमारे साथ बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, तो उनके दिल की बातों को ध्यान में रखते हुए आप क्या अपनी तरफ से एक मैसेज देना चाहेंगे?
4: बस मैं यही मैसेज देना चाहूंगा कि आपका इतना प्यारा कम्युनिटी एफएम मुरादाबाद 89.6 है,
2: जी जी,
4: सुनते रहिए और जो है नए नए टॉपिक्स पे हमारा डिस्कशन सुनते रहिए, और जो है अपनी एजुकेशन भी बढ़ाइए, अपने घर वालों को
2: भी अपने ऐड कीजिए,
4: अपने घर वालों को भी सुनाइए एफएम।
2: करेक्ट करेक्ट, बहुत अच्छा सर ने बोला। और गाइस बिल्कुल सर ने कम्युनिटी का जिक्र किया है, हम भी लगातार करते हैं, हमारी भी कोशिश होती है कि जो हमारा समुदाय है जो आसपास के लोग हैं।
4: एक चीज मैं और बोलना चाहूंगा,
2: जी सर,
4: जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात हो रही है ना, तो वैसे आपका रेडियो भी कम्युनिटी की बात करता है,
2: हम अपने समुदाय की बात करते हैं,
4: तो वो कनेक्ट थोड़ा थोड़ा बनना है, जहाँ पब्लिक की बात हो रही है आप भी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप भी पब्लिक की बात कर रहे हैं, तो आप पब्लिक की आवाज बन रहे हैं।
2: गॉट इट सर, और रेडियो बेसिकली है ही पब्लिक की आवाज, और ये आम जनता की आवाज है, इसीलिए हम आपको लेकर आए क्योंकि आप उस पर थोड़ा हमें और जानकारी, सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग।
3: अच्छी अच्छी जानकारी मिलती रहती है, जिसके बारे में पता भी नहीं।
2: मैं आपको जेनरली बताऊं, मैंने अभी सुना नहीं था आपका शो, बट मुझे अब सुनना पड़ेगा आज का, तो इतना अच्छा सेशन था जान के मेरे को बड़ा इंटरेस्ट आया। और हालांकि हम जब भी कभी वकील साहब से मिलते हैं, हमारे भी कुछ जानने वाले हैं, आपसे भी कभी मिलते हैं, लेकिन पता नहीं था कि अंदर से इतने धुरंधर होते हैं आप लोग, मतलब आज मेरे को पता लगा कि हाँ यार कुछ तो है, मतलब अगर बंदा इतनी सारी स्टडी करके आ रहा है, इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, तो
3: इनकी स्टडी के बारे में बात करेंगे, मतलब इन्होंने
2: वो तो पर्सनली किसी दिन पॉडकास्ट कर लेंगे सर के साथ, डोंट वरी। लेकिन सर बहुत अच्छा लगा, और आपने सही कहा, हम एक कम्युनिटी के लिए काम करते हैं, और जो टॉपिक था ये भी हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड ही था। तो गाइज ऐसे आम जनता के जो टॉपिक्स हैं वो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं, क्योंकि हम आपके दिल से जुड़ते हैं और ये कनेक्शन होता है दिल से दिल तक का। सर बहुत बहुत थैंक यू, आप आए, एंड आई एम रियली श्योर कि नेक्स्ट टाइम जब हम आपसे मिलेंगे तो कुछ और इंटरेस्टिंग मुद्दों पर हम बात करेंगे। तो गाइज आप कहीं मत जाइए, रेडियो की सुई बिल्कुल मत घुमाइए, नाना मैं ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक रीना अपना पोटला ठोकला जो भी है वो उठाएगी नहीं, तब तक मैं नहीं जाऊंगा। सी तू अपना सायुनारा करेगी या नहीं है ये बता भी।
3: पोटला ढोकला नहीं है गाइस,
2: ढोकला गुजरात में मिलता है पता है ना।
3: नहीं हम घर पर भी बना सकते हैं,
2: वो मुझे नहीं पता, फिलहाल ये लीगल टॉक्स है, यहाँ पे ये अनलीगल हो जाएगा, इसकी बात नहीं करेंगे अपन, इट्स नॉट रेसिपी शो।
3: हम यहीं से जाने की इजाजत लेते हैं, श्रोताओं आप सभी से फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अभी के लिए बाय-बाय टाटा टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपनी जिंदगी में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, रॉक मचाते रहिए
2: और अपने अधिकारों को पहचानते रहिए, और अगर आपको अपने राइट्स नहीं पता है तो आप इस लीगल टॉक्स को सुनते जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको वो राइट्स और वो इन्फॉर्मेशन पता लगेंगी शायद आपको पहले ना पता हो। तो इसीलिए अभी के लिए हम लेते हैं दोनों इजाजत, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, नई और इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, बाय बाय, नमस्कार।

0: are listening to Coke Studio Pakistan on Saavn.
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद।
3: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक।
2: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में,
3: चाहे फार्मेसी हो, मैनेजमेंट, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, लॉ, एग्रीकल्चर, साइंस, एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई।
2: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी।
3: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट।
4: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077।
5: अगर आप करते हैं नेचर से प्यार तो आपके लिए है जिग प्लांट बेस्ड लिक्विड डिटर्जेंट तैयार, जो नेचुरली करता है कपड़ों की सफाई। जिग करो, स्वच्छता की जिद करो।

0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
1: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
1: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार, फेस 2, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।
2: कॉल 7500153841। DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिविल लाइन, मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: आवश्यक सूचना 400 केवी बरेली मुरादाबाद पारेषण लाइन NH24 बाईपास यूपी कॉरपोरेशन के मझोला 400 केवी उपकेंद्र तक जा रही है। पारेषण लाइन के निकट प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के साथ पतंगबाजी की जा रही है। पतंग का धागा तार को छूने पर तेज धमाके के साथ आग की चिंगारी निकलने से विद्युत आपूर्ति बाधित होती है। अगर कोई जानलेवा घटना होती है तो उसका उत्तरदायित्व पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का नहीं होगा। किसी भी जानलेवा घटना से बचाने के लिए पतंग उड़ाने से रोकें। निवेदक पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बरेली।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IIM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: सिरदर्द, लकवा, ये रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या क्विंटुप्लेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग रीढ़ की हड्डी नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें डीएमआर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: कॉल 7500153841।

0: नमस्ते आदाब, मैं हूँ आपकी दोस्त व होस्ट छाया। आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद 89.6 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो बजाते रहो, गुनगुनाते रहो। वैसे आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है आज के खास बातचीत में डॉक्टर गौरिका सिंघल। तो आइए मैम से मिलवाते हैं आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे स्टूडियो में।
1: थैंक यू छाया जी।
0: वैसे तो बहुत सारी बातचीत करेंगे आगे, लेकिन अपना इंट्रो दे दीजिए हमारे सभी श्रोताओं को।
1: मैं डॉक्टर गौरिका सिंघल, मैं नवजात शिशु व बच्चों की स्पेशलिस्ट हूँ। मैं अभी अपना क्लिनिक रीजन क्लिनिक्स में हूँ और साथ ही मैं एपिक्स अस्पताल के साथ एसोसिएटेड हूँ। इससे पहले 10-12 साल मैं GTB अस्पताल दिल्ली में थी और साथ ही मैं शांति गोपाल अस्पताल गाजियाबाद में भी मैंने काम।
0: वैसे मैम अगस्त का महीना चल रहा है और अगस्त का जो पहला हफ्ता होता है उसको हम मनाते हैं स्तनपान दिवस के रूप में। तो ये पूरा हफ्ता जो है स्तनपान दिवस पे लोग बात कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं एक दूसरे को। तो आप हमारे श्रोताओं को ये पहले समझा दीजिए स्तनपान सप्ताह है क्या।
1: बेसिकली इस सप्ताह का सबसे बड़ा फायदा ये है, ये इसीलिए मनाया जाता है ताकि हम जनता को जागरूक कर सकें कि बच्चे के लिए माँ का दूध व माँ को बच्चे को दूध पिलाना कितना फायदेमंद है और इसका क्या क्या फायदा बच्चे व माँ को मिलता है।
0: जी, तो अभी हम शुरुआत करते हैं इसके फायदे के बारे में। तो स्तनपान के फायदे क्या होते हैं शिशु के लिए?
1: माँ का दूध शुरू के 6 माह में शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। माँ के दूध में हर जरूरी पोषक तत्व होता है। शिशु के आंते जो है वो माँ के दूध के लिए ही अनुकूल है, इसीलिए इसे बच्चे को पचाने में बहुत आसानी होती है। साथ ही में जब माँ बच्चे को गोद में लेकर उसे स्तनपान कराती है तो माँ और बच्चे में भावनात्मक बंधन जो है वो और मजबूत हो जाता है। इसमें कुछ एंटीबॉडीज भी होती हैं जो शिशु को सर्दी खांसी जुकाम पेट कान के इन्फेक्शन इन सबसे रक्षा करती है। साथ में माँ के दूध पे बच्चे का मस्तिष्क का विकास सबसे ज्यादा पूर्ण होता है। 6 माह तक जो बच्चा माँ का दूध पीता है उसमें जब हम 6 माह के बाद ठोस आहार शुरू करते हैं तो आहार से होने वाली एलर्जी के प्रति सुरक्षा भी बच्चे को मिल जाती है। जो बच्चे स्तनपान कर रहे हैं उन शिशुओं में सामान्य से अधिक मोटा होने का कारण वह मधुमेह की संभावना भी कम हो जाती
0: है। ये तो रही शिशु के फायदे की बात, अब जरा हम आपसे जान लेते हैं कि माँ को क्या फायदे होते हैं।
1: स्तनपान से जितने फायदे शिशु को होते हैं उतने ही फायदे स्तनपान कराने से माँ को भी मिलते हैं। माँ का जो गर्भाशय यूट्रस होता है वह सिकुड़ कर वापस अपनी गर्भावस्था की पहली स्थिति जाने में भी इस स्तनपान से मदद मिलती है।
0: जी।
1: साथ ही माँ को अपना जो बढ़ा हुआ वजन है वो कम करने में भी मदद मिलती है। एक दिन में स्तनपान कराने से लगभग 500 कैलोरी तक माँ बर्न कर सकती है। साथ में इसमें जिंदगी में आगे चलकर माँ को होने वाले टाइप 2 डायबिटीज यानी मधुमेह, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर इन सब से भी माँ को खतरा कम होता है। माँ को ऑस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियाँ कमजोर हो जाती हैं और हृदय रोग संबंधी जो खतरा होता है वह सब भी कम हो जाता है। ये एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह और हर अवधि पे हर सही तापमान में उपलब्ध रहता है। दूसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि दूसरी महिलाओं के कंपैरिजन में मुकाबले में जो माँ स्तनपान करवाती है उसमें डिप्रेशन का खतरा भी कम हो जाता है।
0: जी, बहुत अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रही है। आई होप एकदम मतलब मस्त वाला दिमाग में घुसेगा। वैसे मैम, बच्चे कई बार दूध पीने के बाद भी रोते हैं, तो ऐसा क्यों होता है?
1: बच्चों के रोने के बहुत से कारण होते हैं। बच्चे का अगर डायपर गीला हो, उसे ठंड लग रही हो, उसे गर्मी लग रही हो, उसे गोद में आकर घूमना हो तो वह बच्चा रोकर ही बता पाता है। बच्चे का रोने का मतलब ये नहीं है कि माँ का दूध पूर्ण नहीं है। माँ का दूध पूर्ण हो सकता है, उसके बाद भी बच्चे का रोने का मतलब यह है कि वह दूध के सिवा और किसी चाहत की इच्छा रखता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अक्सर हमारी भी आदत होती है, बच्चे रो रहे होते हैं, हमारा एक सिंपल सा फंडा होता है कि भाई उसको भूख लगी है, पर हम अदर चीजों पर ध्यान नहीं देते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक पॉइंट थी। कैसे जाना जाता है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है या नहीं?
1: अगर बच्चा दूध पीने के बाद आराम से 1-1.5 घंटा सूखता है, दिन में 6 से 8 बार यानी कि 24 घंटे में 6 से 8 बार सूसू जाता है और उसका वजन अगर सही तरीके से बढ़ रहा है यानी कि 1 महीने में कम से कम 500 ग्राम के करीब उसका वजन अगर बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि माँ का दूध बच्चे के लिए पर्याप्त है।
0: जी अगर माँ को खांसी जुकाम हो रहा है उस टाइम में बच्चे को दूध पिलाना सही होगा?
1: बिल्कुल, माँ के दूध से बच्चे को वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है। अगर माँ को वायरल इन्फेक्शन है तो बस वो सावधानी के तौर पे अच्छे से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोकर और अगर बहुत ज्यादा खांसी है तो मुंह पर मास्क लगाकर बच्चे को दूध पिला सकती हैं। बल्कि ऐसा करने से माँ के दूध से जो माँ ने एंटीबॉडीज बनाई है उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट वो बच्चे को मिल जाएंगी। इससे बच्चे में वो बीमारी होने का खतरा और कम हो जाएगा।
0: अगस्त का महीना है और गर्मी भाई साहब बहुत ज्यादा हो रही है, तो मैम अगर बच्चे को प्यास लग रही है उस वक्त में हम क्या बच्चे को पानी भी थोड़ा बहुत पिला सकते हैं?
1: बिल्कुल भी नहीं। शुरू के 6 माह में हमें बच्चे को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है। माँ के दूध के ना 2 हिस्से होते हैं। जो शुरू का दूध एक छाती से आता है उसमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है। जो बाद का दूध होता है उसमें बच्चे का पेट भरने वाला तत्व फैट्स ज्यादा होते हैं। तो अगर गर्मी ज्यादा होती है तो माँ का शरीर अपने आप उस चीज को पहचानता है और शुरू के दूध में पानी की मात्रा बढ़ जाती है और वो जो पानी है वो माँ के दूध का पानी वो बच्चे के लिए उसकी प्यास मिटाने के लिए पर्याप्त होता है। इसीलिए माँ के दूध के सिवा बच्चे को ऊपर से पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी के साथ मैं एक चीज और बताना चाहूंगी
0: जी
1: कि शुरू के 6 माह में बच्चे को सिर्फ माँ का ही दूध देना है। बच्चे को कोई घुट्टी 555 घुट्टी 112 बाल जीवन घुट्टी कोई भी घुट्टी बच्चे के लिए फायदेमंद नहीं है।
0: जी ये बहुत बढ़िया आपने बात बताई, हाईलाइट किया इसको, क्योंकि अक्सर लोग घुटियां पिलाते रहते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है कि माँ दिन भर थक हार के काम करके और रात में सोने जाती है और उस वक्त आधी रात को बच्चा उठ जाता है, उसको भूख लगती है वो उठ जाता है। तो क्या कोई ऐसा तरीका जिससे कि माँ की नींद भी खराब ना हो और बच्चे की भूख भी मिट जाए?
1: बिल्कुल, माँ का दूध ही तो एकमात्र ऐसा भोजन है जो हर समय हर जगह हर मात्रा में सही तापमान पर उपलब्ध है। कुछ समय बाद दूध पिलाने के बाद तो माँ को पता चल जाता है कि वो जिस तरह बच्चा माँ दोनों कंफर्टेबल है किस तरह से वो उस बच्चे को दूध पिला सकती हैं।
0: जी
1: रात में बच्चे को गोद में लिया और उसे दूध पिला दिया और उसके बाद सुला दिया। बल्कि अगर बच्चा ऊपर के दूध पे है तो पहले दूध को बनाएं, उसे गर्म ठंडा करें, उसको लेकर आए, फिर धीरे धीरे बच्चे को पिलाएं, उससे तो माँ की नींद और ज्यादा खराब होगी।
0: आई होप उन महिलाओं को जो माँ बनी है पहली बार बहुत ही ज्यादा आपसे जानकारी मिली होगी और बच्चे को स्तनपान कराने में सही एक गाइड मिल पाया आपकी बातों से। मैम जाते जाते एक छोटा सा मैसेज हमारे सभी श्रोताओं को, उन सभी महिलाओं को जो पहली बार माँ बनी है या स्तनपान की सही जानकारी नहीं है, तो एक छोटा सा मैसेज पहुँचाइए।
1: मेरा सबसे छोटा सा और सबसे सरल मैसेज एक ही है कि माँ का दूध शुरू के 6 महीने के लिए शिशु के लिए पूर्ण व सर्वोत्तम आहार है। इसके सारे फायदे बच्चे व माँ दोनों को ही मिलते हैं और शुरू के 6 महीने में ऊपर का दूध बच्चे को आगे के इन्फेक्शन से नहीं बचा सकता और साथ में माँ का दूध जो बच्चे की मस्तिष्क के डेवलपमेंट में हेल्प करता है वह ऊपर का दूध कभी नहीं कर सकता।
0: जी बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, आपसे बात करके, इतना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड, मुरादाबाद।

0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा। मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी ज्वाइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: बच्चों के सर्जन डॉक्टर रघु प्रकाश, नवजात शिशु एवं बच्चों के गुर्दे, पेशाब के रास्ते के ऑपरेशन के विशेषज्ञ एवं बच्चों के अन्य सभी प्रकार के ऑपरेशन के लिए संपर्क करें डॉक्टर रघु चाइल्ड केयर सेंटर, निकट सर्किट हाउस, दिल्ली रोड मुरादाबाद।
0: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पी या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेवर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: मुरादाबाद के लिए एक बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद, कॉल 7055011681।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।
2: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आपकी आरजे रीना, फिर मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे। जी कहते हैं ना श्रोताओं, एक घर एक परिवार, जहां कभी एक ही थाली में खाना खाया जाता था, एक दूसरे की खुशियों में मुस्कुराया जाता था, लेकिन जैसे ही माँ बाप की उम्र ढलती है और बात जमीन जायदाद की आती है, वही अपने ही लोग आपस में लड़ने लगते हैं। कई बार माँ बाप पूरी जिंदगी मेहनत करके घर जमीन और संपत्ति बनाते हैं, उनकी बस एक ही इच्छा होती है कि उनके जाने के बाद परिवार प्यार से रहे, लेकिन अफसोस कई घरों में सबसे पहले सवाल यह उठता है कि किसके हिस्से में आएगा संपत्ति। यही से शुरू होती है वसीयत की अहमियत। वसीयत सिर्फ कागज का एक टुकड़ा नहीं होती, बल्कि माता पिता की आखिरी इच्छा होती है कि अगर समय रहते सही तरीके से वसीयत बना दी जाए तो कई पारिवारिक झगड़े, कोर्ट कचहरी के चक्कर और रिश्तों में आने वाली दरारें रोकी जा सकती हैं। तो आइए आज हम बात करेंगे वसीयत क्या होती है, इसे कैसे बनाया जाता है, क्या यह जरूरी है और इससे परिवार को क्या फायदा मिलता है। इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मेरे साथ आज एडवोकेट अनिरुद्ध अरोरा जी कनेक्ट है। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में, और आप बताइए कि हमारे स्टूडियो में आकर आपको कैसा लगता है, जरा हमारे श्रोताओं को बताइए आप।
3: नहीं, मैं तो वेट करता हूँ हर वीकेंड्स पे कि आप कोई अच्छी सी नई सीरीज लेके आओगे लीगल टॉक्स में, अपने प्रोग्राम में, अवेयरनेस प्रोग्राम की, जिससे हमारे जितने भी लिसनर्स हैं कम्युनिटी रेडियो को, उनको कुछ नया जानने को मिलेगा।
2: पर अब की बार आपने वेट ज्यादा करवा दिया सर।
3: देखिए, कुछ होती है, कुछ प्रायोरिटीज होती है, तो मैं माफी चाहूंगा अपने रेडियो के लिसनर्स से भी, कम्युनिटी रेडियो के, कि मैं टाइम नहीं दे पाया था, लेकिन अब मैं कंटिन्यू रहूंगा आपके साथ में और आपकी सारी जितनी भी क्वेरीज है मैं उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। और आप बने रहिए अपने रेडियो कम्युनिटी सेंटर से, आपका मुरादाबाद कम्युनिटी जो 89.6 रेडियो है, शुरू करते हैं आज का।
2: जी बिल्कुल सर। तो श्रोताओं, आज का हमारा ये शो बहुत ही खास होने वाला है। कहते हैं इंसान अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी मेहनत करता है, दिन रात की कमाई से घर बनाता है, जमीन खरीदता है ताकि उसके बाद भी परिवार खुशहाल रहे, लेकिन कई बार वही घर और वही जमीन अपनों के बीच दूरियों की वजह बन जाती है। प्यार की जगह हिस्सों की बातें होने लगती है और रिश्ते अदालतों तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में एक समझदारी भरा फैसला ना सिर्फ संपत्ति का सही बंटवारा तय करता है, बल्कि परिवार के रिश्तों को भी सुरक्षित रखता है। मुझे लगता है कि इसके बारे में बात होना बहुत जरूरी है।
3: ये बहुत छोटा सा वर्ड है वसीयत, लेकिन इम्पैक्ट बहुत अच्छा है इसका।
2: कहते हैं ना सर, छोटा पैकेट बड़ा धमाल।
3: टॉपिक बहुत आज का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा अपने लिसनर से मैं बोलूंगा।
2: बिल्कुल। तो सर, यानी कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, वसीयत होता क्या है?
3: देखिए, वसीयत जिसको हम हिंदी में विल बोलते हैं, वसीयत एक तरीके का एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, कानूनी दस्तावेज होता है, जिसमें कोई व्यक्ति ये लिखता है कि इसकी मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति जो है, उसकी एसेट्स जो है, किसको देनी है, कितने रेशो में देनी है और उसको डिवाइड कैसे करना है। तो ये सारी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो एक अपनी विल के माध्यम से उसको जो है वो डिक्लेयर करता है कि मेरे ना होने के बाद मेरे, ताकि मेरे जो चिल्ड्रंस हैं या जो भी मेरे जो और जो मेरे रिलेटिव्स हैं उनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो या कोई डिस्प्यूट पैदा ना हो, तो उससे प्रिवेंटिव होने के लिए वो एक डिक्लेरेशन देता है। उसी डिक्लेरेशन को उसको हम विल बोलते हैं, उसको हम लीगल डॉक्यूमेंट होता है वो एक, तो उसको ही वसीयत बोलते हैं।
2: मतलब फैमिली वालों का नाम मेंशन होता है उसमें?
3: हाँ, उसे जो भी उसकी कमाई हुई एसेट्स है, जो भी उसके पास जो संपत्ति है, उसका डाइवर्सिफिकेशन या डिवाइड उसको कैसे करना है, तो उसके बारे में में वो सारी डिटेल्स खोल देता है, उसको अपने जीते जी वो जो है सब उसको डिक्लेयर कर देता है कि कल को उसके जाने के बाद इस दुनिया से कि कोई भी कंट्रोवर्सी उसके रिलेटिव्स में या उसके बच्चों में क्रिएट ना हो।
2: बिल्कुल बिल्कुल। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या हर व्यक्ति वसीयत बना सकता है?
3: हाँ बिल्कुल बना सकता है, अगर आप 18 वर्ष के हैं या उससे अधिक आयु के हैं और आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं एकदम, आप बिल्कुल साउंड माइंड से जो है बिल्कुल होश और आवास में अगर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं तो आप अपनी वसीयत अपनी विल आप अनाउंस कर सकते हैं, अपने लीगल जो भी आपके कंसल्टेंट है या एडवोकेट है उनसे आप मिलके आप अपनी वसीयत बना सकते हैं और उसको आप जो है आने वाले फ्यूचर के लिए कोई भी अगर लगता है आपको कोई कॉन्ट्रोवर्सी आ रही है तो उसको आप पहले ही उसे प्रिवेंट कर सकते हैं।
2: मतलब इसके लिए एज क्या होना चाहिए सर?
3: एज देखिए 18 वर्ष हो या उससे ऊपर होनी चाहिए।
2: अच्छा,
3: एटलीस्ट आपको बालिग होना जरूरी होता है।
2: क्या वसीयत बनाने के लिए वकील की आवश्यकता होती है?
3: देखिए अनिवार्य तो नहीं है ये, लेकिन कई एक ऐसी कानूनी पेचीदगियां होती हैं उसमें, कानूनी लैंग्वेज आपको नहीं पता होती है तो आपको एक जो एडवोकेट है वो हायर जरूर करना चाहिए, जिससे कोई भी आपको अगर कोई लीगल वर्ड है या लीगल टर्म है जिसका आपको मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है तो कोई अगर देखिए आप प्रोफेशनल हायर करेंगे तो निश्चित तौर पर आप ही के लिए अच्छा है। तो मेरा सजेशन है कि आपको अपने जो भी लीगल कंसल्टेंट है या लॉयर्स हैं उनसे कंसल्ट करके ही आपको वसीयत बनवानी चाहिए।
2: सो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या वसीयत स्टाम्प पेपर पर ही बनानी आवश्यकता होती है?
3: देखिए साधारण कागज पे भी आप कोई अगर अपनी विल करना चाहे तो कर सकते हैं और स्टाम्प पेपर भी कर सकते हैं, साधारण कागज पर भी वैध वसीयत बनाई जा सकती है।
2: क्या वसीयत का रजिस्ट्रेशन जरूरी है?
3: जरूरी नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन कराने से उसकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है और अगर कोई विवाद ने कोई आगे फ्यूचर आने वाला होता तो उसकी संभावना कम हो जाती है उससे।
2: और क्या सर वसीयत में दो गवाह होना आवश्यक है?
3: हाँ, वसीयत में विटनेस जरूर चाहिए होती है, ऑर्डिनरी तौर पे दो एटलीस्ट दो विटनेस तो मैंडेटरी है, दो गवाह बिल्कुल होने चाहिए। बिल्कुल।
2: क्या वसीयत को कभी भी बदला जा सकता है?
3: हाँ, वसीयत अगर आपने कोई भी करी हुई है और आपको लग रहा है कि भाई मैं अपना माइंड आपका चेंज हो गया या आपको लगता है कि मैं वसीयत मैंने अपने जो है अब चेंज करना है या मुझे अपना ये हिस्सा बढ़ा के इतना देना है या कम करना है या नहीं देना, तो आपका राइट बनता है, आप अपने जीते जी अपनी वसीयत जो है आपकी वो अपने लाइफ में अपने जीवन काल में कभी भी रद्द कर सकते हैं, उसको कैंसिल भी कर सकते हैं या उसको बदल भी सकते हैं आप।
2: यदि किसी व्यक्ति ने वसीयत नहीं बनाई तो उसकी संपत्ति का क्या होगा?
3: देखिए ये प्रॉब्लम्स बहुत आती हैं आज की डेट में, लोग इतना डीप में सोचते नहीं है, वो सोचते हैं कि भाई चलो ठीक है वसीयत की क्या जरूरत है, लेकिन कॉमन देखिए लाइफ जो है हमारी जो है सबको पता है कि लाइफ का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो कभी भी कुछ मिस हैपनिंग हो सकती है, तो वसीयत तो एटलीस्ट कम से कम सबको करनी ही चाहिए। और अगर वसीयत नहीं बनाई होती है तो उस केसेस में प्रॉब्लम्स ये आती है जो उसके लीगल हायर्स हैं जो उसके रिलेटिव्स हैं जो चिल्ड्रंस हैं उसमें आपस में थोड़ा कॉन्ट्रोवर्सी है डिस्प्यूट होने की संभावना रहती है और फिर वो जो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट हो जाता है सब्जेक्ट, वो आप कोर्ट के सू के माध्यम से ही उसको आप फिर चैलेंज कर सकते हैं, कोर्ट जो डिसीजन सुनाएगा जैसा भी कोर्ट को ठीक लगेगा ऑन रिकॉर्ड क्या चीजें हैं और जो पार्टीज अपना अपना जो है पक्ष रखती हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो कोर्ट डिसाइड करेगा उसी रेशियो में सबको जो है प्रॉपर्टी मिल पाती है। फिर
2: उत्तराधिकार का क्या अर्थ है?
3: देखिए उत्तराधिकार एक तरीके का सक्सेशन होता है, सक्सेशन मतलब अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति उसके कानूनी वारिसों को मिलने की प्रक्रिया को हम उत्तराधिकार कहते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति है उसने जो है वसीयत कोई अपनी करी हुई है और उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो संपत्ति मिलती है उसके उत्तराधिकारी को मिलती है, यानी जिसको उसने सक्सेशन किया है जिसको उसने ऐसे।
2: एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है सर जो कि हर किसी के मन में घूमता रहता है, ये तो क्या बेटी को भी पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार होता है?
3: देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे लगता है कि मोस्टली लड़कियों को इसका आंसर नहीं पता होगा, वो सोचती हैं बचपन से ही उन्हें ये पता है कि मुझे तो शादी होके घर चले आना है बस बात खत्म, तो ना वो कभी संपत्ति के लिए अपने हिस्से के लिए कभी कहती हैं अपने घर में और ना ही कभी उनको मिलता भी होगा, तो बहुत ही कम मैंने देखे हैं केसेस की लोग अपनी बेटी को शादी के बाद भी अगर हिस्सा देते हों, लेकिन हाँ वर्तमान में कानून के अनुसार बेटी को भी बेटे के समान अधिकार प्राप्त है, हर लड़की का हर बेटी का अपने परिवार में अपने फादर की संपत्ति में उसका अधिकार है, उनके बाद में वो अधिकार के लिए अपनी संपत्ति में हिस्से के लिए वो कोर्ट में सू कर सकती है, उसे राइट मिलता है।
2: क्या बात है, तो सुन लिया भाई लड़कियों। बहुतों को नहीं पता था सर, सच में एक्चुअल में नहीं पता होता है, क्योंकि उनको बचपन से यही कहा जाता है कि ये अभी तुम्हारा घर है, शादी के बाद तो वो हमारा अगला घर हो जाता है।
3: संपत्ति में जो है बेटी का भी अधिकार बनता है, बराबर का हिस्सा है, जितना बेटे का हिस्सा है उतना बेटी का हिस्सा।
2: सर एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या शादी के बाद बेटी का संपत्ति पर अधिकार समाप्त हो जाता है, यानी कि शादी हो जाने के बाद?
3: ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही भ्रांतियां फैली हुई हैं कि इस भाई लड़की की शादी हो गई अब तो उसका हिस्सा नहीं मिल सकता। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी के बाद भी बेटी का संपत्ति पर, पैतृक संपत्ति पर अधिकार हमेशा बना रहता है, ये उसका लीगल राइट।
2: पैतृक संपत्ति और स्वयं अर्जित संपत्ति में क्या अंतर है?
3: देखिए, स्वयं अर्जित संपत्ति वह संपत्ति होती है जिसे व्यक्ति ने अपने परिश्रम से अर्जित किया है, अपना खुद उसने कमाया है, जबकि पैतृक संपत्ति वो होती है जैसे पीढ़ियों से, कोई बाबा के या दादा के जमाने से कोई पीढ़ियों से चली आ रही कोई संपत्ति होती है, तो उसको हम पैतृक संपत्ति बोलते।
2: क्या बात है श्रोताओं, बस यहाँ पर लेते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक, उसके बाद आप सभी के बीच कनेक्ट होते हैं। आपने कितने नहीं जाना जी, रेडियो किसी बिल्कुल भी नहीं घुमानी यार, जो रीना के साथ कनेक्ट रही ऑल न्यू ऑन एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते।

0: म्यूजिकल ब्रेक के बाद एक बार और स्वागत है श्रोताओं आप सभी का, और आप सुन रहे हैं एफएम मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहे गुनगुनाते रहे जी। और बहुत ही शानदार आपने गाना एंजॉय किया है, और बहुत से लड़कियों को भैया यही लगता है कि अभी भी कि शादी के बाद मायके का जमीन जायदाद हमारी नहीं है, हमसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इन फ्यूचर आपके साथ कुछ होता है तो देखिए मायके का गेट आपके लिए हमेशा खुला रहता है, आप कभी भी आ सकते हैं क्योंकि मम्मी पापा के जायदाद में आपका भी पूरा अधिकार होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या कोई व्यक्ति अपनी पूरी स्वयं अर्जित संपत्ति किसी एक व्यक्ति के नाम वसीयत करा सकता है?
1: हाँ बिल्कुल करा सकता है, ये संबंधित व्यक्तिगत कानून है और मामले की परिस्थिति पर निर्भर करता है, वो जो भी अपनी संपत्ति हो किसी एक व्यक्ति को भी डोनेट कर सकता है, वसीयत कर सकता है उसके लिए।
0: क्या मौखिक वसीयत मान्यता होती है?
1: समानता लिखित वसीयत अधिक सुरक्षित और प्रमाणिक मानी जाती है, मौखिक वसीयत केवल कुछ विशेष परिस्थिति में ही मान्य हो सकती है। और विशेष परिस्थिति ये होती है जैसे कोई बहुत ही सीरियस कोई बीमारी है, या बिल्कुल उसको लगता है कि वो इसकी लाइफ सर्वाइवल बहुत कम है या थोड़े टाइम की है, तो रजिस्ट्रार के सामने अगर वो कोई ओथ लेता है या मजिस्ट्रेट के समक्ष कोई ओथ लेता है और वो कोई ऐसी संपत्ति को डिक्लेयर करना चाहे या लिखने पढ़ने में असक्षम हो, तो उस समय मौखिक जो वसीयत भी वो किसी रजिस्ट्रार या मजिस्ट्रेट के समक्ष डिक्लेयर करके कर सकते।
0: यदि वसीयत पर विवाद हो जाए तो क्या किया जा सकता है?
1: देखिए संबंधित पक्ष न्यायालय में जाकर वसीयत की वैधता को चुनौती दे सकता है, और अदालत जो भी निर्णय होगा, जो भी डिसीजन लेगी, साक्ष्यों के आधार पे और जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसके आधार पे जो भी डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होगा, जो डिसीजन होगा वो पक्षों को मानना पड़ेगा।
0: क्या नाबालिग बच्चों के नाम पर वसीयत किया जा सकती
1: है? बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक अभिभावक गार्जियन का उल्लेख करना उचित रहेगा, क्योंकि नाबालिग के लिए आप अगर कोई भी वसीयत कर रहे हैं तो उसको गार्जियन मतलब उसकी जो है मैच्योरिटी जो 18 ईयर्स ऑफ एज होने तक जो है गार्जियन अभिभावक जो है उसका उल्लेख करना मैंडेटरी होता है।
0: मतलब 18 प्लस होना ही चाहिए?
1: नहीं, वसीयत कर सकते हैं आप जो है नाबालिग के लिए भी, लेकिन एक गार्जियन जो है गार्जियन अभिभावक का उल्लेख करना उसमें उचित रहता है।
0: ओके।
1: उससे कोई भी उसमें आगे प्रॉब्लम्स नहीं आती है फिर।
0: ओके। क्या वसीयत में किसी भी व्यक्ति या संस्था को समर्पित की जा सकती है?
1: समर्पित, हाँ, आप कोई भी अगर कोई भी अपनी संपत्ति है, आप कानून के हिसाब से अनुसार व्यक्ति अपनी स्वयं अर्जित संपत्ति जो है वो किसी भी संस्था को आप डोनेट भी कर सकते हैं, वो उसमें कोई इशू नहीं है सर।
0: क्या परिवार के सभी सदस्यों को वसीयत की जानकारी देना जरूरी है?
1: देखिए वैसे तो ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है और जो है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट है, जरूरी नहीं है, लेकिन पारदर्शिता बनाए रखने के लिए कोई आपका फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रोवर्सी या डिस्प्यूट ना हो तो उसके लिए अगर आपको लगता है कि ये बताना जरूरी है तो आप बता सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप बताना चाहते हैं तो बता दीजिए और नहीं बताना तो आप उसको कॉन्फिडेंशियली भी रख सकते हैं, लेकिन ये है कि अगर आगे फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो तो
0: मतलब बताना बहुत जरूरी है सर।
1: वो आपको लगता है कि अगर हाँ भी ठीक है मेरे बताने से ये चीजें जो है डिस्प्यूट पैदा नहीं होगा और मेरे मरने के बाद कल को लड़ाई झगड़ा ना हो, तो आप बता सकते हैं कि भाई मैंने इस तरीके से वसीयत विल कर दी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों को ये संपत्ति को पार्टीशन करना है।
0: संपत्ति के बंटवारे को लेकर विवाद होने पर सबसे पहले क्या करना चाहिए?
1: देखिए पहले तो कोशिश करनी चाहिए कि भाई म्यूचुअली आप जो रिकंसाइल करें, आपसी बातचीत से समझौते का प्रयास करें, कोई सॉल्यूशन निकालें कि वो जो है जो भी जो है डिस्प्यूट है आपका रिजोल्व हो जाए, बातचीत से ही रिजोल्व हो जाए। और उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि भाई जो है डिस्प्यूट रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो आप कोई भी लीगल जो है अपना कंसल्टेंट या लीगल कोई जो है आपके लॉन्गे या एडवोकेट्स होंगे, आप उनको जो है उनसे राय लेके आपका मशवरा करके आप कोर्ट के थ्रू केस डाल के भी आप उसको रिजॉल्व करा सकते हैं।
0: एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, आम जनता के लिए आपकी सबसे महत्वपूर्ण कानूनी सलाह क्या होगी?
1: देखिए यही सलाह है कि अपनी संपत्ति के संबंध में समय रहते स्पष्ट और विधि सम्बद्ध वसीयत बनवाए जो भी है इस पर लॉ है, और आवश्यक दस्तावेज हमेशा व्यवस्थित रखें, किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय से पहले किसी योग्य अधिवक्ता से या कोई भी जो आपके लीगल कंसल्टेंटों से आप कानूनी सलाह अवश्य लें, और बस मैं यही बोलूंगा कि जो है प्रॉब्लम्स जो है हमें पता नहीं होती कब आने वाली है, तो आने वाले फ्यूचर के लिए अगर आपको भी लगता है कि कोई प्रॉब्लम्स आ सकती है तो आपको भी अपनी वसीयत जरूर बना के रखनी चाहिए और ये सेफ है प्योरली। और जो है आप अपने रहते कभी भी वसीयत आप उसको चेंज कर सकते हैं, रद्द कर सकते हैं।
0: क्या बात है, एक छोटा सा संदेश क्या देना चाहेंगे सर आप?
1: देखिए संदेश मेरा अपने लिसनर्स से यही है कि आपका रेडियो कम्युनिटी रेडियो जो इतनी अच्छी अच्छी लीगल टॉक्स में इतनी अवेयरनेस की बातें लेके आते हैं उसको सुनते रहें और अपने लीगल जो आपके जो राइट्स हैं उसके प्रति सजग रहें और जो है हमेशा जो है जागरूक रहें और जो है बस यूं ही जो है हमारे शो को आप प्यार देते रहें।
0: थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने, क्योंकि श्रोताओं का प्यार हमारे लिए बहुत
1: जरूरी
0: होता
1: है, उन्हीं के लिए हम लोग हर वीक वेट करते हैं कि उनसे बात हुई, वो हम जो है उनके लीगल राइट्स के बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे।
0: बिल्कुल, उम्मीद करते सर अगली बार बहुत जल्द हमारे साथ कनेक्ट होंगे,
1: नए टॉपिक के साथ मिलेंगे आपसे।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए सर धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
1: धन्यवाद।
0: तो श्रोताओं आज के इस खास बातचीत में हमने जाना कि वसीयत आखिर क्या होती है, इसे बनाना क्यों जरूरी है और यह कैसे आपके परिवार के भविष्य को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि वसीयत सिर्फ अमीर लोगों के लिए होती है, लेकिन सच तो यही है कि जिसके पास भी कोई संपत्ति, घर, जमीन, बैंक बैलेंस या कोई कीमती चीज है, उनके लिए वसीयत बनाना एक समझदारी भरा कदम। समय रहते बनाई गई एक सही वसीयत परिवार में होने वाले कई विवादों, गलतफहमियों और कानूनी परेशानियों से बचा सकती है। सबसे बड़ी बात, आपकी मेहनत की कमाई आपकी इच्छा के अनुसार सही व्यक्ति तक पहुंचती है। उम्मीद है कि आज की इस चर्चा ने आपकी कई शंकाओं का समाधान किया होगा और आपको यह समझ आया होगा कि वसीयत सिर्फ एक कागज नहीं बल्कि अपने परिवार के प्रति आपकी जिम्मेदारी और समझदारी को लेके जाता है। और इसी उम्मीद के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी। बहुत सी गलत फहमियाँ होती है लोगों के अंदर जो आज क्लियर हो गया है, तो थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। फिर मिलेंगे श्रोताओं एक ऐसे टॉपिक के साथ, आप सभी के साथ, जहाँ करेंगे ढेर सारी बातें। अभी के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और खुश रहिए अपनी जिंदगी में और अपने परिवार वालों के साथ मिलजुल कर रहिए। बाय।

0: कथित अनियमितताओं के बावजूद अब तक स्पष्ट जवाबदेही तय नहीं की गई है।
1: श्री सिरसा ने कहा कि यदि छात्रों के भविष्य की चिंता है तो ये केवल दिल्ली तक सीमित नहीं होनी चाहिए बल्कि पंजाब के युवाओं के साथ भी समान न्याय होना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार से सभी कथित पेपर लीक मामलों की समयबद्ध और निष्पक्ष जांच, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई तथा नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर पंजाब के शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग की। साथ ही उन्होंने कहा कि छात्रों के भविष्य के मुद्दों पर दोहरे मानदंड नहीं अपनाए जाने चाहिए। आरजू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से हमीशा।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेपर लीक मामले में कड़ा कानून लाने को लेकर जारी किए गए अपने वीडियो संदेश पर मिली प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए देश के युवाओं को धन्यवाद दिया। श्री मोदी ने युवाओं के जबरदस्त समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया।
2: थैंक यू फ्रेंड्स, मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन अब यात्रियों के लिए खोल दिए गए हैं। इससे पहले दिल्ली मेट्रो ने सुरक्षा कारणों से 18 मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए थे। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बारा खंबा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, ITO, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोरबाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली स्टेशन शामिल थे। नागर विमानन मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि कुछ फर्जी वेबसाइट एयर सुविधा 2.0 के नाम पर यात्रियों को गुमराह कर रहे हैं। प्रेस विज्ञप्ति ने मंत्रालय ने बताया कि एयर सुविधा 2.0 की सेवाएं पूरी तरह से निशुल्क हैं और स्वघोषणा पत्र जमा करने के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता। मंत्रालय ने कहा कि एकमात्र आधिकारिक एयर सुविधा 2.0 पोर्टल airsuvidha.civilaviation.gov.in है। भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी ने निर्बाध रूप से 1200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की है। इससे 3000 लीटर से अधिक डीजल की बचत हुई है और इससे केवल जल वाष्प उत्सर्जित हुआ है। इस हाइड्रोजन रेलगाड़ी को इस महीने की 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद और सोनीपत के बीच झंडी दिखाकर रवाना किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि रेलगाड़ी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया के माध्यम से बिजली उत्पन्न करती है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने इस दौरान लगभग 12 किलोग्राम से अधिक मात्रा में मादक पदार्थ बरामद किया है। इसके अलावा 28,800 रुपए और 13 मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों में एक नाइजीरियाई महिला भी शामिल है। वहीं एक अन्य मामले में पुलिस ने अंतर्राज्यीय मादक पदार्थ तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लगभग 19,70,000 की नशीली गोलियां बरामद की हैं, जिनका कुल वजन लगभग 470 किलोग्राम है। पुलिस ने बताया कि यह गिरोह दिल्ली, नोएडा और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ तक फैला हुआ है। दोनों मामलों में जांच जारी है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए करिश्मा राय।
0: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने अवैध शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को द्वारका क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 150 क्वार्टर अवैध शराब और तस्करी में इस्तेमाल होने वाली एक दोपहिया वाहन बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। दिल्ली पुलिस ने एक बार फिर साफ तौर पर उन वायरल सोशल मीडिया अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें दावा किया गया है कि नई दिल्ली जिले में ऐप आधारित फूड डिलीवरी सेवाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पुलिस ने कहा कि जानकारी तथ्यों के आधार पर गलत और गुमराह करने वाली है। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने नई दिल्ली जिले में भारी भीड़ और अत्यधिक यातायात जाम को देखते हुए नागरिकों को नई दिल्ली क्षेत्र की ओर से यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC ने 27वें करगिल विजय दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों के वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक रिपोर्ट।
4: इस अवसर पर आज बेगमपुर नमो भारत स्टेशन पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें स्कूली विद्यार्थियों के साथ एनसीआरटीसी के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर स्कूली छात्रों के लिए गार्डिंग द बॉर्डर्स विषय पर चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें बच्चों ने सैनिकों के साहस को चित्रों के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। एनसीआरटीसी ने कहा कि नमो भारत स्टेशनों को सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का भी केंद्र बनाया जा रहा है। आरजू की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: कल करगिल विजय दिवस है, इसी संदर्भ में हमारी पर्सन बिहाइंड द स्टोरी श्रृंखला के अंतर्गत आगामी कड़ी में हम करगिल युद्ध के वयोवृद्ध और भारत के पहले ब्लेड रनर मेजर डीपी सिंह से बातचीत करेंगे। दिल्ली नगर निगम ने भारत मंडपम में आयोजित दिल्ली सरकार अचीवमेंट एंड स्कीम एक्सपो 2026 में अपने समर्पित स्टॉल के माध्यम से नागरिक केंद्रित पहलों, जन कल्याणकारी योजनाओं, नवाचारों और विभिन्न नागरिक सेवाओं का प्रदर्शन किया है। निगम के स्टॉल पर बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, नागरिकों और विभिन्न संस्थानों के प्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक भ्रमण किया तथा निगम की प्रमुख जन कल्याणकारी योजनाओं और नागरिक सेवाओं की जानकारी प्राप्त की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु ने के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस राष्ट्रीय राजधानी में कई पहलों के माध्यम से जुलाई महीने को बाल संरक्षण माह के रूप में मना रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली पुलिस ने 321 सेशन के माध्यम से 1,12,000 से अधिक विद्यार्थियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया। शिक्षा निदेशालय ने पॉक्सो और बाल सुरक्षा नियमों के पालन की जाँच के लिए 1,503 स्कूलों का निरीक्षण किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री संधु ने कहा कि विद्यालय में शपथ समारोह, साइबर सुरक्षा जागरूकता कार्यक्रम और पुलिस स्टेशन के दौरे से बच्चों में पुलिसिंग के प्रति भरोसा और आत्मविश्वास बढ़ रहा है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु के लोक निवास में मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने बताया कि इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े प्रमुख नीतिगत विषयों और विकासात्मक पहलों पर विचार विमर्श हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सवेरे 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 136वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क, आकाशवाणी समाचार वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग स्पर्धा में भारत का पहला पदक जीतने वाले झंडू कुमार को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उपलब्धि देश के युवाओं और खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने और उन्हें साकार करने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली की पूर्व महापौर शकुंतला आर्य के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली के विकास, जनसेवा और संगठन के प्रति उनका समर्पण सदैव याद रखा जाएगा। राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में आज सवेरे हल्की वर्षा हुई, वहीं दिन भर लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल आमतौर पर बादल छाए रहने के साथ साथ कई जगहों पर सवेरे और दोपहर के समय हल्की हवा चलने की संभावना व्यक्त की है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 33 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। पर्यटन मंत्री कपिल मिश्रा ने आज राजधानी में कांवड़ यात्रा को सुचारू, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों तथा उच्च स्तरीय कांवड़ समिति के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज देवशयनी एकादशी पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने भगवान विष्णु के सभी के स्वस्थ, सुखी, समृद्ध और मंगलमय जीवन की कामना करते हुए कहा कि प्रभु की कृपा सदैव सभी पर बनी रहे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कॉकरोच जनता पार्टी ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की, कहा तीनों मांगे मानी गईं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना त्याग पत्र सौंपा। दिल्ली मेट्रो के सभी स्टेशन खोले गए। दिल्ली पुलिस ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम ने 27वें करगिल विजय दिवस पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के हैवीवेट पैरा पावर लिफ्टिंग में भारत का पहला पदक जीतने पर बधाई दी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।
0: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
3: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
0: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
3: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरोसर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
1: कॉल 7500153841।

0: अगर आप अपने खास मौकों के लिए ढूंढ रहे हैं कुछ बेहतरीन गहने तो आज ही आइए उत्सव ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेंगे खूबसूरत कुंदन, पोल की नक्काशी और नागरी पर विशेष छूट।
1: हमारे यहाँ 25% डिस्काउंट डायमंड पर और 100% हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ पुराने सोने पर 100% वापसी भी की जाती है।
0: पता लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा मुरादाबाद। मोबाइल नंबर 7055070552।
2: मैं हूँ आपके साथ आपकी आरजे रीना और आप सुन रहे हैं FM मुरादाबाद

0: रहे हैं, किसी बिल्डर प्रोजेक्ट में पैसा लगा चुके हैं या फिर किसी रियल एस्टेट विवाद का सामना कर रहे हैं, तो आज की यह बातचीत आपके लिए बेहद खास होने वाली है, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है एडवोकेट अनिरुद्ध अरोड़ा जी, जो हमें सारे सवालों के आंसर देने के लिए आज मौजूद हो गए हैं। भाई काफी टाइम के बाद आज कनेक्ट हुए हैं सर, तो और जानेंगे इनसे रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों में खरीदारी के कानूनी अधिकार क्या है, किन दस्तावेजों का ध्यान रखना चाहिए, और अगर बिल्डर अपनी जिम्मेदारी पूरी ना करे तो न्याय पाने का सही रास्ता क्या होगा। सर आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे स्टूडियो में। तो सर मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, आपके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए जो कि बेसब्री से आपका इंतजार करते हैं, और बहुत बहुत वेलकम है जी।
1: देखिए मैं पहले तो आपके कम्युनिटी रेडियो 89.6 FM का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इतनी अच्छी सीरीज लीगल टॉक जो आपने चलाई है, खास तौर पे जो हम अपनी लाइफ में जो छोटी छोटी बातें जो हमें परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, कुछ लीगल मुद्दे होते हैं जिसकी लोगों को जानकारी नहीं होती है,
2: बिल्कुल,
1: तो इस प्रोग्राम के माध्यम से हम एक तो अवेयरनेस दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि आपके पास क्या क्या राइट्स है, क्या क्या अधिकार है, और सबसे बड़ी चीज है कि मैं भी अपने श्रोताओं से बड़ा वेट करता हूँ इस प्रोग्राम का कि जल्दी से जल्दी ये वीक आए और आपका लीगल टॉक्स प्रोग्राम में मैं उनको नई जानकारी दे पाऊँ, जिससे वो उनको कोई परेशानी है तो जो सजेशन है या जो भी अवेयरनेस है हमारी वो जागरूक बने और जो है अपने अधिकारों को जाने,
2: मतलब वही है जो उनके मन में डाउट है वो क्लियर हो जाता
1: जी,
2: है।
1: जी बिल्कुल, मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हमारे प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा लोग सुने और डेली दिनचर्या में जो भी उनका कानूनी अधिकार है उसको वो जान सके।
2: तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रियल एस्टेट में खरीदारी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकार क्या है।
1: देखिए खरीदार को समय पर, अधिकतर लोगों का एक सपना होता है कि मैं कोई भी अगर कोई दुकान ले रहा हूँ कहीं किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या कहीं किसी मार्केट में, या मैं सपनों का घर मारो, तो सबसे बड़ी चीज एक ये होती है कि उसे समय पर उसका कब्जा मिले, पोजीशन मिले उसका, फिर गुणवत्ता उसका निर्माण कैसा हो रहा है, क्या क्वालिटी यूज हो रही है उसमें, जो पारदर्शी जानकारी मिलनी चाहिए उसको कि भाई अगर हम कोई शॉप या मकान ले रहे हैं, तो अधिकतर केसेस में हमारे पास आते हैं कि बिल्डर जो है उन्होंने कोई शॉप या कोई मकान बुक कराया है, बाद में वो बिल्डर की तरफ से डिमांड नोटिस निकाल दिया जाता है कि उसमें वो मेंटेनेंस चार्ज के नाम पे कभी कंज्यूमर का हैरेसमेंट करता है, कभी कोई और चार्जेस का नोटिस दे देते हैं, और एग्रीमेंट के अनुसार जो भी सुविधाएं हैं और कानून के अनुसार जो भी राहत पाने का जो भी अधिकार है, जो भी रेमेडी है आपकी, वो चीज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए।
2: ये तो सही बात है, क्लियर होगा तभी इंसान आगे बढ़ पाएगा।
1: बिल्कुल।
2: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि फ्लैट या दुकान खरीदने से पहले क्या क्या जांच करनी चाहिए।
1: देखिए आजकल बहुत प्रलोभन वाले विज्ञापन अखबारों में और सोशल मीडिया साइट्स पे आ रहे हैं कि आप अपने घर बनाए, 1 लाख रुपए में प्लॉट ले, 2 लाख में प्लॉट ले, आप रोड पे भी निकल जाएंगे तो कई ऐसे होर्डिंग्स आपको दिख जाएंगे कि आपके सपनों का घर मात्र 50,000 में, 40,000 में, तो ये सब एक लुभावने विज्ञापन देके जो बिल्डर्स होते हैं वो एक आकर्षक स्कीम्स दिखा के जो कंज्यूमर को अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, अगर आप कोई भी फ्लैट या दुकान खरीदना चाहते हैं तो सबसे पहले आप बिल्डर की साख देखिए, उसकी गुडविल क्या है मार्केट में, ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि उसने सिर्फ होर्डिंग लगा दिया, उसकी कंपनी कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, कहीं उसका कोई भी जो है लैंड नहीं है, उसके पास लैंड बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, और सिर्फ एक विज्ञापन के माध्यम से उसने आपसे पैसे ले लिए और बिल्डर का कुछ अता पता नहीं और वो भाग जाए कहीं। दूसरा ये प्रोजेक्ट की स्वीकृतियां देखें, जो प्रोजेक्ट वो दिखा रहा है अपने विज्ञापन में दिखा रहा है, अपनी जो भी स्कीम आपका उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव या एग्जीक्यूटिव आपको बताने आया है, उसका अप्रूवल जो प्राधिकरण है या जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है, जो भी बॉडी है गवर्नमेंट की, वहां से उसका अप्रूवल है या नहीं है, उसके पास भूमि की स्थिति क्या है, उसका लैंड बैंक कितना है, जिस प्रोजेक्ट को वो दिखा रहा है वो वास्तव में उसका मालिक है या नहीं है, एग्रीमेंट की जो शर्तें हैं, जो उसने शर्तें लिखी हुई है उसको ध्यान से पढ़िए, भुगतान की क्या योजना है, क्या स्कीम्स हैं, उसको डीपली आपको चेक करना चाहिए, और रेरा सबसे बड़ी चीज है आज की डेट में, आपको पता होगा कि रेरा जो एक संस्था है वो बिल्डर्स को उसको बिल्डर्स का रजिस्ट्रेशन उसमें जरूरी है, रेरा एक कंज्यूमर्स के हित में एक गवर्नमेंट की तरफ से एक जो है संस्था बना दी गई है, उसमें पंजीकरण की जांच अवश्य करें कि बिल्डर रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं है।
2: पंजीकरण करवाना बहुत जरूरी है आज के समय में।
1: देखिए वो बिल्डर्स के लिए है कि जो ऑथराइज बिल्डर है वो अगर कोई भी अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है मार्केट में और कंज्यूमर से वो पैसा उठा रहा है तो उसका रेरा में रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, और रेरा बिना कैसे किसी भी बिल्डर का रजिस्ट्रेशन नहीं।

0: करता है, वो सारे नॉर्म्स चेक करता है, वो प्रॉपर जो प्रोजेक्ट ला रहा है उसके पास उतना लैंड बैंक है नहीं है, उसकी गुडविल क्या है, उसकी कैपिटल क्या है, वो सारी चीजें पैरामीटर्स पूरी करने के बाद ही कोई बिल्डर वो रेरा में रजिस्ट्रेशन करा पाता।
1: क्या बात है, क्या केवल ब्रोशर देखकर संपत्ति खरीदना सही है?
0: नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एडवर्टीजमेंट देख के या होर्डिंग देख के या अखबारों में विज्ञापन देख के आप ब्रोशर देख के कोई संपत्ति खरीद लें, ब्रोशर केवल प्रसार सामग्री हो सकती है। हमेशा लिखित एग्रीमेंट और आधिकारिक दस्तावेजों पर हमेशा भरोसा नहीं करना चाहिए, पहले उसको डीपली चेक करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें।
1: तो सर, अगर बिल्डर तय समय पर कब्जा नहीं देता तो खरीदार क्या करे?
0: देखिए, ये प्रॉब्लम तो बहुत आम हम लोग देखते हैं, कंज्यूमर्स को सबसे ज्यादा दिक्कत यही आती है कि बिल्डर ने हमसे पैसा ले लिया है और या फिर हमने बैंक से फाइनेंस कराया है, बिल्डर जो है उसको पैसा भी उसको पहुंच चुका है और वो हमें पोजीशन नहीं दे रहा है। तो उस केस में क्या करना चाहिए, बिल्डर को पहले आप एक रिटन में लिखित नोटिस दें कि जो एज पर टर्म्स कंडीशन तय हुई है उसके अकॉर्डिंग वो पोजीशन क्यों नहीं दे रहा है, क्या रीजन है, और समाधान ना मिलने पर आप उपलब्ध आप कानूनी जितने भी आपके पास प्लेटफॉर्म से चाहे रेरा में आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, कोई लोकल प्राधिकरण या लोकल बॉडी और डेवलपमेंट अथॉरिटी की वहां आप उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर कई ऐसे गवर्नमेंट ने आज की डेट में रेमेडीज दी हुई है कंज्यूमर को कि वहां आप कंप्लेंट कर सकते।
1: क्या बिल्डर बिना बताए कीमत बढ़ा सकता है?
0: देखिए, समानता तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन अगर आपके जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में अगर कोई क्लॉज ऐसा मेंशन कर रखा है उसने पहले, यहाँ पे दोनों पक्षों की रजामंदी है, तो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन आता है तो वो बढ़ा भी सकता है, लेकिन कीमत और भुगतान की शर्तें एग्रीमेंट के अनुसार ही तय होती हैं जो आपने एग्रीमेंट किया हुआ होता है।
1: तो श्रोताओं, बस जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद और फिर ढेर सारी बातें करेंगे। एक बहुत ही शानदार गाना आ रहा है आप सभी के साथ। देखिए, बातों के साथ गाने के तड़के ना लगे तो बिल्कुल मजा नहीं आता है।

0: वंस अगेन एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए श्रोताओं, और आप सभी को पता है कि काम की बातें होती हैं, तो फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि आखिरकार हमें कैसे सतर्क रहना चाहिए, कैसे नहीं रहना चाहिए, क्या हर प्रोजेक्ट का रेरा में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है?
1: देखिए, कई जो परियोजना होती है उसके लिए रेरा पंजीकरण अनिवार्य किया गया है हमें सरकार की तरफ से, लेकिन कुछ श्रेणियों में जो है कानून की तरफ से छूट भी दी गई है। तो जैसे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं उसमें तो रेरा मैंडेटरी है, लेकिन कुछ श्रेणियां ऐसी हैं कि वहाँ पे कुछ जो है क्लॉज ऐसे हैं कि उसमें कानून में छूट भी दी गई है।
0: सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, रेरा क्या है और खरीदार को इसे क्या फायदा मिलता है?
1: देखिए, रेरा एक रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और खरीदारों के हित की सुरक्षा के लिए बनाया गया एक कानून है, और इससे एक खरीदारों को ये फायदा मिलता है कि रेरा में कोई बिल्डर जब रजिस्टर्ड होता है तो उसको अपने काफी सारे जो पेपर्स हैं, जो अपना लैंड बैंक है, जो प्रोजेक्ट वो ला रहा है, उसकी क्या प्लानिंग है, वो सारी रेरा में जो ये जो रेरा संस्था जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से बनाया गया है उसको अवगत कराना पड़ता है, उसके बाद ही उस प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन हो पाता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खरीदार है उसके लिए भी एक जो है फायदे की चीज है, और उसको भी एक बचाने का उद्देश्य है रेरा का, कि अगर कोई भी बिल्डर ऐसी सिर्फ ब्राउचर्स पे या एडवर्टाइजमेंट के बल पे अगर वो जो मार्केट से पैसा उठाने की कोशिश कर रहा है तो बिना रेरा के एक तो वो रोक लग जाती है उसपे, और सबसे बड़ी चीज अगर रेरा में रजिस्ट्रेशन होने के बाद सारे पैरामीटर्स उसके पूरे हैं, कागज पूरे करके वो अपना कोई प्रोजेक्ट ला रहा है, तो खरीदारों का उस पर भरोसा भी बढ़ जाता है।
0: अगर बिल्डर रिफंड देने से मना कर दे तो क्या करें?
1: देखिए, अगर आपके एग्रीमेंट में कोई टर्म्स कंडीशन ऐसे तय हुई है कि बिल्डर्स पैर एग्रीमेंट में कि कुछ रिफंड अगर आपका क्लेम निकलता है तो आप उससे डिमांड करते हैं, तो पहले तो लिखित मांगे, दस्तावेज को सुरक्षित रखें, और अगर उसके बाद भी बिल्डर उसको टाल रहा है या कुछ लिंगर ऑन करने की कोशिश करता है तो जो भी आपकी कानूनी विधिक जो भी आपके पास राइट्स हैं, आपके से अच्छी एडवोकेट से राय लेके उसको आप जो है सू भी कर सकते हैं, कोर्ट में कंज्यूमर फोरम में भी जा सकते हैं, रेरा में भी कंप्लेंट कर सकते हैं, तो बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको रिलीफ मिल सकता है।
0: श्रोताओं, आई होप कि आप अच्छे से समझ पा रहे होंगे। फिलहाल हम अगले एक कॉमन क्वेश्चन है सर, क्या कब्जा लेने के बाद भी शिकायत की जा सकती है?
1: जी हाँ, बिल्कुल, अगर आपसे बिल्डर ने जो है आपको पोजीशन दे दिया है और उसने जो एज पर एग्रीमेंट अगर उसने कोई भी क्वालिटी उसमें कॉम्प्रोमाइज किया या उसने जो चीज आपको रिटर्न में दी है उस चीज को आपको प्रोवाइड नहीं कराया है या क्वालिटी लो क्वालिटी यूज करिए, तो आप उसकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं।
0: सो एक बहुत ही ये मुझे लगता है कि कॉमन क्वेश्चन है, बिल्डर द्वारा वादा की गई सुविधाएं ना मिलने पर क्या अधिकार है?
1: देखिए, बिल्डर ने अगर कोई भी चीज आपको कमिट करी है और रिटर्न में कमिट करी है तो ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज को अपने कंज्यूमर को जो आप जो एंड यूजर है उनको वो प्रोवाइड कराए, उसको फुलफिल करे, और खरीदार उन सुविधाओं की उससे मांग भी कर सकता है, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आवश्यकता होने पर आप कानूनी कार्रवाई भी बिल्डर के खिलाफ भी कर सकते हैं।
0: क्या मौखिक वादा अदालत में मान्य होता है?
1: देखिए, अदालत में कोई भी चीज मौखिक नहीं होती है ना, सब चीज लिखित, दस्तावेज अधिक मजबूत साक्ष्य होते हैं, इसलिए हर महत्वपूर्ण बात को लिखित रूप में लेना जरूरी होता,
0: मतलब जो लिखित है उसको मतलब ट्रस्ट किया जाता है।
1: कोई देखिए, कोर्ट में कोई भी चीज वर्बली नहीं होती है, हर चीज आपको रिटर्न में ही अगर होगी तो अदालत उसी पे संज्ञान ले।
0: बिल्कुल श्रोताओं, तो देखिए, मौखिक यानी कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आप कितना भी ट्रस्ट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं तो शायद वो मान्यता नहीं।
1: बिल्कुल, अगर कोई आपको ट्रस्ट कहे कि मैं आपको जो है पैसे डबल कर दूंगा या आपको इतने लाख में इतना प्लॉट दे दूंगा, या बिल्डर की तरफ से कोई आपको प्रलोभन या कोई स्कीम दी जाती है, तो कोई भी अगर उसका प्रोजेक्ट या कोई भी प्रपोजल है तो आप सारी चीज उससे रिटर्न में मांगिए, उसकी जांच पड़ताल करिए, क्योंकि कोर्ट में भी अगर आप जाते हैं कल को आपको पोजीशन की दिक्कत आती है या रिफंड की दिक्कत आती है तो कोर्ट कोई भी चीज को वर्बली नहीं मानती है,
0: मतलब रिटर्न में होना चाहिए,
1: हर चीज रिटर्न में होनी चाहिए। बिल्कुल,
0: क्या बात है। खरीदार को कौन कौन से दस्तावेज संभाल कर रखना चाहिए?
1: देखिए, जब हम कोई भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो सबसे पहली चीज होती है, हम अगर कोई एग्रीमेंट होता है तो वो एग्रीमेंट को हमें संभाल के रखना चाहिए, कोई बुकिंग कराते हैं हम किसी प्रोजेक्ट की तो बुकिंग फॉर्म होना चाहिए, जो भी हमें पेमेंट्स हमने करी है उस पेमेंट का स्टेटमेंट होना चाहिए, अगर हमने कैश दिया तो कैश की रिसिप्ट होनी चाहिए, अगर हमने चेक के थ्रू पेमेंट दिया तो बैंक के स्टेटमेंट्स होने चाहिए, बिल्डर की तरफ से कोई हमें रिसिप्ट अगर इशू करी गई है तो वो होनी चाहिए, कोई ईमेल हमने करी है या बिल्डर की तरफ से कोई ईमेल हमारे पास आई है वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए, और आजकल जो है कोर्ट में इलेक्ट्रॉनिक और वीडियो व्हाट्सएप चैट्स भी जो है वो अप्रूव्ड हैं, तो आप व्हाट्सएप चैट्स भी आप ऐसे जो उसको रिकॉर्ड ले सकते हैं, कोई किसी समाचार पत्र में या किसी न्यूज़पेपर में कोई अगर उसने प्रपोजल या एडवर्टीजमेंट दिया उसको भी कॉपी आप संभाल के रख सकते हैं कि क्या प्रपोजल दिया था उसने। तो ये सारे जो पेपर्स हैं जितनी भी रिकॉर्ड्स की चीजें आपको संभाल के रख।
0: अच्छा सर, ऐसा भी है कि कोई बोल रहा हो अगर हम उसकी वीडियो बना के अगर दिखाए तो वो क्या मान्यता की जाएगी?
1: नहीं बिल्कुल, अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव बिल्डर तरफ से या बिल्डर खुद उस चीज को कमिट करके अगर आपको कह रहा है और आपने उसका कोई रिटर्न में या आपने वीडियो कोई साक्ष्य उसका बनाया है और कल को वो उसे ब्रीच करता है या हटता है तो आप उसको भी कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं।
0: तो मान्यता है?
1: बिल्कुल है मान्यता।
0: क्या बिल्डर मनमानी मेंटेनेंस की फीस ले सकता है?
1: देखिए ऐसा है, बिल्डर अगर अपनी परियोजना को जो है पूरा कर लेता है और जो है उसमें आपके एक एग्रीमेंट में सब चीजें निश्चित उसमें लिखी हुई है कि अगर उसमें कुछ चार्जेस उसने लिखे हुए हैं कि भाई मेंटेनेंस फीस मैं आपसे इतनी लूंगा, तो अगर एग्रीमेंट में आपका ऐसा कुछ है मेंटेनेंस का डिक्लेयर है उसमें तो वो ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता।
0: अगर बिल्डर परियोजना अधूरी छोड़ दे तो खरीदार क्या करे?
1: देखिए कई बिल्डर्स क्या करते हैं, हमने देखा है कई केसेस भी आते हैं कि बिल्डर ने क्या करा, अपना प्रोजेक्ट ही बीच में खत्म कर दिया, रिजॉल्व कर दिया या अधूरा बना के छोड़ दिया। तो उस केसेस में क्या कर सकते हैं, जितने भी सभी खरीदार हैं वो मिलकर कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और जो भी आपके पास उपलब्ध कानूनी उपाय हैं वो आप ले सकते हैं। आप मिलकर एक कमेटी बना के सोसाइटी की तरफ से एक आप अपना क्रेडिटर्स ऑफ कमेटी बना के आप केस फाइल कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत सारे राइट्स होते हैं कि आप उसको बिल्डर के अगेंस्ट में कोर्ट में सू कर सकते हैं।
0: बहुत से सर डरते हैं कि क्या हम इसके ऊपर कर सकते हैं शिकायत या नहीं कर सकते हैं।
1: नहीं देखिए, आपका पैसा आपको रिकवर करना है तो ये तो आपका राइट है कि आपको पैसा चाहिए तो आपको तो केस तो या सू तो करना ही पड़ेगा, रिफंड कैसे मिलेगा नहीं तो आपको।
0: बिल्कुल बिल्कुल। क्या बिल्डर के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है?
1: देखिए अगर आप परिस्थिति के अनुसार हाँ है, यदि मामला उपभोक्ता विवाद के दायरे में आता है तो हाँ बिल्कुल आप जो है कंज्यूमर फोरम में आप केस बिल्कुल फाइल कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं बस रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक म्यूजिकल ब्रेक के बाद और हमारी जो ये बातचीत है वो जारी रहेगी। बस आपने रेडियो की ट्यूनिंग हमें कनेक्ट करके रखना है, FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो बजाते रहे, गुनगुनाते रहे जी।

0: वेलकम बैक है श्रोताओं, एक बार और आप सभी के बीच कनेक्ट हो गए हैं जहां पर ढेर सारी बातें हो रही है। देखिए, घर लेने से रिलेटेड अगर कोई भी आपको परेशानी होती है तो बेझिझक बिंदास होकर आप शिकायत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपका अधिकार है। क्योंकि अगर आप किसी भी चीज में, प्रॉपर्टी में आप पैसे लगा रहे हैं और इन फ्यूचर आपको वो नहीं मिल पा रहा है, आप सोच रहे कि हमें, हमारे साथ कोई धोखाधड़ी हो रहा है, तो हम क्या करें, इसके लिए आप शिकायत कर सकते
1: हैं। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, आप शिकायत बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई भी आपके साथ ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट है तो आप कंप्लेंट बिल्कुल कर सकते हैं, आपका राइट बनता है ये।
0: तो चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर बिल्डर दिवालिया हो जाए तो खरीदार का क्या होगा?
1: देखिए, बिल्डर का अगर दिवालिया हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आईबीसी बोलते हैं जिसको, है ना, आईबीसी की मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूँ, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्ट कोड, ठीक है। इसके तहत एक कानून है 2016 के अंतर्गत संरक्षित कर सकते हैं और आप अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक आपको केस बताता हूँ, जो पाशानाथ डेवलपर्स लिमिटेड है, पाशानाथ ग्रुप है, उसके अंगेंस्ट में ये इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्ट कोड की ये जो प्रोसेस है वो चल रही है और काफी जो क्लाइंट्स हैं उसका क्लेम भी उन्होंने फाइल किया हुआ है। तो पाशानाथ के विरुद्ध ये कार्रवाई इस समय नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल में, लॉ ट्रिब्यूनल में ये जो है नई दिल्ली में चल रही है। अभी हाल ही का केस बता रहा हूँ मैं आपको।
0: ओके ओके, तो मतलब सर क्लियर हो गया अब उनका?
1: नहीं, अभी केस चल रहा है वो, उसमें कई क्रेडिटर्स ने उस पर क्लेम किया हुआ है और अभी वो पूरा जो मैटर है वो नेशनल ट्रिब्यूनल के पास में है, तो वहीं से इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स जो आए हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं। उसके तहत जो है, जो भी जितना क्रेडिटर्स का क्लेम है वो सब चेक कर रहे हैं, उसके बाद उस पर डिसाइड होगा क्या।
0: तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्या केवल नगद भुगतान करना सुरक्षित है?
1: देखिए, नगद भुगतान तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, बैंकिंग माध्यम से ही भुगतान करें और हर भुगतान की आपको रसीद जरूर लेनी चाहिए या चेक से आप पेमेंट्स कर सकते हैं, डीडी दे सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांसफर आरटीजीएस है, नेफ्ट है, उसके थ्रू आप पेमेंट्स कर सकते हैं।
0: तो एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है सर, मान लीजिए कि हमने घर ले लिया है और जो हमारा जो बिल्डर है उसके पास अगर कोई भी हमारी दिक्कत आती है तो इन फ्यूचर कभी कभी ऐसा होता है कि वो फोन ही नहीं उठा रहे, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए?
1: देखिए, बिल्डर तो हर समय तो देखिए वहाँ सोसाइटी में नहीं रहता है, उसके जो स्टाफ होता है वहाँ पे स्टाफ को बताइए मेंटेनेंस से रिलेटेड इशू है या और कोई प्रॉब्लम है। तो अगर स्टाफ फिर भी नहीं दूर करता तो आप लोकल जो आपकी बॉडी है डेवलपमेंट अथॉरिटी से वहाँ आप कंप्लेंट कर सकते हैं, लोकल आप डीएम से कंप्लेंट कर सकते हैं कि बिल्डर ऐसे ऐसे हमसे सुविधाएं कमिट करी थी या हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो निश्चित तौर पे लोकल अथॉरिटी से अगर आप कंप्लेन करते हैं तो सॉल्यूशन मिल जाता है मोस्टली केसेस में।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लगा सर हमें आपसे बात करके। लेकिन एक जाते जाते एक क्या संदेश आप देना चाहेंगे खरीदारों के लिए, आपका सबसे महत्वपूर्ण संदेश क्या रहेगा?
1: देखिए, घर या दुकान खरीदते समय सबसे बड़ी चीज यही होती है कि हम जीवन का सबसे बड़ा निवेश कर रहे हैं अपने, है ना। एक हर आदमी का सपना होता है कि मैं व्यापार के लिए कोई अपनी शॉप खरीदूं या अपने रहने के लिए अपने परिवार के लिए कोई प्यारा सा छोटा सा घर होना चाहिए। तो सबसे बड़ी चीज है, एक तो आपको पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी में कोई आपको डिसीजन नहीं लेना है बिल्कुल भी। आपको कोई भी प्रपोजल बिल्डर की तरफ से आता है तो आप उस सारे उसके डॉक्यूमेंट्स को, जो भी ब्राउचर है, जो भी एडवर्टाइजिंग मटेरियल है, जो भी उसने अखबार में एडवर्टीजमेंट दिया है, उसको डीपली आप उसको चेक करें और उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लोकल अथॉरिटी से भी, जो आपकी डेवलपमेंट अथॉरिटी है वहां से भी आपको मिल सकती है कि ये प्रोजेक्ट उसका अप्रूव्ड है नहीं है, उसके बाद बिल्डर के पास लैंड बैंक इतना है नहीं है, या सिर्फ आपको मिसगाइड करने के लिए मैलिफाइड इंटेंशन से मार्केट से पैसा उठाने के लिए वो एडवर्टाइजिंग कर रहा है, ठीक है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको चेक करने हैं, हर भुगतान का अगर आप उसे चेक से पेमेंट दे रहे हैं तो आपको रिकॉर्ड रखना है, बैंक का स्टेटमेंट किस डेट में आपका चेक पास हो रहा है, अगर आप डीडी से पेमेंट कर रहे हैं तो डीडी की फोटो स्टेट रखिए, अगर आप आरटीजीएस के माध्यम से पेमेंट करा रहे हैं तो उसका पूरा रिकॉर्ड होना चाहिए, और अपने सबसे बड़ी बात अपने कानूनों जो आपको प्राप्त है उसके प्रति सजग रहे, क्योंकि अगर आप जागरूक होंगे तभी आप जो है इन सारी जितनी भी ये जो चीजें हैं, जितने भी ये आजकल जो फ्रॉड

0: चल रहे हैं तभी आप इनसे बच पाएंगे। को सजग रहना है सबसे बड़ी चीज में, और जो है बिल्डर्स की तरफ से अगर फोन पे भी कोई उसकी टीम की तरफ से कोई आपके पास प्रपोजल आता है और यदि आपका विचार बनता है निवेश का, तो पहले प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी लीजिए, लोकल डेवलपमेंट अथॉरिटीज में जाके जानकारी लीजिए कि वास्तव में प्रोजेक्ट अप्रूव्ड है या नहीं है, ऐसी कोई आपको जो है मेलाफाइड इंटेंशन आपको ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए।
1: बिल्कुल, और बिना जानकारी के आपको ये कह दे कि भैया पहले पैसे ट्रांसफर करो, तो इस पर यकीन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
1: आज की इस बातचीत में हमें यही सीख मिली कि घर खरीदना सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक बड़ा कानूनी फैसला भी है। सही जानकारी, सही दस्तावेज और अपने अधिकारों की समझ आपको भविष्य की बड़ी परेशानियों से बचा सकती हैं। सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी सर का।
0: बहुत बहुत धन्यवाद रीना,
1: जिन्होंने इतनी आसान भाषा में रियल एस्टेट और बिल्डर विवादों से जुड़े कानूनी कारों की महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा। उम्मीद है कि आज की चर्चा ने आपके कई सवालों के जवाब दे दिए होंगे, और अगर कभी ऐसी स्थिति आए तो अब आप अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो श्रोताओं, याद रखिए, सपनों का घर तभी सुकून देता है जब उसके साथ आपके अधिकार भी सुरक्षित हो। इसीलिए कोई भी फैसला लेने से पहले पूरी जानकारी जरूर ले और बिना पढ़े किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर ना करें। और इसी के साथ मैं लेती हूँ यहाँ से जाने की इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए, जागरूक रहिए, सुरक्षित रहिए और यूं ही मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए FM मुरादाबाद 89.6 रेडियो, बजाते रहिए, गुनगुनाते रहिए जी। बाय बाय।
2: सिर दर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। BMC हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
3: मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पील या हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

0: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक सचमुच आपका। जरूरत जब हो पैसों की, फैसला हो भरोसे का।
1: व्यक्तिगत ऋण कम ब्याज दर के साथ,
0: और अगर आपका सैलरी अकाउंट हमारे बैंक में है
1: तो पर्सनल लोन पर कम ब्याज दर,
0: शून्य प्रोसेसिंग फीस,
1: बस एक कदम
0: और सपनों को नई रफ्तार।
1: आज ही अपनी नजदीकी शाखा में आइए
0: या विजिट करें बैंक वेबसाइट।
1: मुरादाबाद जिला सहकारी बैंक, आपका अपना बैंक
0: सचमुच आपका।

एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, नजरें झुका के शर्मा के गलियों से गुजरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी। कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे, मुझसे पूछा करती थी, प्यार कैसे होता है, ये प्यार कैसे होता है, और मैं सिर्फ यही कह पाता था।

0: मुरादाबाद के लिए बड़ी खुशखबरी, अब विश्वस्तरीय रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। श्री साई हॉस्पिटल मुरादाबाद में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला जॉनसन एंड जॉनसन वीलेस रोबोट के साथ रोबोटिक घुटना प्रत्यारोपण की अत्याधुनिक सुविधा, 20 वर्षों से अनुभवी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं रोबोटिक एक्सपर्ट डॉक्टर अंकुर गोयल द्वारा मरीजों को मिलेगा भरोसेमंद उपचार। आज ही संपर्क करें श्री साई हॉस्पिटल दिल्ली रोड मुरादाबाद। कॉल 7055011681।
1: अरे सुनो, वो पड़ोस का लड़का है ना, उसके सर में बहुत चोट आ गई है।
2: चोट आई है तो कोई अच्छे डॉक्टर के पास लेकर गई है? नहीं
1: यार, कोई अच्छा डॉक्टर मिल ही नहीं रहा।
2: तो आज ही आए मुरादाबाद के भरोसेमंद और विश्वसनीय डॉक्टर नरेंद्र कुमार सिंह, न्यूरो सर्जन पे आरुष नर्सिंग होम, पूरा पता सेक्टर 9B बुद्धि विहार फेज 2 दिल्ली रोड मुरादाबाद।
3: कॉल 7500153841।

0: सिरदर्द, लकवा या रीढ़ की तकलीफ, क्या आप भी इन परेशानियों से जूझ रहे हैं? तो अब इलाज के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं। बीएमसी हॉस्पिटल में उपलब्ध है अनुभवी न्यूरोसर्जन डॉक्टर मोनित अग्रवाल, जहां होगा आपके हर न्यूरो प्रॉब्लम का सही समाधान। पता A42 गांधीनगर मुरादाबाद।
1: जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। सांसें सही, जिंदगी सही।

DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद शहर का एकमात्र हॉस्पिटल जहां आपको भारत के सुप्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजेश राठी द्वारा हर उम्र के लोगों के दिमाग, रीढ़ की हड्डी, नसों और मांसपेशियों से संबंधित बीमारियों का इलाज मिलेगा। इन सारी समस्याओं से जुड़ी सारी जांचें हॉस्पिटल में कराई जाती हैं। आज ही कंसल्ट करें DMR मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिविल लाइन मुरादाबाद। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9760304534।

0: मैं उसके लिए मर चुकी हूँ।
1: वो भी आपकी यादों में पल पल मर रहा है।
0: तो कह दो उसे कि उन यादों की चिता बना के जला दे।
1: उस चिता से उठता धुआं भी आपके प्यार का ही होगा।

जब सांसें अटकने लगे, जब खांसी थमे ही ना, तब याद रखिए एक ही नाम, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मुरादाबाद, जहां डॉक्टर रितेश कुमार कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट टीबी, अस्थमा, निमोनिया, खांसी में खून, सांस फूलना और फेफड़ों के इन्फेक्शन जैसी आपकी हर दिक्कत का देते हैं आधुनिक और सही उपचार। तो सुकून, राहत और भरोसा सब एक ही जगह, एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सांसें सही, जिंदगी सही।

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता, गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

0: 30 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: 20 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे IFTM यूनिवर्सिटी मुरादाबाद
1: नैक द्वारा ए ग्रेड NIRF में पूरे देश में फार्मेसी कैटेगरी में 93 रैंक
0: डिप्लोमा से PhD तक सभी शिक्षा एक कैंपस में
1: चाहे फार्मेसी हो मैनेजमेंट कंप्यूटर इंजीनियरिंग बायोटेक्नोलॉजी लॉ एग्रीकल्चर साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज विषयों में पढ़ाई
0: स्टूडेंट के लिए फ्री बस फैसिलिटी एंड यूनिफॉर्म फैसिलिटी
1: गर्ल्स स्टूडेंट के लिए ट्यूशन फीस में 10% की छूट
2: फॉर एडमिशन कॉल 9639004077

0: डॉक्टर साहब बोल रहे थे ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी।
1: अरे चिंता मत करो राधा, अब हम मुरादाबाद मेडिसिटी हॉस्पिटल जाएंगे, हमारे पास आयुष्मान भारत कार्ड है ना।
2: अब गरीब नहीं रहेगा लाचार, क्योंकि आयुष्मान भारत कार्ड है ना। आज ही आए मेडिसिटी हॉस्पिटल, जहाँ हर तरह का ऑपरेशन और इलाज होगा बिल्कुल मुफ्त।
1: हॉस्पिटल का पता गांधीनगर नियर चड्डा सिनेमा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।

मुरादाबाद का एशियन विवेकानंद हॉस्पिटल लाया है सुरक्षित मातृत्व और सुरक्षित प्रसव का भरोसा। डॉक्टर सुदीप कौर और डॉक्टर रशिका गुप्ता स्त्री प्रसूति बांझपन रोग विशेषज्ञ के साथ प्रेगनेंसी में हाई बीपी, हाई शुगर, पीलिया, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम या ट्विन ट्रिपलेट प्रेगनेंसी का सफल इलाज, बांझपन का आधुनिक इलाज, पुरुषों में शुक्राणु की कमी के लिए IUI की सुविधा, अत्याधुनिक लेबर रूम, OT, SICU, MICU हमारी पहचान है। एशियन विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, माँ और बच्चे की सुरक्षा हमारा वादा।